है 102.6 MHz पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि। तदनुसार 26 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 7:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल्ली, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 9:02 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में मुख्य समाचार। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 10:55 पर सुनिएगा कार्यक्रम मन की बात। 12 बजे अंग्रेजी में मुख्य समाचार और 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भोपाल। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह दिल्ली लौट आई हैं। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त कर दिया है। उसने विद्यार्थियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की है। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 66 लाख से अधिक हो गया है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त ले चुका है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात। नई सुबह, नई उम्मीद, नई रोशनी और नए विश्वास के साथ आपका स्वागत है एफएम रेनबो के कार्यक्रम सुप्रभात में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त गीतांजलि। दोस्तों, कहते हैं हर सुबह हमें दो उपहार देती हैं, एक नई शुरुआत और दूसरा खुद को बेहतर बनाने का अवसर। तो आज भी अपने मन की खिड़कियां खोल लीजिए, बीती बातों की धूल झाड़ दीजिए और मुस्कान के साथ इस दिन का स्वागत कीजिए दोस्तों, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन का स्वर तय करता है। आज खुद से बस इतना कहिए, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही मेरा दिन बनेगा। और इसी सकारात्मक शुरुआत के साथ एक प्यारा सा गीत मिलकर सुनते हैं।

खूबसूरत सा गीत दिन की शुरुआत। और दोस्तों, हम सब ना अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर खुशी को जो है ना बड़ी उपलब्धियों से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खुशी मंजिल से नहीं, रास्ते में बिखरे उन छोटे छोटे पलों से मिलती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज जब घर से निकलें तो सूरज की पहली किरण को महसूस कीजिएगा, किसी अपने को मुस्कुराकर नमस्ते कहिएगा, और यदि मौका मिले तो किसी की छोटी सी मदद भी कीजिएगा। यकीन मानिए, किसी के चेहरे की मुस्कान आपके पूरे दिन को रोशन कर सकती है। सुबह कहती है, धीरे से मन में दीप जलाइए, कल की सारी थकान मिटाकर भुलाकर आज फिर से मुस्कुराइए। चलते हैं अगले गीत की ओर मुस्कुराते हुए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो है हमारे कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी, क्योंकि जो कहानियां होती हैं वो सदियों से अच्छा सीखने का माध्यम रही हैं। तो चलिए कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। शिष्य ने पानी पिया, पानी बहुत खारा था। फिर गुरु वही नमक नदी में डाल देते हैं और कहते हैं, अब नदी का पानी पीकर देखो। पानी बिल्कुल सामान्य था। गुरु मुस्कुराए और बोले कि जीवन की परेशानियां जो होती हैं दोस्तों, वो भी नमक की तरह होती हैं। उनकी मात्रा लगभग उतनी ही रहती है, लेकिन हमारा मन जो है ना, यदि गिलास जितना छोटा होगा तो हर दुख कड़वा लगेगा, और यदि मन नदी जैसा विशाल होगा तो वहीं दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अपना मन जो है वो बड़ा रखना है, समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। समस्याएं तो जीवन का एक हिस्सा है, आती हैं चली जाती हैं, पर उन समस्याओं को लेकर यदि हम अपना वर्तमान जो है खुशनुमा ना बनाएं, उसे हमेशा आंसुओं में डूबा रहने दें, तो जीवन हमें बिल्कुल भी सुख नहीं दे पाएगा। तो इस कहानी से हमें यही सीखना है कि लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और सबको मुस्कुराने की जो है पॉजिटिवनेस देते रहना है।

दोस्तों, आप भी मुस्कुराते हुए जरा खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने लिए भी उतना ही अच्छा सोचता हूँ जितना दूसरों के लिए। हम दूसरों की तारीफ तो कर देते हैं दोस्तों, लेकिन खुद को हमेशा कम आंकते रहते हैं। आज आईने में देखकर एक बार जरूर कहिएगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया का सबसे जरूरी रिश्ता आपका अपने आप से होता है। अपने आप से आपको सुकून महसूस होगा। चलते रहो तो रास्ते भी दोस्त बन जाते हैं, चलते रहो तो रास्ते भी दोस्त बन जाते हैं, और रुक जाओ तो मंजिलें भी दूर नज़र आती हैं। एक किस्सा सुनाती हूँ यहाँ आपको कि एक वृद्ध माली रोज़ अपने बगीचे में पौधों को पानी देता था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इनमें से तो कुछ पेड़ इतने बड़े होंगे कि तब तक आप शायद यहाँ हों भी ना जब ये पेड़ बड़े हों। माली मुस्कुराया और बोला कि मैंने भी तो उन पेड़ों की छाव पाई है जिन्हें किसी और ने लगाया था, अब मेरी बारी है। दोस्तों, अच्छे कामों का फल तुरंत मिले ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आप किसी के जीवन में उम्मीद का एक छोटा सा पौधा लगा दें तो शायद वही किसी दिन किसी और के जीवन की छाँव बन जाए।

दोस्तों, विदा लेने से पहले एक बात कि सूरज हर दिन यही सिखाता, अंधियारा टिकता कब है, हिम्मत जिसके साथ खड़ी हो उसका सपना रुकता कब है। और याद रखिए, ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मुस्कुराकर जी जाए तो खूबसूरत ज़रूर हो जाती है। तो आज किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद कहिएगा, किसी एक के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लाइएगा और अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालिएगा। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त गीतांजलि। आपका दिन खुशी।

0: हों, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
3: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और साथ में उस दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस भी है और वो ये है कि हमारे जो अष्टगोस्वामी हैं उनमें जो सबसे बड़े गोसाई हैं जिनका नाम है श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी, उनका तिरुभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी जी को ब्रज के लोग इतना प्यार करते थे क्योंकि वो ब्रज में जगह जगह भजन करते थे और सारे ब्रजवासियों के प्रति उनके अंदर इतना वात्सल्य भाव था, इतना अधिक वात्सल्य भाव था कि सारे ब्रजवासी उन्हें बहुत अधिक प्रेम करते थे। और जिस समय सनातन गोस्वामी जी ने अपनी लीला का संवरण किया आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, उस दिन सारे ब्रजवासी इतने शोकाकुल हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने मूड मुड़वा डाले। समस्त वैष्णवों ने, भक्तों ने अपना मुंडन कराया और श्री सनातन गोस्वामी जी के शरीर को लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा की। उस दिन से आषाढ़ी पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष लोग बहुत भारी संख्या में गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और उस दिन जो परिक्रमा होती है उसे कहा जाता है मुड़िया मेला, मुड़िया मेला। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के विरह दिवस को ही मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो कौन है ये श्री सनातन गोस्वामी जी? ये हैं श्री रूप गोस्वामी जी के गुरुदेव और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी, जिनके लिए श्रीमन महाप्रभु के हृदय में इतना प्रेम था कि जिस समय रूप जी उनसे मिलने आए थे तो रूप जी को अपने भक्तों से तो उन्होंने मिलवाया ही था, लेकिन उनको मिलवाते हुए ये भी कह दिया था, इहार ज्येष्ठ भ्राता होए नाम सनातन, पृथ्वी ते विज्ञवर नाही तारसम। सनातन कैलो ग्रंथ भागवतामृते भक्ति भक्त कृष्ण तत्व जानी जहा होते, नाना शास्त्र आने लुप्त तीर्थ उद्धारीला, वृंदावने कृष्ण सेवा प्रचार कुरीला। तो अतिशय प्रशंसा की है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी की। ये तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग में स्वयं भगवान ही हैं, स्वयं भगवान। भगवान का अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण जो श्री राधा रानी की अंग कांति और महाभाव को अंगीकार करके, यानी प्रिया जी और प्रियतम जी दोनों एक होकर के प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्हीं की सुप्रसिद्ध अर्थात राधा कृष्ण की सुप्रसिद्ध दासी हैं श्री लवंग मंजरी श्री सनातन गोस्वामी जी। श्री

कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए निकुंज भक्ति निकुंज साधना प्रदान करने के लिए, अनर्पित चरी अवदान देने के लिए। कलिह जीवों को यह बहुत बड़ा अवदान था। कोई उस समय तो जानता नहीं था कि कृष्ण प्रेम ही सब कुछ है और श्री राधिका की दासी का भाव ये तो बिल्कुल ही अनसुनी बात थी। लेकिन श्रीमन महाप्रभु अपने साथ निकुंज की सखी मंजरियों को लेकर के आए, वृंदावन की सखियों को मंजरियों को लेकर के प्रकट हुए और उनके द्वारा इस उपासना का प्रचार कराया। तो श्री सनातन गोस्वामी जी अतिशय अतिशय प्यारे गोस्वामी हैं और सबसे बड़े गोसाई उनको कहा जाता है, बड़ा गोसाई, और इतने ज्यादा दीन, बहुत ही अधिक दीन। उनकी दीनता की कोई सीमा ही नहीं। उनकी दीनता को देख करके महाप्रभु का हृदय बहुत ही द्रवित हो जाया करता था। तो सनातन गोस्वामी जी जब छोटे थे तब उन्होंने श्री विद्यावाचस्पति जी से सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, सब सीख लिया था उन्होंने, और श्रीमद् भागवत जी में तो उनका बहुत ही अनुराग था, है ना। वो भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण वंश में आविर्भूत हुए थे, लेकिन तो भी नवाब हुसैन शाह की नौकरी की थी और इसीलिए अपने आप को हमेशा दीन समझा करते थे, बिल्कुल दीन। वर्णन आया है, श्री सनातनेर गुरु विद्यावाचस्पति मध्य मध्य राम केली ग्रामे तार स्थिति। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जी अतिशय विद्वान थे और उनकी विद्वता को देख करके ही नवाब हुसैन शाह ने बहुत बड़े पद पर उनको अपने यहाँ नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री हुए राज्य के श्री सनातन गोस्वामी जी। श्री रूप गोस्वामी जी अर्थमंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुए। तो सनातन जी को नाम दिया गया साकर मल्लिक और रूप जी को नाम दिया गया दबीर खास, और दोनों को अपने भाई की तरह प्यार करते थे नवाब हुसैन शाह। लेकिन सनातन जी के हृदय में, रूप जी के हृदय में भक्ति खेलती थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो छूट करके श्रीमन महाप्रभु के पास जाएं। एक बार श्रीमन महाप्रभु राम केली ग्राम पहुंचे, वृंदावन जा रहे थे परंतु रास्ते में राम केली ग्राम चले आए। महाप्रभु के साथ जब सनातन जी और रूप जी का प्रथम साक्षात्कार हुआ तो महाप्रभु को देख करके अतिशय अतिशय दीन भाव से उनके चरणों में गिर गए सनातन जी। कहने लगे, जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन, मलेच्छ जाते मलेच्छ संगी करी मलेच्छ कर्म, गौ ब्राह्मण द्रोही संगे अमार संगम, मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कुविषय विष्ठा गरते दिया छिपे लिया, आमा उधारिते बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुमी सबे तुमा बिने। बहुत दुखी हो गए सनातन जी ने कहा, जगाई मधाई जी का तो आपने उद्धार किया प्रभु, पर हम तो उनसे भी पापी हैं। हमने मलेच्छ जाति मलेच्छ संगियों का संग किया है, जो गो ब्राह्मण द्रोही हैं, उनके साथ बैठ करके खाया पिया है, उनका काम किया है। प्रभु मैं तो विषय के विष्ठा गर्त में फेंक दिया गया हूं, आप पतित पावन हैं, मेरा उद्धार कीजिए। आपने अयोग्य देखी मने पाऊं खूब, तथापि तुम्हार गुणे उप जाए लोभ, वामन हुई या चांद धरते इच्छा कोरे, तई छे मोर एई वांछा उठे अंतरे। कि प्रभु मैं तो बहुत अयोग्य हूं, पर सुना है आप बहुत करुणामय हैं। सनातन जी की बात सुनकर के महाप्रभु का दिल, उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने सनातन जी को, रूप जी को अपने गले से लगाया और तब उन्होंने उनका नाम रखा, दबीर खास जी का नाम रूप और साकर मल्लिक का नाम सनातन रखा, और कहा कि तुम तो मेरे नित्य परिकर हो। और उस समय महाप्रभु के जो संगी थे, निताई चांद, हरिदास ठाकुर, शिवास

पंडित, गदाधर पंडित, ये सब इनके द्वारा रूप सनातन जी के ऊपर आशीर्वाद भी कराया और तब कहा कि ठीक है, जल्दी ही आप सब हमसे मिलेंगे। तो यूं तो श्री कृष्ण लीला के पार्षद हैं श्री रूप सनातन जी, लेकिन गौर लीला की पुष्टि के लिए सनातन गोस्वामी जी, रूप जी यहाँ पर आए। रूप जी तो जल्दी जल्दी नौकरी छोड़कर और चले गए गौरांग महाप्रभु के पास नीलाचल, और वहाँ से वृंदावन चले आए। और यहाँ जब बादशाह हुसैन शाह ने देखा कि रूप जी तो है नहीं और सनातन गोस्वामी ये भी जो है कुछ अनमने रहते हैं, काम पर नहीं आते, तो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल तो दिया, लेकिन एक चिट्ठी पहुंच गई रूप जी के द्वारा सनातन जी के पास, जहां उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा किसी मुनीम के पास रखी है, आप वहां से वो मुद्राएं लीजिए और प्रहरी को दे करके आप किसी तरह छूट करके नीलाचल चले जाइए। सनातन गोस्वामी जी ने वही किया, प्रहरी को मुद्रा का लालच दिया और प्रहरी ने उनके बंधन काट डाले। वो समझ गए कि इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण ही सत्य हैं, उन चरणों की प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रतिकूल है वो सब छोड़ना होगा। लेके चले अपने साथ अपने चाकर ईशान को, पात्रा पर्वत तक आ गए। जब वहां आ गए तो वहां जहां वो रुके वहां एक व्यक्ति थे, उनको पता चल जाता था कि किसी के पास कितना पैसा है और वो अपने मालिक को बता देते थे, फिर वो रात में ही उस मेहमान की हत्या कर देते थे और पैसा ले लेते थे, खींच लेते थे। तो कहीं से सनातन गोस्वामी जी को ऐसी भनक पड़ गई कि अरे इतनी खातिरदारी हमारी हो रही है, इतना स्वागत हो रहा है, अवश्य ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोभ है। और फिर उन्होंने स्वयं ये कहा कि आप हमसे मुद्रा ले लीजिए और हमें ये पर्वत पार करा दीजिए। वही हुआ, ईशान जी को छोड़ दिया सनातन जी ने और किसी तरह चलते चलते सनातन जी गंगा पार करके काशी चले आए। जैसे ही काशी चल करके आए हैं सनातन जी महाप्रभु के पास, महाप्रभु ने जान लिया और उन्होंने कहा देखो एक वैष्णव द्वार पर आया है, उसे भीतर ले आओ। पर सनातन जी के अंग में कोई वैष्णव का चिन्ह नहीं था, अर्थात वैष्णव वेश का चिन्ह नहीं था, थे तो वो महावैष्णव। तो चंद्रशेखर जी तो उन्हें पहचान ना पाए, महाप्रभु ने उन्हें ही भेजा था। उन्होंने महाप्रभु को बोला जी वहां तो एक दरवेश बैठे हैं, वैष्णव तो कोई नहीं है। महाप्रभु ने कहा अरे उन्हीं को लेकर के आओ। सनातन जी जैसे ही आए महाप्रभु द्रुत गति से गए और उनको आलिंगन कर लिया। सनातन जी रोने लगे, प्रभु मुझे छुइए मत, मैं तो पतित हूँ, अधम हूँ, मैं आपके स्पर्श के अयोग्य हूँ। महाप्रभु ने कहा सनातन अपने आप को पवित्र करने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, भक्ति के बल से तुम समस्त विश्व को ही पवित्र कर सकते हो। तो सनातन जी बहुत रोने लगे, कहने लगे प्रभु मुझे कृष्ण का तो पता नहीं, मैं तो आपको जानता हूँ। और इसके बाद सनातन गोस्वामी जी को 2 महीने तक भगवान का उपदेश दिया, उनको शिक्षा दी श्रीमन महाप्रभु ने। देखिए श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने शिक्षा गुरुदेव का एक रोल निभाया, उनकी भूमिका अदा की और सनातन गोस्वामी जी को विभिन्न प्रकार के उत्तर दिए। सनातन गोस्वामी जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी जी के सारे प्रश्न भी हमारे लिए ही थे। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख हुआ है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा दी और उनको आदेश दिया तुम ही करी हो भक्ति शास्त्रीय प्रचार, मथुराए लुप्त तीर्थेर करी हो उद्धार, वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र कुरी करी हो प्रचार। कि तुम भक्ति शास्त्र का प्रचार करना और मथुरा में समस्त लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, वृंदावन में कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र, इन सब का तुम्हें प्रचार करना होगा। और ऐसा हुआ भी, सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णव सदाचार
को दिखाने के

0: ये कि कैसे वैष्णव सदाचार होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने हरि भक्ति विलास टीका लिखी, दिग्दर्शनी टीका लिखी, दशम स्कंद की बृहद वैष्णव तोषणी टीका लिखी, बृहद भागवतामृतम लिखा, लीला स्तव या दशम चरित लिखा उन्होंने, और ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थ का उद्धार किया। वृंदावन में उन्होंने श्री राधा मदन मोहन जी की विग्रह सेवा भी प्रकाशित की। तो श्रीमद् महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन धाम आने का आदेश दिया। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन धाम आए, यहाँ उन्होंने ब्रजमंडल की परिक्रमा की, अनेक कार्य किए, और फिर एक बार वो जाने लगे नीलाचल जगन्नाथ जी के दर्शन करने, श्रीमद् महाप्रभु के दर्शन करने। लेकिन वो गए झारीखंड के पथ से अकेले। पथ में जल के दोष के कारण उनके शरीर में खुजली हो गई, जिसमें से मवाद बहने लगा। तब वो रास्ते में ही सोचने लगे, मैं तो बहुत नीच जाती हूँ, मेरा शरीर बड़ा ही घृण्य है, जगन्नाथ मंदिर में मैं जा भी नहीं सकता, महाप्रभु के निकट भी अब नहीं जाया जा सकता, लेकिन उनका दर्शन किए बगैर भी मैं बहुत दुर्भाग्यशाली अनुभव करूँगा स्वयं को, और जगन्नाथ जी के सेवक के साथ अगर कहीं स्पर्श हो गया तो भी अपराध होगा। तो ऐसा करता हूँ कि श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय नृत्य करेंगे, उस समय मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा उन्होंने सोच लिया। पुरी पहुँचे तो हरिदास ठाकुर जी के पास रुके, और श्रीमन महाप्रभु तो आते ही थे रोज़ हरिदास जी को दर्शन देने के लिए। सनातन गोस्वामी जी को जब देखा श्रीमन महाप्रभु ने, तो वो प्रेमाविष्ट होकर उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े, और सनातन गोस्वामी जी ने अपने आप को सोचा, हो मैं कितना अपवित्र हूँ, और वो एकदम पीछे हटने लगे। महाप्रभु ने जोर करके उन्हें आलिंगन कर लिया। महाप्रभु के अंग पर सनातन गोस्वामी जी के शरीर का मवाद लग गया, तो सनातन गोस्वामी जी का हृदय फट गया। उन्होंने सोचा, अब तो मुझे अपने आप को खत्म करना होगा। लेकिन महाप्रभु तो उनके इस भाव को जान गए। उन्होंने कुछ कहा श्री सनातन जी से, क्या कहा जानेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे थे सनातन गोस्वामी पाद जी ने सोचा कि अब इस देह को रखने से कोई लाभ नहीं है। उनके इस भाव को जान लिया श्रीमन महाप्रभु ने, और उन्होंने कहा, सनातन देह त्यागे कृष्ण जदि पाइये, कोटि देह खणे के तबे छाड़िते पारिये। देह त्यागे कृष्ण ना पाई, पाइये भजने कृष्ण प्राप्ति उपाय, कौनो नाही भक्ति बिने। कि सनातन, भजन के सिवा श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, देह त्यागने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये भी कहा कि तुम्हारा देह तो मेरा धन है, तुमने मुझे ही तो आत्मसमर्पण किया है अपने देह का, दूसरे के धन को तुम कैसे नष्ट कर पाओगे, धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पा रहे हो क्या। तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, एही शरीरे साधिमु आमी बहु प्रयोजन। तुम्हारा ये शरीर मेरा प्रधान साधन है, इस शरीर के द्वारा मैं अनेकानेक प्रयोजन साधन करूंगा, अनेकानेक उद्देश्य पूर्ण करूंगा। तो इस तरह से श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि मध्याह्न को आओ हमसे मिलने के लिए तोता गोपीनाथ। सनातन गोस्वामी जी तो इतने प्रसन्न हुए। उस समय ज्येष्ठ की दोपहरी थी, और समुद्र के तट पर बालू बहुत तप्त था, जल रहा था, जाया जा सकता था सिंह द्वार से भी, लेकिन तो भी वहाँ से वो नहीं गए कि कहीं मेरा शरीर जगन्नाथ के सेवकों को लग जाएगा तो हाय रे, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं। और वो गए तपते हुए बालू से होकर ही। उनके चरणों में छाले पड़ गए। महाप्रभु सब जानते थे। उन्होंने कहा कि अरे सनातन, तुम तो जगत पावन हो, तुम जो ये कह रहे हो कि अगर मैं सिंह द्वार से होकर आता, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से, तो फिर मेरे शरीर के स्पर्श से जगन्नाथ जी के सेवक अपवित्र हो जाते। अरे तुम तो जगत को पावन कर सकते हो, तुम्हारे स्पर्श से तो देवता मुनिगण पवित्र हो सकते हैं, पर भक्त का स्वभाव ही होता है कि वो अपनी मर्यादा का रक्षण करता है। मर्यादा पालन साधु का आभूषण होता है। बहुत ही अच्छा किया तुमने मर्यादा राख ली। तुष्ट होय मोर मन, तुम्हें ऐसे ना करे ले करे कौन जन। तुमने मर्यादा की रक्षा की, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें अगर आचरण नहीं करोगे तो किसी से और क्या आशा की जा सकती है। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जी को फिर से एक बार हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर आकर महाप्रभु ने गले से लगाया और उनका जो खुजली का रोग था वो दूर हो गया। महाप्रभु ने कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जब आए हैं हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी, तो यहाँ उन्होंने भजन किया, उत्कट भजन किया, जगह जगह भजन किया। सब जगह उनकी बैठकें मिलती हैं, उनकी कुटिया मिलती है जहाँ उन्होंने भजन किया। सनातन गोस्वामी जी अतिशय आनंदित होकर द्वादश वन भ्रमण करते थे और ठाकुर जी उनके वश में हो जाते थे। सनातन गोस्वामी जी यहाँ चकलेश्वर में भी महादेव के पास बैठकर उनको श्रीमद् भागवत जी सुनाते थे, भगवत कथा सुनाते थे और साथ में रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। साथ में किसी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसा उत्कट भजन करते थे कि उन्हें अपने शरीर का ही होश नहीं रहता था। सनातन जी जब गोवर्धन में थे तो अयाचित भाव से, चूंकि रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, धीरे धीरे वो वृद्ध हो गए। गिरिराज जी की परिक्रमा करते तो बहुत ही थक जाते। उनका श्रम देख करके एक दिन गोपीनाथ जी यानी ठाकुर जी एक गोप बालक के रूप में उनके पास आए और उन्होंने हवा करके उनका श्रम दूर किया। और तब उन्होंने कहा, देखो सनातन, ये श्री कृष्ण का चरण चिन्हित शिला है, तुम श्री कृष्ण के चरण चिन्हित शिला को अपने पास रखो, इनकी चार परिक्रमा कर दोगे तो तुम्हारी गिरिराज जी की एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी, इतना परिश्रम मत करो। ऐसा कहते ही वो अंतर्हित हो गए। गोप बालक को जब सनातन जी ने नहीं देखा तो वो रोने लगे और तब वो अतिशय दुखी हो गए। आज भी वो शिला श्री दामोदर मंदिर जी, जो कि श्री वृंदावन धाम में है, वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से मानसी गंगा जी के उत्तर तट पर चक्रेश्वर महादेव जी अवस्थित हैं, जिन्हें चक्रेश्वर भी कहते हैं। वहाँ पर एक प्राचीन नीम का वृक्ष है, उसके नीचे श्री सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे। वहाँ कभी कभी बहुत ही मच्छर उनको तंग किया करते थे। मच्छरों के उपद्रव से वो हरिनाम नहीं कर पाते थे, ग्रंथ भी नहीं लिख पाते थे, बड़ा ही विघ्न हो जाता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ से दूर कहीं और जाया जाए, वहाँ पर ग्रंथ लिखा जाएगा, हरिनाम किया जाएगा। तो उस रात को चक्रेश्वर महादेव सनातन जी को स्वप्न में बोले, तुम कोई चिंता मत करो, यहाँ भजन करो, अब मच्छर यहाँ रहेंगे ही नहीं। बस ऐसी अद्भुत घटना हुई कि अगले दिन से वहाँ कोई मच्छर आया ही नहीं। श्रील सनातन गोस्वामी जी नंदग्राम में पावन सरोवर के तट पर भजन किया करते थे। यहाँ भी श्री कृष्ण गोप बालक के रूप में उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा, ऐसे भजन मत करो, कुटिया निर्माण करके रहो। वहाँ पर ही श्री रूप गोस्वामी जी, जो सनातन गोस्वामी जी के शिष्य हैं और उनके छोटे भाई हैं रूप जी, एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं सनातन जी को खीर खिलाऊंगा। बस फिर क्या था, श्री राधा रानी ने सोचा, ओहो आज मेरी मंजरियों, मेरी दासियों में ये बड़ी ही प्यारी इच्छा जागृत हुई है, अब तो मैं ही इनकी सेवा करूँगी। राधा रानी आई और गोप बालिका के रूप में उन्होंने चावल, दूध, घी, चीनी सब कुछ दे दिया। श्री रूप जी ने पकाया, भोग लगाया और सनातन जी को प्रसाद के रूप में दिया।

सनातन जी को बड़ी ही तृप्ति हुई। सनातन जी ने पूछा, ये सब कहाँ से लाए? रूप जी ने सब कह सुनाया। तब सनातन जी ने समझ लिया कि प्रिया जी आई थी, नहीं तो ऐसा स्वाद कभी मिल नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा, देखो रूप, हम प्रिया जी की दासी हैं, उनको हम कष्ट नहीं दे सकती। दोबारा कभी भी ऐसी कोई इच्छा तो मत करना जिससे प्रिया जी को कोई कष्ट हो। सनातन गोस्वामी जी के बारे में एक और कथा प्रचलित है। एक बहुत ही दरिद्र शिव भक्त ब्राह्मण थे, इनका नाम था जीवन चक्रवर्ती। उन्होंने महादेव से धन की प्रार्थना की। महादेव ने कहा, जाओ वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास, वहां धन मिलेगा। दरिद्र ब्राह्मण वहां पहुंचा, सनातन गोस्वामी जी का वेश देखा, अरे तो इन्होंने बड़े ही मलिन वसन पहने हैं, बड़े ही पतले दुबले हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कोई धन दे सकते हैं। परंतु उन्होंने अपना स्वप्न आदेश सनातन जी को कह सुनाया। सनातन जी ने कहा कि मैं तो माधुकरी भिक्षा करके किसी तरह जीवन धारण करता हूँ, धन कहाँ है। तभी अचानक उन्हें याद आया कि एक कूड़ेदान में मैंने कुछ फेंका हुआ है, शायद वही उसका धन होगा, और जो फेंका हुआ है वो है पारस मणि। अचानक उनको याद आया तो उन्होंने कहा, जाओ जाओ उस कूड़े में से पारस मणि को उठा लो। पारस मणि पाकर के ब्राह्मण बहुत ही आनंदित हुआ। उसने सोचा, अब तो मेरी तरह धनी इस पृथ्वी में कोई है ही नहीं। थोड़ी दूर आगे गया तो उसने सोचा, अरे सनातन गोस्वामी जी को याद ही नहीं था कि उनके पास इतना मूल्यवान कुछ है, यानी उनके पास इससे भी अधिक मूल्यवान धन है। लगता है मैं वंचित हो गया। तो फिर वो कौन से धन से धनी होकर के मूल्यवान मणि को ऐसे फेंक दिए, ये जानना होगा। ब्राह्मण दोबारा आया, सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मुझे बताइए आपके पास इससे बड़ा धन क्या है। तब सनातन जी ने कहा कि ठीक है, आप इस मणि को जमुना जी में फेंक आइए, तब बताएंगे। तब जब उस मणि को वो फेंक आए जमुना जी में, तब श्री कृष्ण प्रेम धन वो प्रदान किया सनातन गोस्वामी जी ने ब्राह्मण को। जिस धन को पाकर धनी मणि को नहीं मानता मणि, और वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है श्री कृष्ण प्रेम। तो वही सनातन गोस्वामी जी अतिशय अतिशय महान वैष्णव, महान भक्त, महान आचार्य, श्रीमन महाप्रभु के महान परिकर, जिन्होंने भजन सिखाया है बहुतों को, अपना वात्सल्य दिया है, अपना प्रेम दिया है, उन्हीं सनातन गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है गुरु पूर्णिमा के दिन। उन्हीं के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे सनातन गोस्वामी पाद, हम सबको भक्ति करने की शक्ति दीजिए, हमें सही दिशा का निर्देश कीजिए, हम भी आपकी कृपा से महाप्रभु को प्रेम कर पाएं, आपकी कृपा से आपकी प्रिय प्रियतम श्री राधा गोविंद के चरणों की प्राप्ति कर सके। तो ये था आज का कार्यक्रम आपके लिए, और इसी के साथ आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा, अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त कर विद्यार्थियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की है। आज कारगिल दिवस है। ये दिवस 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मालदोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पांचवा जत्था कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में फाइनल में पाकिस्तान को हराया है और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत तीन मैचों की श्रृंखला में दो मैच जीतकर अजय भारत ले चुका है। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: शुरू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 और वक्त हो चुका है 7:03। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है। यहाँ पर फिलहाल सूर्य उदय हो चुका है और अच्छी धूप खिली हुई है। फिलहाल 5:38 पर सूर्योदय होगा जो और सूर्यास्त होगा 7:16 पर। और जो तापमान की बात करें तो बिल्कुल मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। सो बिल्कुल आज 26 जुलाई है और बिल्कुल आज के दिन क्या कुछ विशेष बातें हैं वो हम आपके साथ बातें करेंगे। बहुत सारी संडे है आज, तो संडे को छुट्टी मना रहे होंगे और छुट्टी वाले दिन आज हमें तो थोड़ा सा टाइम दे ही सकते हैं। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ये वाला एक घंटा रहने वाला है आपके साथ। अमेजिंग बातें होंगी, अमेजिंग गाने होंगे और आपका साथ जो रहेगा ना तो आपकी बातें हम बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल साझा करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

एब्सोल्युटली बिल्कुल आपके साथ मैं हूँ आशुतोष, और बिल्कुल उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। तो बिल्कुल बहुत एक सिंपल सी बात है कि जैसा आप जिन बनते हैं ना, वैसे ही इंसानों के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल आज से के दिन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते चलें। 1788 को न्यूयॉर्क अमेरिका का 11वां राज्य बना था। आज के दिन 1951 को नीदरलैंड्स ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया था। 1956 की बात करें तो मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। 1965 में मालदीव ब्रिटेन के अधीनता से स्वतंत्र हुआ था। और 1998 में महानतम महिला एथलीट्स जैकी जाइनर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। आज के दिन और 2004 की बात करें तो ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का कोपा कप जीता था। और 2005 की बात करें तो नासा ने अंतरिक्ष

कक्षयान डिस्कवरी का प्रक्षेपण किया था आज ही के दिन। और 2008 की बात करें तो यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की थी। बिल्कुल, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के दिन से जुड़ी, और भी बहुत सारे अमेजिंग इंफोटेनमेंट यहाँ पर इंतजार कर रही है आपका। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ, और अमेजिंग गानों का साथ लगातार बना रहेगा आपके साथ। फिलहाल गुड मॉर्निंग है जी, और संडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने

0: पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी 102.6 पर। और क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच, हमारी यादें, हमारा व्यवहार आखिर बिल्कुल नियंत्रित कैसे होता है? और इन सवालों के जवाब तलाशने में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले महान भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर उबैद सिद्दीकी। और बिल्कुल 5 जनवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के बस्ती में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जीव विज्ञान, विशेष रूप से न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में काम किया, और जिसने विज्ञान की दुनिया को एक नई दिशा दी। और उन्होंने ये समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि जीन्स और मस्तिष्क और व्यवहार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ना? तो ये हम अक्सर देखते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है इन चीज़ों में, लेकिन इन्होंने बहुत आसान उसको बना दिया सभी के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें एक और विशेष पॉइंट पर, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाइज पर किए गए उनके शोध ने ये समझाने में मदद की कि हमारी तांत्रिक कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और स्वाद तथा गंध जैसे संवेदनाएं मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती हैं। और उनका ये शोध आधुनिक न्यूरोजेनेटिक्स की मजबूत नींव बना। और बिल्कुल एक बहुत बहुत एक विशेष चीज़ होती है कि हम कैसे चीज़ों को फील कर लेते हैं सुगंध से, और कैसे वो हमारे माइंड तक इतनी ईजिली पहुंच जाती है। बहुत उन्होंने इस पर रिसर्च किया। और डॉक्टर उबैद सिद्दीकी केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि भारत में विज्ञान अनुसंधान को उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और उनकी दूरदर्शिता ही थी कि हम इतने सारी चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। और उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और देश में विश्व स्तरीय शोध वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। और विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और वर्ष 2006 में पद्म विभूषण जैसे देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया था। लेकिन आज ही के दिन 2013 को वो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका शोध आज भी दुनिया भर में वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और वो हमें यही संदेश देते हैं कि जिज्ञासा, शोध और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो आइए इस महान वैज्ञानिक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और नवाचार की भावना आगे बढ़ाते चले जाएँ। एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में हमेशा वहीं रहती है और उसको बनाए रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी एक ज्ञान की वृद्धि होती है और उस ज्ञान के माध्यम से हम बहुत कुछ जान पाते हैं, अपने आप विचार पाते हैं और बिल्कुल आसपास की चीजों को समझ पाते हैं। स्टे ट्यून्ड। और आपके साथ मैं हूं आशुतोष। गुड मॉर्निंग टेली एनसीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के

बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आज है 26 जुलाई, एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में गर्व, सम्मान और कृतज्ञता का भाव जगाती है। ये है कारगिल विजय दिवस, और वो दिन जब 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन को कारगिल की चोटियों से खदेड़ते हुए तिरंगे की शान में फिर से एक बार बुलंद कर दिया था। और कारगिल का द्रास सेक्टर आज भी उन अमर वीरों की गाथा सुनाता है। यहाँ स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल उन शहीदों को नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। युद्ध की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी टाइगर हिल पर, और करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर इस चोटी को दुश्मन के कब्जे से मुक्त करवाया भारतीय सेना के अदम्य साहस का प्रतीक बन गया था। बिल्कुल, और इसी युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अदम्य साहस दिखाते हुए अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। और जब कारगिल की बात होती है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम स्वतः ही हमारे मेमोरीज में आ जाता है, स्मरण हो जाता है। और 0.5140 और 0.4875 पर विजय हासिल करते हुए उन्होंने अपने नेतृत्व और साहस से इतिहास रच दिया था। उनका अमर उद्घोष ये दिल मांगे मोर आज भी हर भारतीय के भीतर देशभक्ति का जोश भर देता है। राष्ट्र की सेवा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल की जीत सिर्फ सैनिकों ही की नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोगों की भी थी। कठिन मौसम, बर्फ से ढके रास्ते और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने सेना का हर कदम साथ दिया। यही कारण है कि भारतीय सेना आज भी उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद करती है। आइए कारगिल विजय दिवस पर उन सभी अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनकी बदौलत हम आजाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: और आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हाइलाइट्स।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: जब भी कोई भारतीय एथलीट बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के लिए मेडल जीत कर लाता है तो उसकी गूंज सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहती, वह भारत के करोड़ों दिलों को एक नई उम्मीद और प्रेरणा से भर देती है। राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन मिली झंडू कुमार की ये ऐतिहासिक कामयाबी भी कुछ ऐसी ही है। पैरा पावर लिफ्टिंग में उनके इस कांस्य पदक ने न केवल भारत का पदकों का खाता खोला बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब इरादे बुलंद हो तो हर बाधा छोटी पड़ जाती है।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है जो हम ग्लासगो में आके अपना झंडा लहराए हैं, इंडिया के मेडल अपना नाम किए हैं। तकलीफ समस्या को हमने एक दोस्त की तरह बना के रखे थे, उसी दोस्त के बदौलत, जुनून के बदौलत ग्लासगो में मेडल जीते हैं सर।
4: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में आज भी गर्मी है, लेकिन आज की गर्मी शायद जीत के जश्न की नहीं, उस जिद की है जो हार के बाद भी बुझती नहीं है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ढेर सारे पदक जीतने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। कल का दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से भले ही वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, लेकिन खेल हो या जिंदगी, कभी कभी एक दिन का नतीजा पूरी कहानी नहीं बयां करता। कभी एक छोटी सी आवाज बड़ी लहर बन जाती है और कभी एक छोटी सी जिद बड़े बदलाव की वजह। इसी भरोसे के साथ भारतीय खिलाड़ी भी आज फिर उतरेंगे मैदान में, क्योंकि बड़े मुकाबले हमेशा ताकत से नहीं जीते जाते। कभी कभी लगातार खड़े रहने का हौसला ही इतना होता है कि हालात को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। आइए जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तीसरे दिन क्या कुछ घटा।
5: In boxing, Haryana's Sachin Sivaj, a former youth world championships medalist, stormed into the round of 16 in the men's 60 kg weight category. Sivaj comfortably dispatched Canada's Keoma Ali Ahmadiye, a bronze medalist from Birmingham, 4-1, using his height and technique to great advantage. The win moves Sivaj into the pre-quarterfinals, where he will face the tough challenge of England's Will Hewitt.
4: लॉन बॉल्स। खेल शायद भारत में बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया इस खेल में भारत का नाम जरूर सुन रही है। गेंद धीरे चलती है, मुकाबला धैर्य से जीता जाता है और भारत लगातार अपने निशाने पर पहुंच रहा है। शुरुआत करते हैं वुमेन पेयर्स से, जहां पिंकी और रूपा रानी चिरकी की जोड़ी ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपनी नॉकआउट राउंड तक पहुंचने की उम्मीदों को बुलंद कर दिया है। कल खेले गए मुकाबले में टोंगा से आने वाली मिलिका नेथन और पेरिस बेकर की जोड़ी को इन्होंने हराया। पिंकी और रूपा दोनों ही 2022 की उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो मुकाबले आउटडोर यानी नेचुरल ग्रास पर खेले गए थे, इस बार के मुकाबले इंडोर्स यानी कारपेट वाली घास पर खेले जा रहे हैं, जिसके लिए पिंकी बताती हैं उन्होंने लंदन जाकर खास तैयारी की।
6: जितने भी हमने तैयारी पहले करी है या 22 में भी जो हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी वो ग्रास पे थी और हमेशा ग्रास पे हुआ है। इट्स अ फर्स्ट टाइम ये इंडोर हो रहा है। इसके लिए जो हमें चाहिए थी फैसिलिटीज, जो टाइम चाहिए था जितना, और जो टेक्निकल चाहिए थे, हमारे मैनेजर का सपोर्ट चाहिए था, वो सब हमें मिला है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, होपफुल कि हम दोबारा क्रिएट करें, तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए।
4: दूसरी तरफ अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे 43 साल के पुतुल सोनोवाल मेंस सिंगल्स में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने कनाडा के रायन बेस्टर, जो कि आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें हराया। दूसरे मुकाबले में पिछड़ने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। हालांकि कल पुतुल को एक कड़े मुकाबले में मलेशिया के इज्जत जुल्केप्ले के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुतुल नॉकआउट राउंड में पहुंचने की दौड़ में बने हुए हैं। पुतुल देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ पुतुल के साथ खुद भी हुआ।
7: बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है। कोशिश करूंगा कि इंडिया को मेडल देने के लिए। पहले लॉन बॉल असम में ऐसा कोई जानकारी नहीं था, लेकिन 2022 में जब इंडिया ने पहली बार वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल जीता तो वहाँ पे असम का भी एक मेंबर था जो लॉन बॉल इवेंट का फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन नयनमणि सैकिया। उसके बाद असम में अभी लॉन बॉल का ऐसे माहौल हो गया है कि सबका टारगेट है सभी प्लेयर को कॉमनवेल्थ गेम खेलना।

0: अब बात करते हैं 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल की। शनिवार को भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब महिला 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम ने वेल्स के खिलाफ अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया। हालांकि मैच के नतीजे ने ये साफ कर दिया कि इस स्तर पर चुनौती कितनी बड़ी है। वेल्स ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पूल बी के इस मैच में 16-1 से एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय टीम वेल्स की आक्रामकता और स्कोरिंग की रफ्तार का सामना करने में संघर्ष करती नजर आई। टीम शुरुआत में ही पिछड़ गई और फिर इस अंतर को कवर नहीं कर पाई। वेल्स ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पकड़ बनाए रखी। वही भारतीय टीम अपने 12 प्रयासों में से सिर्फ एक को ही पॉइंट में बदल सकी, जहां रीना गुप्ता ने भारत के लिए एकमात्र अंक बनाया।
1: महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की ये राष्ट्रमंडल खेलों में पहली उपस्थिति थी। पहली बार इस बड़े मंच तक पहुंचना ही अपने आप में एक जीत है। और बताते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन।
2: It's very important for us to embrace all sport that has got medals at the international level and to see wheelchair basketball not only flourish but to be able to field a team in the Commonwealth Games is heartening indeed. They are inspirations and they are pioneers as well. This team will inspire a lot of others.
0: Team अब इस शुरुआती मैच से तेजी से सीख लेकर प्रतियोगिता में तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी ताकि जब वो नाइजीरिया के विरुद्ध 27 जुलाई को कोर्ट पर लौटे तो एक मजबूत प्रदर्शन कर सके।
1: इन विमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स द क्वार्टेट ऑफ निष्का अग्रवाल, प्रणति नायक, इशिता रिवाले एंड प्रतिष्ठा समांता रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द टीम फाइनल्स। अलास, दे कुड नॉट सिक्योर अ मेडल। हाउएवर, बाय द वर्चू ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, इशिता रिवाले एंड प्रतिष्ठा समांता वर एबल टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज द रिजर्व्स फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स व्हिच विल टेक प्लेस ऑन संडे।
0: स्विमिंग की बात करें तो शनिवार को पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में भारत के दो तैराकों दक्षिण शशि कुमार और आर्यन नेहरा ने हिस्सा लिया। टोल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में दक्षिण ने अपनी रेस 3:58.09 में पूरी की, जबकि आर्यन ने 4:02.6 का समय क्लॉक किया। कुल 27 तैराकों के बीच दक्षिण 15वें स्थान पर रहे, जबकि आर्यन उनसे एक पायदान पीछे 16वें स्थान पर रहे। हीट से सिर्फ शीर्ष 8 सबसे तेज तैराक को ही फाइनल में जगह मिलती है, इसलिए दोनों में से कोई भी भारतीय फाइनल में जगह नहीं बना सका। दोनों आज 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में एक बार फिर से एक्शन में दिखेंगे।
1: आइए अब बात करते हैं कि रविवार यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन कौन कौन से खेलों पर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी। सबसे पहले वेट लिफ्टिंग, जिसमें मीराबाई चानू मंच पर उतरेंगी, बारबेल सामने होगा और करोड़ों निगाहें उन पर।
3: इंडिया विल बी फील्डिंग अ वेरिटेबल लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट इन वेट लिफ्टिंग टुडे एट द एसईसी आर्मेडिलो एज मीराबाई चानू कम्स आउट टू डिफेंड हर क्राउन। द 2-टाइम चैंपियन इन द 48 kg इवेंट इज द अनडिस्प्यूटेड हेडलाइनर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड व्हेन फिट चानूज एबिलिटी पुट्स हर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट इन द फील्ड। द टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट विल फेस अ स्टर्न चैलेंज फ्रॉम लिफ्टर्स belonging to Canada and Papua New Guinea, but her personal best is above the field and she is the favorite to finish on top of the CWG podium once again.
4: हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छे चल रही है, हम पूरा कोशिश करूंगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एशियन गेम्स में क्या क्या होगा, क्या और चेंज कर सकते हैं, वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा, तो ज्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखूंगी।
3: Chanu comes into the Commonwealth Games after agonizing fourth place finishes in the Hangzhou Asian Games and the Paris Olympics. G. Raja Raman on Chanu's preparation.
2: She should start as the favorite in the 48 kilo class. There is no doubt about that. She's the Commonwealth champion from last year. People will definitely expect her to do well in the Commonwealth Games. She's been very keen on doing well in the Commonwealth and in the Asian Games. So she has been very conservative in her preparation. She's not competed in too many big events. So she's been smart. So I expect her to be on the podium for sure. I think she's most likely to win gold. In fact, her coach has said that they're not even looking to do 90 kilos in snatch. That perhaps will come in the Asian Games. Right. And they know that they can win gold even without being at your 100%.
3: In the men's 60 kg category, fellow Manipuri Rishikanta Singh, the 2025 Commonwealth Championships gold medalist, comes in

0: to the Glasgow Games with realistic podium ambitions. He is not new to the CWG, having participated in 2022 in Birmingham in the 55 kg weight division. Meanwhile, Muthu Pandi Raja, hailing from Tamil Nadu, has come back to the sport after several years in the wilderness through injuries. He won silver in the 2025 Commonwealth Championships and is the current national champion, where he lifted a massive 302 kgs to win gold. This makes him a strong medal contender in the 65 kg weight category.
1: फिर नजरें होंगी बॉक्सिंग रिंग पर। बॉक्सिंग में एक पंच मुकाबला बदल सकता है, लेकिन रिंग में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, कलेजा चाहिए, जिसका परिचय दिया जादूमणि सिंह ने परसों हुए मुकाबले में। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने परसों राउंड ऑफ 32 में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से यानी 5-0 से हराया था। वही जज्बा लेकर रविवार को SEC सेंटर में जादूमणि एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में उनका सामना आर्च राइवल पाकिस्तान से है। सामने होंगे पाकिस्तान के सुमैमा रहमान, और हर एक पंच के साथ कहानी बदलेगी। क्या अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि सिंह एक बार फिर इस चुनौती के सामने खरे उतरेंगे? ऐसा ही जज्बा लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना डेब्यू करने पहुंचे हैं आदित्य प्रताप यादव। पहले राउंड में इनको बाय मिला, जिसके चलते पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये सीधा राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में चुनौती कड़ी है, क्योंकि सामने हैं युगांडा के नुहू बाटे। इन द वुमेन्स डिवीजन ऑन संडे ऑल आईज विल बी ऑन प्रीति, हु हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। शी डिफीटेड अ 3-time वर्ल्ड चैंपियन टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। शी विल बी गनिंग टू रिपीट दोज हीरोइक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स टू। In the 54 kilogram weight category, she will be up against Debra Mtenje of Malawi.
2: Moving on to lawn bowls, India have a busy day at the Scottish Events campus, as in the afternoon today, Ruparani Tirki and Pinky Singh take on Namibia's Dinah Willian and Amanda Steenkamp in a women's pairs Section B contest. Having defeated the world champion in his campaign opener, Putul Sonewal faces Malta's Sean Parnas in a must-win Section D contest in the men's singles.
1: फिर चलेंगे जिम्नास्टिक्स की ओर, जहां हर छलांग, हवा में उड़ता शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा मुजाहिरा किया जाता है जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। यहां शरीर की हर हरकत कला बन जाती है और एक छोटी सी चूक बरसों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारत की पुरुष टीम भले ही मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन इंडिविजुअल प्रतियोगिता में तपन मोहंती और योगेश्वर सिंह फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। यहां अच्छा प्रदर्शन उनको पोडियम पर ला खड़ा कर सकता है, और करोड़ों भारतीयों की यही उम्मीदें होंगी कि तपन और योगेश्वर दोनों ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्नास्टिक्स में भारत को मेडल दिलाएंगे।
2: Let's now turn our attention to swimming, as India's leading male swimmers will combine forces in the men's 4x200 meters freestyle relay at Tolcross Swimming Center. Srihari Natraj, Anish Gowda, Aryan Nehra and Dakshin Shashikumar are scheduled to compete in the heats in the evening today. Srihari brings considerable international experience to the quartet. In a relay, individual speed must come together with well-timed changeovers, and India will first look to secure a place in the final, scheduled for later tonight from a very tough field.
0: Australia topped the current medals tally with a grand total of 23, including 12 gold. England are second with 15 medals, while Nigeria are third with 6. India, meanwhile, with 1 bronze, are right now in joint 10th. Today, Indian athletes will set the Glasgow chill ablaze once again with every lift, every stroke and every uppercut, as the quest to bring glory to the nation continues at the 22nd Commonwealth Games.
2: फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ वापस राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ इसी वक्त पर जुड़ेंगे। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी और संपादक वंदना के साथ मैं मेघा सिन्हा और दर्पण टिकिया आपसे लेते हैं इजाजत।
3: द कॉमनवेल्थ गेम्स।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक, आपका बहुत बहुत स्वागत गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने बिल्कुल महात्मा गांधी उनको प्यार से तूफानी कहते थे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मीनू के नाम से पुकारा करते थे उनको। जी हम बात करें मालती देवी चौधरी जी की, जिनका जन्म आज के दिन पूर्वी बंगाल में हुआ था और बचपन से ही वे संवेदनशील और समाज सेवा के प्रति समर्पित थी और महज 16 वर्ष की आयु में ही वे शांति निकेतन पहुंची, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में उनके व्यक्तित्व को नई दिशा मिली थी। 1927 की बात करें तो उन्होंने नवाकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो आगे चलकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मालती जी ने सत्ता को नहीं बल्कि सेवा का मार्ग चुना और नमक सत्याग्रह के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी, जेल गई और वहाँ भी कैदियों को शिक्षा देकर गांधी जी के विचारों का प्रचार करती रही। और उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था और उन्होंने उत्कल नवजीवन मंडल और बाजी रावत छात्रावास जैसे संस्थाओं की स्थापना की ताकि समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा और विकास की रोशनी पहुंच सके। और भूदान आंदोलन में वे विनोबा भावे के साथ रही और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। साल 1946 में वे संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय सेवा के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। 15 मार्च 1998 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल आज़ादी दिलाने में नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने में है। और उनके जीवन साहस, सेवा, समर्पण के एक बिल्कुल एक प्रेरणा गाथा है और आज हम उनको नमन कर रहे हैं। और फिलहाल आप भी हमारे साथ यूं ही ट्यून इन रहिए, क्योंकि अभी कुछ ही पलों में आपके हम मैसेज भी शामिल करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी प्रोग्राम का दौर अभी चलता रहेगा और एक और अमेजिंग ट्रैक के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सोनू निगम फ्रॉम द फिल्म खाकी आपके लिए है।

और क्या आपने कभी ऐसे जंगलों के बारे में सुना है जो समुद्र के किनारे खारे पानी में उगते हैं और चुपचाप हमारी धरती की रक्षा करते रहते हैं? बिल्कुल, इन्हें कहते हैं मैनग्रोव वन। और हर साल 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने वर्ष 2015 में की थी और पहली बार इसे 26 जुलाई 2016 को मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को मैनग्रोव वनों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और मैनग्रोव सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि तटीय इलाकों के प्राकृतिक सुरक्षा कवच है और ये समुद्री तूफानों, ऊंची लहरों और तटीय कटाव से हमारी धरती की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ये बड़ी मात्रा में कार्बन को भी अपने भीतर समाहित करके जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये मछलियों, केकड़ों, पक्षियों और अनेक समुद्री जीवों का सुरक्षित आश्रय भी हैं। और भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव वनों में से एक है और इसके अलावा गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मैनग्रोव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस, अनगिनत तटीय विकास बिल्कुल और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण ये अमूल्य वन लगातार खतरे में है और इन्हें बचाना केवल सरकारों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक प्राकृतिक जो क्षेत्र होता है ना वो अपनी ही रूपरेखा में बना रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसको हम बिल्कुल अपना मानवीकरण उसमें कम से कम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हम सभी के लिए। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संकल्प लें कि प्रकृति के इस अनमोल प्रहरी मैनग्रोव वनों की रक्षा हम करेंगे, क्योंकि मैनग्रोव बचेंगे तो समुद्री तट बचेंगे और समुद्री तट बचेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल जो जो आपदाएं आती है ना, इनसे जो ये हमारी रक्षा करते हैं ये नेचुरल तरीके से ये वृक्ष ही करते हैं। और जब हम इनके प्रति जागरूक रहेंगे, अपने आसपास सभी को जागरूक रखेंगे, कचरा कम फैलाएंगे, जब भी हम घूमने जाते हैं कई बार टूरिज्म देखते हैं हम, बहुत सारे टूरिस्ट आ जाते हैं और बीचेस पे जाते हैं और वहाँ पर कचरा गंदगी हो जाती है, तो उससे हमें बचाव रखना है। और साथ में कुछ कैरी बैग लेकर जाएं जब भी आप घूमने जाएं और उसमें रखकर जो भी कचरा है वापस ले आएं तो हमारी प्रकृति बिल्कुल नेचुरली ब्यूटीफुल रहेगी जैसे वो बिल्कुल हमेशा रहती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं, उनको भी हम अपने साथ शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ अकोला से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। साथ ही साथ राजकुमार भी इस वक्त अकोला हमारे साथ कनेक्टेड हैं और इनके अलावा मेघा सिंह भी इस वक्त हमें सुन रही हैं और राजेश भल्ला जी मेरठ से इस वक्त हमें कनेक्टेड हैं, हमारे साथ प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ अजय झारखंड से हमें नमस्कार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसके अलावा डॉली भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं, गाने अच्छे लग रहे हैं इनको। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने प्यार के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बिल्कुल बता दें कि

कुछ ही पलों में गीतांजलि जुड़ेंगे आपके साथ गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर के अगला सफर को कंटिन्यू करने के लिए 8 से 9 के बीच आपके साथ रहेंगी और इस अमेजिंग जो इस शो को ना कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अमेजिंग गाने होंगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ होंगी और बिल्कुल मैं लौटूंगा 9 बजे से एक बार फिर से दिल के तराने गाने नए पुराने में। फिलहाल बस अब चलने का वक्त हो चुका है लेकिन चलते चलते बहुत सारे बातें याद आ रही हैं और एक और मैसेज हमारे पास आ गया है। फिलहाल दिनेश कुमार भंडारी इस वक्त कतर से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ मोनू पराशर भी इस वक्त नहरी गांव से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आप सभी का जो प्यार है ना वो हमें बिल्कुल उत्साहित करता रहता है कि हम और अच्छे अच्छे गीत प्ले करें आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आएँ आपके अपने प्रोग्राम्स में। तो बस रेनबो का साथ ऐसे ही निभा रखिए और संडे है तो संडे को अच्छे से एंजॉय कीजिए और कनेक्ट रहिए हमारे साथ लगातार ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूज़िकल डोज है ना वो हम हमेशा अच्छी रखते हैं और जिससे कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे और जो म्यूज़िक आपकी लाइफ में जुड़ता है ना तो आप खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है ना वो हमेशा खुश रहता है और वो हमेशा अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन बिताता है। फिलहाल आप भी हेल्दी रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए और हमारे साथ लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में। फिलहाल मैं चलता हूँ, आशुतोष, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया।

विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। आज कारगिल विजय दिवस है। यह दिन 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा सम्पन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौटी। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत तीन मैचों की श्रृंखला में दो मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुका है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दिल्ली NCR, उम्मीद है आपकी सुबह भी सूरज की पहली किरण की तरह खिली खिली होगी। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त गीतांजलि और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR कार्यक्रम, जहां हर सुबह शुरू होती है ढेर सारी जानकारी, अपनी सी बातें और अच्छे संगीत का साथ। कहते हैं अगर दिन की शुरुआत मुस्कुराकर हो जाए तो आधी परेशानियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं। तो जरा एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए, अपने लिए एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आज का दिन आपको कौन सी नई खुशी देने वाला है। चाय की पहली चुस्की हो, मॉर्निंग वॉक हो, ऑफिस जाने की तैयारी हो या फिर छुट्टी का आराम, हम अगले कुछ घंटों तक आपके साथ रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे गीत से जो आपकी सुबह को और भी खुशनुमा बना देगा।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत दिल से दिल तक पहुंचा अभी आपके। और फिलहाल आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं गीतांजलि। और अब बात करते हैं आज के मौसम की। दोस्तों, मौसम चाहे जैसा भी हो, अगर मन में उत्साह हो तो हर दिन सुहाना लगता है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मौसम के अनुसार अपनी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, पानी साथ रखिएगा, ज़रूरत हो तो छाता भी, और सबसे ज़रूरी बात अपने साथ सकारात्मकता लेकर निकलिएगा, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एक्सेसरी है आज के टाइम पर। वैसे भी दिल्ली का मौसम और ज़िंदगी दोनों कब नया रंग दिखा दें, कहाँ नहीं जा सकता। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और सुनते हैं एक और शानदार गीत जो आपके दिन में भर देगा नई ताजगी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम और मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि। दोस्तों, हर बच्चे के भीतर कोई ना कोई अनोखी प्रतिभा छिपी होती है। कोई विज्ञान में कमाल करता है, कोई खेल में, कोई कला में, कोई संगीत में, साहित्य में, या फिर कोई सामाजिक सेवा या नवाचार के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता है। तो ऐसे ही होनहार बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा बाल प्रतिभागी है जिसने अपने कार्यों से समाज में प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो उसके लिए स्व नामांकन या फिर किसी योग्य बाल प्रतिभा का नामांकन किया जा सकता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन बच्चों के लिए जिनके अंदर कोई प्रतिभा छिपी बैठी है, जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही। ध्यान रहे, आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, तो अभी भी वक्त बाकी है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन आवेदन के लिए आप जा सकते हैं awards.gov.in पर, वहां पर जाकर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देश की उभरती प्रतिभाओं को दें वो पहचान जिसकी वो है सचमुच हकदार। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और एक प्यारा सा गीत मेरे साथ।

जी दोस्तों, जिंदगी में बहारें तभी आती हैं जब चेहरे पर मुस्कुराहट हो और हंसी हो। दोस्तों कहते हैं हंसी सबसे अच्छी दवा है, आप भी कहेंगे। गीतांजलि हमेशा मुस्कुराने की, हंसने की, बस ऐसी बातें करती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान भी इस बात को काफी हद तक सही मानता है। दोस्तों जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे मस्तिष्क से एंडोर्फिन नाम के फील गुड रसायन निकलते हैं और ये हमें बहुत अच्छा महसूस कराने में मदद करते हैं और हमारी दर्द की अनुभूति जो होती है ना दोस्तों, वो भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये आप जानते हैं, हंसी के दौरान शरीर में से कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव से जुड़े हार्मोन्स का स्तर घट जाता है। यही वजह है कि हंसने के बाद अक्सर मन हल्का और सुकून भरा महसूस करता है। क्या आप जानते हैं, एक बार खुलकर हंसने पर चेहरे, पेट और छाती की कई मांसपेशियां एक साथ सक्रिय हो जाती हैं और

इसलिए इसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी माना जाता है। और एक दिलचस्प बात कि हंसी एक संक्रामक होती है। जब हम किसी को हंसते हुए देखते या सुनते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और जिससे हमें भी मुस्कुराने या हंसने का मन करता है। अब ये बड़े बड़े शब्द और बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर बस इतनी सी बात है कि मुस्कुराइए और मुस्कुराने की वजह बनिए दूसरों की। तो दोस्तों, आज का मंत्र बस इतना सा कि मुस्कुराइए, हंसिए और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए, क्योंकि हंसी मुफ्त है लेकिन इसका असर जो है वो अनमोल है।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए एक अहम अपडेट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS UG एडमिशन के दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपने अभी तक अपना अलॉटमेंट नहीं देखा है तो तुरंत CSAS पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करें कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है। ध्यान रहे, आज यानी 26 जुलाई सीट स्वीकार करने का आखिरी दिन है, इसलिए यदि आपको सीट अलॉट हुई है तो आज 12 बजे तक उसे एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद संबंधित कॉलेज 27 जुलाई तक आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 28 जुलाई तक एडमिशन फीस जमा करके अपनी सीट पक्की करनी होगी आपको। और अगर इस बार भी आपको सीट नहीं मिली है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगस्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिड एंट्री का विकल्प भी उपलब्ध कराएगी, जिससे आप एक बार फिर से एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी अपने का सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है तो समय का पूरा ध्यान रखें और सभी जरूरी औपचारिकताएं तय समय के भीतर भीतर पूरी कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक और गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जानकारी पहले भी आपके साथ साझा की है, एक बार आज फिर से करना चाहूँगी, क्योंकि कला जो है ना, जितनी सामने आए मुझे लगता है उतनी ही कम है। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपकी बनाई हुई एक छोटी सी फिल्म पूरे देश में देखी जाए और साथ ही आपको लाखों रुपए का पुरस्कार जीतने का भी मौका मिले तो कैसा लगेगा? जी हाँ, अगर आपके पास कोई शानदार आइडिया है तो अब उसे कैमरे में कैद करने का समय आ गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें आप रील, एआई फिल्म या लघु फिल्म बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे खास बात की इस प्रतियोगिता में लाखों रुपए तक के पुरस्कार जीतने का भी अवसर है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। लेकिन याद रखिए, एंट्री भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, वक्त अभी भी बाकी है। अगर आप अभी तक चूक गए हैं तो आज से शुरुआत कर दीजिए, देर किस बात की है। अपनी रचनात्मकता को उड़ान दीजिए और आज ही वंदे मातरम 150.in, जी हाँ, वंदे मातरम 150.in पर जाकर अपनी एंट्री भेजिए। हो सकता है अगली कहानी जो पूरे देश का दिल जीत ले वो आपकी ही हो।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। और आइए मैं आपको बता दूं कि आज सारे दिन में आपके लिए FM रेनबो क्या क्या खास लेकर आ रहा है। अब से थोड़ी देर में 9 बजे सुनिएगा हिंदी के मुख्य समाचार, जिसे प्रस्तुत करेंगे आशुतोष भारद्वाज। और 9:02 पर कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने सुनिएगा आशुतोष के साथ। 9:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का हिंदी संस्करण आप सुन सकते हैं। दोपहर 1 बजे हिंदी समाचार प्रस्तुत करेंगी दीपांशी अरोड़ा। 1:02 पर कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग सुन सकते हैं आप दीपांशी के साथ। 2:02 पर बच्चों के लिए खास कार्यक्रम आशियाना छोटे उस्ताद प्रस्तुत करेंगे राजेश कुमार। 3 बजे से सुनिएगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या से जुड़ी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी विशेषज्ञों से मिलेगी। प्रस्तुति होगी खुर्शीद आलम के साथ। 4:02 पर अल्फा जन कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। 5:02 पर सिटी लाइट्स कार्यक्रम, जिसमें शहर की हलचल, ट्रैफिक अपडेट्स और कई उपयोगी जानकारियां लेकर आएंगे खुर्शीद आलम। 6:02 पर मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम, जहां व्हाट्सएप के जरिए श्रोताओं की भागीदारी होगी। आपके साथ रहेंगे प्रणव सक्सेना। रात 8 बजे से मन की बात का अंग्रेजी संस्करण आप सुन सकते हैं 9:02 पर द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस विशेष अंक में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल से रोचक बातचीत सुनने का आपको अवसर मिलेगा। 11:02 पर गजलों से सजी खूबसूरत महफिल रंगे महफिल कार्यक्रम आप सुन सकते हैं ताहिर हसन के साथ। तो ऐसे ही कार्यक्रम, खास कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। फिलहाल एक प्यारा सा गीत मिलकर सुनते हैं।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी मुलाकात को यहीं विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज की सुबह आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गई होगी और आपके दिन की शुरुआत थोड़ी और खुशनुमा बना गई होगी। याद रखिए, हर नया दिन ये नहीं पूछता कि कल क्या हुआ था, हर नया दिन ये नहीं पूछता कि कल क्या हुआ था, वो सिर्फ इतना कहता है कि आज फिर से शुरुआत कीजिए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास भी खुशियां बांटते रहिए। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त गीतांजलि, अब आपसे इजाजत चाहूंगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। सरकार कल लोकसभा

आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मालदोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौटी। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने रणनीतिक लाल सागर बंदरगाह शहर हुदैदा पर सऊदी अरब के हवाई हमले के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटॉक सुरक्षित लौटा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र उड़ीसा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच जीतकर अजय बढ़त बना चुका है। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी संडे स्पेशल दिल के तराने गाने निपुरा में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष आपके साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 9:03:40 हो चुके हैं बिल्कुल, तो वक्त किस बात का हम बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे। आपको लेटेस्ट गाने यहाँ पर सुनाने वाले नकश अजीज की आवाज में, ये वाला लेटेस्ट ट्रैक आ रहा है मैं यार हूँ तेरा तो हम भी आपके यार हैं। और स्टे ट्यून्ड हमारे साथ सुनते रहिए, और उसके बाद रेट्रो का फ्लेवर आपको मिलेगा जरूर। स्टे ट्यून्ड हमारे साथ सुनते रहिए दिल के तराने गाने नहीं पुराने।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

तैयार बैठा है बिल्कुल। और जो पहला ट्रैक निकाले रेट्रो में, हम फिल्म सूरज से, जो म्यूजिकल हिट फिल्म थी, रोमांटिक थ्रिलर थी 1966 की, और म्यूजिक है शंकर जयकिशन की महान जोड़ी का, और एक्टर राजेंद्र कुमार विजयंती माला, और लिरिक्स हैं इसमें हसरत जयपुरी साहब के, और गायक हैं मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर। तो आइए इस गीत को एंजॉय करते हैं, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर मिलेगा आपको आज के इस प्रोग्राम में। रेट्रो का पहला बहुत ही रोमांटिक ट्रैक निकल रहा है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए दिल के तराने गाने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: एब्सोल्युटली बिल्कुल आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, और बिल्कुल अब बिल्कुल 9:30 बजने वाले हैं और बिल्कुल अगला रेट्रो ट्रैक उसका वक्त हमारा बिल्कुल हो चुका है। जो हम अगला रेट्रो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, फिल्म पुकार से 1983 में फिल्म आई थी और गुलशन बाबरा जी के लिरिक्स हैं और आर डी बर्मन साहब का बेमिसाल म्यूज़िक, और गा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले जी। सो जब आर डी बर्मन की म्यूज़िक की बात होती है ना, तो बिल्कुल एवरग्रीन म्यूज़िक हमेशा आपके जहन में आता है और ऐसा म्यूज़िक जो कि जब भी आप सुनते हैं ना तो रिफ़्रेश हो जाते हैं। फिलहाल बिल्कुल आपको रिफ़्रेश करने वाला गीत आ रहा है, आइए इसको एंजॉय करते हैं और सुनते रहिए हमारे साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जाने को नहीं बोलेंगे हम. फिलहाल हम आपके मैसेजेस को बिल्कुल बोलेंगे आने को. हमारे पास आ रहे हैं राजकुमार संधानी इस वक्त अकोला महाराष्ट्र से, इस वक्त हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और डॉली भी इस वक्त हमारे प्रोग्राम के एंजॉय कर रही हैं, गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इनको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और इसी के साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, रेट्रो फ्लेवर बहुत पसंद है इनको, बहुत शुक्रिया आपका. और साथ ही साथ राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नूरानी अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है कुरावली से. और बिल्कुल साथ ही साथ राजेश भल्ला साहब, बिल्कुल रेट्रो के दीवाने हमारे. बहुत ही अच्छे लगे इनको हमारे रेट्रो फ्लेवर्स. फिलहाल बस अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी आएगा 9:45 से. सो बताता चलूँ आपको कि कौन से प्रोग्राम्स आप सुन पाएंगे आगे. मैचलेस म्यूजिक आवर आपके साथ जुड़ेंगी हिमानी तत्ता 10:02 से, और उसके बाद आप सुन पाएंगे 10:55 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात. और उसके बाद 12:02 से आप सुन पाएंगे प्लेट कूल हिमानी दत्ता के साथ. और 1:02 से आपका फेवरेट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग दीपांशी अरोड़ा इस वक्त आपके साथ होंगे उस प्रोग्राम में. और बिल्कुल 2:02 से आप सुन पाएंगे आशियाना राजेश कुमार के साथ. और आज छोटे उस्ताद का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बच्चों की बातें होंगी बहुत सारी. आप स्टे ट्यून्ड, ये सारे प्रोग्राम्स आपका इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल बस अब छोड़े जा रहा हूँ इस अमेजिंग ट्रैक के साथ आपको. बहुत ख्याल रखिएगा अपना. संडे बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा. बस यही उम्मीद है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप हमेशा ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करते जाइए. फिलहाल ये गीत खास आपके लिए, क्लोजिंग सॉन्ग हमारी ओर से, दिल के तराने, गाने नए पुराने आपके लिए. मैं छोड़े जा रहा हूँ इस गीत के साथ. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.

0: आइए, ये वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी
1: एंड लीगल रेमेडीज बाय शुभ्रजीत गोस्वामी, प्रोग्राम ऑफिसर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, एंड स्मिता हर्षल साल्वे, सीनियर लीगल कंसल्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Community, एक community जब कोई problem से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब air quality हो, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो court नहीं जा पाता है. Court final stage पे आता है and court इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि court पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारे देश में, that is justice. अब environment दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ, कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर

0: जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके जंगल से लेके कोस्टल एरिया से लेके सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक अभिन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसा बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दैट्स द आइडिया दैट वी शुड टेक सम प्रिकॉशन बिफोर वी आर कमिंग अप विद सम एक्टिविटी विच इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग अप विद अ इंडस्ट्री which is taking such and such ground water, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is the this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसके क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया हो। उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके

0: उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशिंग फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है, वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है। तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है, उनको उतना रेमिडीज नहीं मिले, तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ सब एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसके क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाई कोर्ट, जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट when we talk about environmental justice we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the High House in Delhi. So that's how we can achieve truth, environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज बना दी और क्लियरेंसेस दे दी, उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप Department of Justice द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।

आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल। न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति

इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह

मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को
एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी
जंगल को फिर से

हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूँ, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है

कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी।

0: प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात की 136वीं कड़ी में सुना। आज उन्होंने एक ऐसी तारीख के बारे में चर्चा की जिसे शायद कोई भारतीय भूल नहीं पाएगा। आज 26 जुलाई एक ऐसी ही तारीख है जिसे हम कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति में हमारे सैनिकों ने हर चुनौती का हौसले के साथ सामना किया। उन्होंने कहा कि मां भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल दिवस पर उन्होंने कहा कि मैं उन सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।

मन की बात की 136वीं कड़ी में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत एक एक बात और बताई कि आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया, इस बारे में उन्होंने चर्चा की। ये आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बना है और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें।

मन की बात कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। उन्होंने कहा, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच जीतने पर भी उन्हें बधाई दी और कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे छोटे प्रयास के बारे में भी चर्चा की जो उन्होंने बताया कि बहुत मायने रखते हैं, जैसे केरलम में अर्नाकुलम के साउथ चित्तौर में स्पोर्ट्स के एक ऐसे ही प्रयास के बारे में उन्होंने बताया। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बहुत ही अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक का नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद भी मिलता है और साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।

कार्यक्रम मन की बात में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चाय के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताना हो, चाय हर मौके का हिस्सा खुद ब खुद बन जाती है। उन्होंने कहा कि चाय जिसकी वो चर्चा आज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी खोल दी है। उन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के बारे में जिन्होंने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। उन्होंने कहा इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच एक खास पहचान बना ली है और प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना भी मिली। उन्होंने कहा कि विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि एक प्रेरक बात है क्योंकि ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू किया गया था और आज ये ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्म

कार्यक्रम मन की बात की 136वीं कड़ी के आज के संस्करण में अंत में उन्होंने बात की 27 जुलाई की। 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय में सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। और इसी के साथ उन्होंने बात की स्वतंत्रता दिवस की। उन्होंने कहा कि कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं।

Imagine Dragons with the track Nice to Meet You. And please allow me to say the next few things in Hindi. And I am so emotional right now. I am so honored. And I am literally standing and saying whatever I am, because this is the least I can do. I have with me here, okay, let me read the message, okay? I'm excited, I'm emotional, I'm grateful. Okay, so the message reads, Ram Ram Sahar, main Sushen Niharkar, village Lower Dahung Tenga, Arunachal Pradesh, Indian Army soldier on duty. Oh my God, I can't read it out, the rest of it. And he says, well, first of all, sir, a big salute to you, your team, everybody there. And not just because it is Kargil Vijay Diwas, for us, every day is Army Day. Har roz, har din, Army Diwas hota hai. And hum jo ye sab kar rahe hain, yahan se hum show kar rahe hain, hum apni zindagi jee rahe hain, wo sirf aap sab ki wajah se hai. एंड आपने इस शो में हमें मैसेज भेजा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. एक बार फिर आपको, आपकी पूरी टीम को, हम सब की तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूट. एंड फर्दर ही सेज, जब भी समय मिलता है तो दिल से सुनता हूँ और दोस्तों को सुनाता हूँ. मैं बहुत खुश हूँ जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप से आपके प्रोग्राम सुनता हूँ और फैमिली क्वार्टर्स पर ठीक ठाक सुनते रहते हैं. एंड ही इज़ रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग. सर सॉरी, मैं जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया है वो मैं नहीं प्ले कर सकती हूँ, बट एक अंग्रेजी का गाना है, शायद आपने सुना हो, रिकी मार्टिन, कप ऑफ लाइफ. और यही मैं आपको इस समय डेडिकेट कर सकती हूँ, बिकॉज हमारी जो ज़िंदगी है वो हम जी पा रहे हैं सिर्फ आपके लिए. और हमारा जो जीवन का जो यू नो सॉरी, मैं इस समय बिल्कुल भाव विभोर हो गई हूँ और इतना ही कह सकती हूँ. इसके आगे आई एम स्पीचलेस, आई कॉन्ट से एनी थिंग. सो फॉर यू, फॉर योर एंटायर टीम एंड फॉर एवरी मेम्बर ऑफ द आर्म फोर्सेज, ट्यून्ड इन और नॉट ट्यून्ड इन, दिस इज रिकी मार्टिन कमिंग आउट विद ऑल द लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू.

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाँ?
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि

0: लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड दिस इज आकाशवाणी रेनबो ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज। दिस शो इज कॉल्ड प्लेड कूल, योर कूल कूल डोज ऑफ पोस्ट लंच और प्री लंच वेस्टर्न म्यूजिक। एंड यस, कमिंग बैक टू योर मैसेजेस, एंड दिस इज एम राजकुमार फ्रॉम ट्रिची ऑफ कोर्स, एंड ही सेज टू द आर्मी पर्सन हु जस्ट रोट इन, माय हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर प्रोटेक्टिंग अस एंड आवर नेशन ऑल द टाइम, नो वर्ड्स कैन इक्वल योर डेडिकेशन एंड सेल्फलेसनेस, मच रिस्पेक्ट टू यू एंड योर टीम सर। And I will just, okay, where is that message? I just need to search it because in this flood of messages, I've just, you know, it's there somewhere, of course. And then moving ahead, this is Sashan Loringma from Assam, and he says, please play a track by the Venga Boys. Definitely, I will do that. But can I request you something? I asked a question of the day, and my question is, what would you like an unlimited supply of in your life? And of course, terms and conditions do not apply. I will play that song for you, but it would be nice to hear from you on this one. Right, and moving ahead, this is Sanjay Sinha from Deogar, Jharkhand, and he says, I want unlimited supply of love for my whole life. Well, that is what we here at Akashwani Rainbow give you 24/7, 365 days a year. And of course, it's forever. And more messages, of course, coming in, but right now, very quickly, let me play the next track. And okay, I will play that track later, the one you requested for Venga Boys. There are other requests as well, but right now I'm going to play one of my very favorite numbers. This is of course my favorite artist as well, Celine Dion. She rules hearts across the planet, and this is one song that touches every heart.

0: And that definitely calls for a break.
1: तुम मेरी रखो लाज हरे।
2: हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल। शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा।

दोपहर के 1 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके असाधारण शौर्य और बलिदान हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौटी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ICFT ने 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 97वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इक्फी के लिए प्रविष्टियां आधिकारिक तौर पर खोल दी हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अनाहत सिंह की जीत को असाधारण उपलब्धि बताया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुका है। ये थे अब तक के

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम वही है जिसका हर दोपहर आप करते हैं बेसब्री से इंतजार। इंतजार इसीलिए क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसमें भाई हम आपके जज्बात आपके चाहने वालों तक पहुंचाते हैं, आपकी दिल की बातें गीतों के जरिए, नगमों के जरिए आपके अपनों तक पहुंचाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस घर पे बैठे और कोई काम ना हो, बस अपनी पसंद का संगीत सुनते रहे, तो बस ये प्रोग्राम वही ख्वाहिशात को पूरा करता है आपकी। प्रोग्राम का नाम है मेरे वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, लेकर आई हूँ वो प्रोग्राम जिसमें आज आपकी चाहत को हम करेंगे पूरा, आपकी पसंद को प्ले करेंगे यहाँ पर, जो भी आपकी पसंद हो। और पसंद को पूरा करवाने के लिए तो बहुत ही आसान सा काम करना है आपको, सिर्फ मैसेज पहुँचाना है हम तक। हमारा मैसेज जिस नंबर से हम तक पहुँचेगा, आपका मैसेज जिस नंबर से हमारे तक पहुँचेगा, वो नंबर है 9868107070 9868107070। तो जब तक आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू होता है और आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं, उससे पहले आज हम सभी, हर भारतवासी, हर भारतीय गौरवान्वित है ये सोचकर कि हम इस मिट्टी से जुड़े हैं, भारत देश से जुड़े हैं। और वो सैनिक जो सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे कठिन मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, उन सभी परिस्थितियों को भूलकर, अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर बस सीमा पर इसीलिए तैनात रहते हैं कि हर देशवासी, हर भारतवासी अपने घर में आराम से सो सके, है ना। तो आज विजय कारगिल दिवस पर, कारगिल विजय दिवस पर, इस दिन हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत देश के लिए, हम सभी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी शहीदी दी, उन सभी शहीदों को याद करते हुए शायद हम जितना गौरव महसूस करते हैं ना, उतनी ही शायद हमारी आंखें भी भीग जाती हैं ये सोचकर कि उन शहीदों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, ये सोचे बिना कि उनका घर परिवार भी है पीछे, बस अपना वो कर्तव्य निभाया जिससे आज हम सभी इस देश पे सुरक्षित हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम सभी की ओर से उन सभी शहीदों को, उन सभी अनगिनत सैनिकों को जो डटे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, हम सभी की ओर से उन सभी को सलाम।

और कारगिल विजय दिवस के आज इस मौके पर उन सभी शौर्य वीरों को याद करते हुए, उनके उस अदम्य साहस को याद करते हुए, उनके उन सैक्रिफाइसेस को याद करते हुए हम सभी का सलाम, हम सभी का सैल्यूट। और ये पहला गाना आज उन्हीं शौर्य वीरों के नाम।

आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी और आपके मैसेजेस का सिलसिला बिल्कुल शुरू हो चुका है। और जिन भी लिसनर्स ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें एक बार फिर से बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, अपने मैसेजेस अपने संदेश हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9868107070 9868107070 है वो नंबर जो आपके मैसेजेस को हम तक पहुँचा देगा। तो पहला मैसेज जो ठीक 1 बजे पहुंचा हम तक, ये पहला मैसेज आया है सलीम अख्तर साहब का। रेशमा बेगम अलीगढ़ से जुड़े हमारे साथ और उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। मनमोहन सिंह जुड़े हमारे साथ हसनपुर गांव से, 3 गानों की फरमाइश के साथ उन्होंने 3 गानों के बोल लिखकर हम तक पहुंचाए हैं कि इनमें से कोई भी गाना प्ले कर दिया जाए। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जुड़े हैं हमारे साथ और इनके सभी मित्रगण भी इनके साथ हैं, संजय, संदीप, अनिल जैन, राधा और दर्शन भाई, और इन्होंने भी कुछ गानों की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। सौरभ अनेजा जुड़े हमारे साथ गाज़ियाबाद से, लिखते हैं कि मेरे कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, बस मैं शो इन्जॉय करता हूँ। जी हाँ, आप इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अब हमें ये पता चल गया है कि आपकी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, केवल प्रोग्राम आप इंजॉय करते हैं, तो इंजॉय द प्रोग्राम। कविता जुड़ी हमारे साथ गढ़वाल उत्तराखंड से और ये भी एक गाना सुनना चाहती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप अपना इतना ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचाते हैं, इतने मैसेजेस हम तक आते हैं, तो ये संभव नहीं है 1 घंटे के प्रोग्राम में कि इन सभी जो सॉन्ग्स हैं इनको प्ले

किया जाए, तो आप अपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर सॉन्ग प्ले ना भी हो तो आपका जो मैसेज है उसे मैं ज़रूर शामिल करूं अपने इस कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमें कुलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय का आया है और इन्होंने भी एक गाने की जो पसंद है हम तक पहुँचाई है। अगला मैसेज हमें जम्मू कश्मीर से आया है, राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। तो चलिए राजू जी की फरमाइश और रानी जी की फरमाइश को करते हैं पूरा, ये गाना उनके साथ हम सभी इंजॉय करते हैं। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो में, प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दीपांशी, और हमारे जो भी लिसनर्स अभी अभी ट्यून इन जिन्होंने किया है रेडियो, तो उन्हें भी अपना नंबर बता दें ताकि वो भी अपनी जो फरमाइश है, अपने जज्बात हम तक पहुंचा सके। 9868107070। और ये मेरा प्रॉमिस हमेशा की तरह, अगर आपका गाना प्ले नहीं भी हुआ तो भी आई प्रॉमिस कि आपके जो मैसेजेस हैं उन्हें मैं ज़रूर शामिल करूंगी इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपने अगले मैसेज की ओर, और ये जो अगला मैसेज है ये प्रगति ने हम तक पहुँचाया है। प्रगति पटना से जुड़ी है हमारे साथ, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज जो आया है प्रगति के मैसेज के बाद, ये श्री रामपुर से आया है ये मैसेज, और पुणे से भी, और श्री रामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका जुड़े हमारे साथ, और पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज हमें मिला है, नमस्कार मैडम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और एक गाने की फरमाइश उन्होंने पहुंचाई हम तक। आपका नाम है नीरज ध्यानी, और कोटद्वार गढ़वाल से जुड़े हैं हमारे साथ। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है सतपाल वर्मा जी का, पंजाब से, और ये तेरे नाम मूवी का एक गाना सुनना चाहते हैं, और इसे डेडिकेट कर रहे हैं हम सभी आरजेएस को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डेडिकेशन, थैंक यू। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है, गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूं। अफशा खानम जुड़ी हमारे साथ धामपुर से, धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। थैंक यू वेरी मच अफशा, आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। अगला मैसेज, इनका शायद मैसेज मुझसे मिस हुआ है, ये मैसेज हम तक पहुंचाया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से वरुण वार्ष्णेय ने, और इन्होंने कारगिल विजय दिवस की पर एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी वरुण आप तक आपका जो गाना है उसे प्ले करने की। फुरकान, मोहम्मद फुरकान जुड़े हमारे साथ कांड से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। शुक्लाल बाला वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं हमारे साथ, और इन्होंने भी गाने की फरमाइश पहुंचाई हम तक, और ये सभी उन शौर्य वीरों को, शहीदों को ये गाना जो है डेडिकेट करना चाहते हैं। पंकज जुड़े हैं अमरावती महाराष्ट्र से, और लिखते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून पंकज जी, और इन्होंने कुछ गानों की फरमाइश हम तक पहुँचाई है, और अभिनेता जुगल हंसराज जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। चलिए आपकी शुभकामनाएं होप उन तक पहुंच जाए। अगला मैसेज हमें मिला है, गुड आफ्टरनून, मैं सुशेन निहारकर और उनकी फैमिली अश्विनी निहारकर विलेज लोअर डहांग अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हैं। इंडियन आर्मी सोल्जर हूं, ड्यूटी पर हूँ, और जब भी समय मिलता है तो दिल से सुनता हूँ और दोस्तों को सुनाता हूँ। बहुत खुश हूँ जो न्यूज़ ऑन एयर आप प्रोग्राम आप जो हमारे न्यूज़ ऑन एयर के ज़रिए जो प्रोग्राम है ये सुन पाते हैं, और फैमिली क्वार्टर्स पर भी ठीक सुनाई देता है, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। चलिए आपने आज ये फरमाइश हम तक पहुँचाई है, और आप डटे हैं सीमा पर हम सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। मातृभूमि

0: भूमि की सेवा में हैं वहाँ पर, और बस हम इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। आपको हमारी ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा जो गाना है ये आपके लिए।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दीपांशी और बस कोशिश कर रही हूं कि आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए और आपके मैसेजेस जो हैं, ढेरों मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और ये प्रयास मेरा रहेगा कि आप सभी के मैसेज जो है कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो। अगला मैसेज हमें मिला है मोहम्मद इम्तियाज़ साहब का और ये कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। एक गाने की फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुँचाई है। अगला मैसेज जो मिला है ये है प्रदीप सलूजा जी जुड़े हैं जनकपुरी दिल्ली से और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज जो मिला है हमें सारिका जुड़ी हमारे साथ दिल्ली से और एक गाने की फरमाइश को लेकर प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगा दी है इन्होंने। और अगला मैसेज हमें सौरभ का आया है, इला एंड सौरभ, और ये दिल से मूवी का एक गाना सुनना चाहते हैं। भगवती जी जुड़ी हैं हमारे साथ, लिखती हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और इन्होंने भी कुछ गाने की फरमाइशें हम तक पहुंचाई हैं और कह रही हैं इनमें से कोई भी गाना जो है इनके लिए प्ले कर दिया जाए। कासगंज से राधे श्याम जुड़े हैं हमारे साथ और एक गाना हम तक पहुंचाया इन्होंने, नमस्कार। अमित कुमार जुड़े हैं हमारे साथ और ये भी मेरठ से हैं और इन्होंने मेरठ से गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई। सुनीता शालीमार बाग से जुड़ी हैं और लिखती हैं कि दिलबर मूवी का एक गाना इन्हें सुना दिया जाए। सुनीता के बाद अगला जो मैसेज आया है नवलू वरक गांव मलपण जिला उत्तर गोवा से जुड़े हैं और ये लिखते हैं कि फिल्म दिल तो पागल है का कोई भी गाना इन्हें सुना दिया जाए, गोवा में बारिश।

कुछ नहीं है। ओके चलिए, बारिश ज़रूर होगी गोवा में, और दिल्ली में तो बारिश पहुंच गई है। आई होप वहाँ भी जल्दी से रिम झिम बादल बरस जाएं, और जैसे दिल्ली का अभी मौसम थोड़ा सा सुहाना है, एटलीस्ट शाम को तो हो ही जाता है, वैसा मौसम गोवा में भी जल्दी से हो जाए। मनमोहन सिंह जुड़े हमारे साथ यूपी रामपुर से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं, प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग। दीपांशी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में देशभक्ति से उत्प्रोत गाने ने देशभक्ति के एहसास को जीवंत कर दिया है। सभी बहादुर सैनिकों को सलाम। ये मैसेज आया है रवि जोशी जी का मेरठ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। अगला जो मैसेज आया है ये ग्रेटर नोएडा से आया है, और सुरोजीत जी, हाँ इनका नाम है सुरोजीत, और इन्होंने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है ग्रेटर नोएडा से। लिखते हैं, पहले मैं कारगिल के उन वीरों को शत शत नमन करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। देखिए, सबके मैसेजेस और सबके नाम मैंने शामिल कर लिए हैं कार्यक्रम में। इनका एक मैसेज हम तक पहुंचा है गाने की फरमाइश के साथ। ये जो इनका नाम, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, इन्होंने एक मैसेज हम तक पहुंचाया है। बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश भी पहुंचाई है। और अगला ये जो मैसेज है ये पहुंचा है हमें उत्तम नगर से, होली चौक, उत्तम नगर, दिल्ली से, और ये लिखते हैं, खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। और ये मैसेज हम तक पहुँचाया है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु ने, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। चलिए, आपने लिखा है फिल्म पूरब और पश्चिम फिल्म का एक गाना सुना दिया जाए। चलिए, पूरब और पश्चिम का ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, और साथ में हम सभी इस गाने को एंजॉय करते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, और आपके प्यार भरे जो संदेश हैं इन्हें पढ़ रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि इतना ढेर सारा प्यार भेजते हैं आप, इन संदेशों के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं, कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ऐसे लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, तो उन्हें भी बता दें यदि आप भी हम तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपना संदेश, अपना जो भी आज नगमा कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070986810707070। अगला मैसेज हम तक पहुँचा है, ये छत्तीसगढ़ से पहुंचा है, और कबीर देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी पूजा और राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, ये जुड़े हैं हमारे साथ एक गाने की फरमाइश लिए। अगला मैसेज जो हमें पहुंचा है वो आया है, ये जुड़े हैं हमारे साथ सहसपुर लोहारा दनियाखुर जिला, गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत, ये जुड़े हैं हमारे साथ, गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है इन्होंने। और अगला मैसेज जो है ये आया है पोटिया कला दुर्ग से, संजय सुजाता, शशांक, सीमा, ये जुड़े गाने की फरमाइश लेकर। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हम तक सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। ये आया है नागपुर महाराष्ट्र से कमल, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफसल मलिक का मैसेज आया है, और रामगढ़ कैंट झारखंड से जुड़े हैं निप्पी साहनी और सुनीता साहनी, और लिखते हैं कोई भी गाना सुनवा दिया जाए। और कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई और लिखते हैं कि बारिश के हिसाब से कोई गाना मिल जाए तो ज़रूर प्ले कर दिया जाए। और मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा साहब, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिटा बजाज, ये सभी जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, मेरा नाम चंद्रसेन भारती है, और लिखते हैं कि मेरी पत्नी का नाम ऋतिका शुक्ला है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मेरी पत्नी आपके कार्यक्रम हमेशा सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, लिखते हैं कि प्लीज़ गाना बजा दिया जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की। ये जो मैसेज हमें मिला है, विजय, रेणुका, ऋषिकेश और जयश्री शेगोकार का, और ये मैसेज हम तक पहुंचा कहाँ से है, पलसी ज़िला बुलडाणा से पहुँचा है ये मैसेज, तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम, आम्रपाली, अनामिका, प्रणेता और आविष्कार जुड़े हैं हमारे साथ। और ये मैसेज आया है हितेंद्र दास असम से जुड़े हैं, और लिखते हैं कि कोई भी जो गाना है सुना दिया जाए, बस इनका नाम पढ़ दिया जाए। चलिए हितेंद्र दास साहब, आपका जो मैसेज हमने बिल्कुल शामिल कर लिया है अपने इस कार्यक्रम में। फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून जुड़े हैं हमारे साथ मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मिहिर नगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश और लाडला टुक टुक, ये नाम इन्होंने भेजे हैं और ये जुड़े हैं हमारे साथ और गाने की फरमाइश भी पहुंचाई और साथ में प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय जुड़े हैं हमारे साथ, साथ में ममता और बेबी किट्टू भी गाना सुन रही हैं, और ये आपने गाने की फरमाइश पहुँचा दी है दोस्त, अपना प्यारा सा नाम नहीं लिखा है, मैं आपका नाम कैसे शामिल करूँ अपने कार्यक्रम में। मैडम जी आदाब, हमारे देश के सभी सोल्जर्स को इन्होंने सलाम भेजा है, हमें गर्व है अपने देश के सभी उन सोल्जर्स पर, आर्मी पर, जो इस सर्दी गर्मी आधी तूफान तेज़ धूप में अपना जो काम है उसके लिए खड़े रहते हैं हमेशा और अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पर हमारी जो है रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, दिल से सैल्यूट। ये हमको भेजा है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान, अनु खान, उस्मान करीम अंसारी ने। और अगला ये जो मैसेज है ये प्रमिला
कर्नाटका से जुड़ी हमारे साथ, उन्होंने पहुंचाया हम तक। ये मैसेज आया है पवन कसेरा जी का, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। रिंकू जुड़े हमारे साथ गांव खड़कुना बुलंद शहर उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं गाना इन्हें सुना दिया जाए। जीत पाल ये शिवाजी नगर से जुड़े हैं, और राजेश सेन और सुरेखा सेन भी गाना सुन रहे हैं। ये हैं पिपरिया का से कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, और ये जुड़े हैं हमारे साथ। और इन्होंने कोई गाने की फरमाइश नहीं पहुँचाई है, केवल अपना नाम लिखकर भेजा है। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया, आयान बाबू, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और अपने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। एक गाने की फरमाइश हमें एक हमारे लिसनर ने पहुंचाई, आइए उनका गाना प्ले करते हैं। और तब तक मैं उनका वो नाम ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं कि शायद उनका नाम जो है ना थोड़ा सा पीछे चला गया है। आइए आप गाने को इंजॉय कीजिए और मैं उनका नाम जल्दी से ढूंढ कर अनाउंस करती हूँ।

0: मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ आपके साथ दीपांशी। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, जल्दी से आपके मैसेजेस जो हैं पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत अधिक नहीं है। अगला ये जो मैसेज हम तक पहुँचाया है, ये मैसेज राजेश सेन और सुरेखा सेन जी का, और ये इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। शिवम कुमार पटना बिहार से जुड़े हैं और इन्होंने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट पहुंचाई है हम तक। और आपने जो मैसेज लिखा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऑन एयर आपका मैसेज इस तरह से, जिस तरह से आपने लिखकर भेजा है ना, सॉरी शिवम जी, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन आपका नाम ज़रूर शामिल कर दिया है मैंने इस प्रोग्राम में। विजय कुमार कामत शालीमार बाग से जुड़े हैं और गानों को इंजॉय कर रहे हैं। सोलापुर महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बंछोड़े सोनाली श्रवण जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और अगला मैसेज जो हम तक पहुँचा है, ये आया है हमें मुताला महाराष्ट्र से विजय रत्नामाला और गौरी सुलरकर का। और ये अगला जो मैसेज है, ये उन्होंने बहुत एक लंबा सा मैसेज भेजा है चंडीगढ़ मोहाली चंडीगढ़ से ये मैसेज हम तक TD मल्होत्रा साहब ने भेजा है। एक मैसेज, ये मैसेज अगला आया है सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, हुकम चंद, पिंटू सेन, हरी निवास खड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक सचिन कटारिया जी का। और अगला ये मैसेज बागेश्वर निषाद गोरखपुर UP से जुड़े हमारे साथ, ये जो मैसेज पहुंचा है हमें, ये आया है UP रामपुर ज़िला, ये मनमोहन सिंह जी का मैसेज है। और ये जो मैसेज है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ी हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज विक्रम सचिन सतीश योगेश जी का मिला है हमें हनुमानगढ़ राजस्थान से, और एक गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हमारे साथ। शुभ दोपहर दीपांशी जी। अमरदीप कुमार कोपमपट्टी तमिलनाडु से पहुँच चाहे ये मैसेज हम तक, और इन्होंने भी ये गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और ये अगला मैसेज, आपका मैसेज मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है वीरू बख्शी जी, लेकिन आपका मैसेज मुझे क्लियर नहीं आया है। मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला ये जो मैसेज हमें मिला है, ये अनुजा शर्मा मेरठ से जुड़ी हैं और लिखती हैं कि मेरा मैसेज आप शामिल नहीं करते हैं। लीजिए अनुजा जी, नाराज़ नहीं हुई है, आपका मैसेज हमने शामिल कर लिया है। कविता देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हमारे साथ, और अगला मैसेज जो मिला है हमें, इनका मैसेज हमने शामिल कर लिया है। हनु एंड आनंद मिश्रा जी बलरामपुर से जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। सुनील सामग सिडको संभाजीनगर महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लिखते कोई भी जो गाना है प्ले कर दिया जाए इनके लिए। और अगला ये मैसेज, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, बस कोशिश ये है कि आप सभी के मैसेजेस जो इतने प्यार भरे संदेश हम तक पहुँचे हैं ना, वो सभी मैसेजेस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। कंचन सोनिया जुड़ी हैं हमारे, सोनिया विहार से कंचन जुड़ी हैं हमारे साथ एक गाने की फरमाइश लेकर, और इन जनाब का नाम राहत और गज़ल ये बिजनौर से जुड़े हैं हमारे साथ, मिल गया आपका नाम अनिल ठाकुर, रीना ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। रामधारी अवाना जी जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला जो मैसेज आया है भिवाड़ी राजस्थान से ललिता जी का आया है, और एक और मैसेज है एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद, आकिल और बेबी अरीबा हबीबा, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, और एम ताहिर बड़ापुर बिजनौर यूपी से। और अब जो आखिरी गाना अभी मैं प्ले करने वाली हूँ एक खास शख्स के लिए है, उनका मैसेज भी हम तक पहुंचा है। ये जो गाना है ये ऋतु के लिए है, अब कुछ दिन के बाद अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं, तो तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं ऋतु को, और आई एम श्योर जहाँ भी जाएंगी, ऐसा मैसेज में लिखा है कि जहाँ भी आप जाओगे, जो भी आप काम करोगे, आपको बहुत ढेर सारी सक्सेस मिले और ढेर सारी शुभकामनाओं और ढेर सारे प्यार के साथ। उनकी एक दोस्त ने उन तक ये मैसेज पहुंचाया है और लिखा है कि नाम वो अपने आप गैस कर लें, और आई एम श्योर अगर ऋतु इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, प्रोग्राम को सुन रही हैं, तो ये जो नाम है वो गैस कर लेंगी। तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ ऋतु, आपके लिए ये गाना।

एक ही मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखते हैं कि गीत ना सही नाम ही शामिल कर लीजिए। ये बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का हम तक पहुंचा है। और ये एक मैसेज ममता जी का पहुंचा है और उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और आपके इन सभी प्यार मैसेजेस, प्यार भरे मैसेजेस के साथ अब आपसे इजाज़त देने का वक्त है। जाना इसलिए है क्योंकि एक बार आपसे फिर से मिलने के लिए आना है। मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए, आपको छोड़कर, इन गुनगुनाती गलियों को छोड़कर और कहाँ जाएंगे। लेकिन आप रखेंगे अपना बहुत अच्छे से ध्यान।

और मैं फिर आपको यहीं पर मिलूंगी। राजेश आ चुके हैं लेकर कार्यक्रम आशियाना, रहेंगे आपके साथ, और आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के प्रोग्राम को, इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके असाधारण शौर्य और बलिदान हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौटी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आज सुबह अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन के 4 सैन्य विमान, 7 नौसैनिक पोत और 3 सरकारी पोतों के गश्त लगाने का दावा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 बच्चों सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हैं। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आप एफएम रेनबो सुन रहे हैं दिल से दिल तक। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है छोटे उस्ताद। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरुआत में ही हम आज के इस खास दिन को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि आज है कारगिल विजय दिवस, हम मना रहे हैं। और ये दिन बहुत ही खास है, भारत के उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने सन 1999 में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर देश की रक्षा करते हुए विजय हासिल की। विपरीत परिस्थितियों, बर्फीली चोटियों और दुश्मन की गोलियों के बीच हमारे जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और तिरंगे की आन बान और शान को सबसे ऊपर रखा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाओं की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, समर्पण और बलिदान से होती है। तो कारगिल के वीरों को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, उन वीरों ने हमें सिखाया कि देश का भविष्य केवल सीमाओं पर नहीं बनता, वो बनता है हर उस जगह जहां कोई अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। आज हमारे बच्चे भी एक ऐसे ही भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है। तो सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 10 या 15 साल बाद दुनिया कैसी होगी? हो सकता है कुछ ऐसे काम होंगे जो आज मौजूद नहीं है, और कुछ ऐसे काम होंगे जिन्हें मशीनें करने लगेंगी। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, और वो है इंसान की सीखने, सोचने और कुछ नया करते रहने की क्षमता। इसलिए भविष्य के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ खास स्किल सीखना भी है बहुत जरूरी। जैसे दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपनी जिज्ञासा और सोचने की क्षमता से पूरी दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराया। यही सीखने की ताकत उन्हें खास बनाती है, और यही वो रास्ता है जिसके जरिए हमारी जो अभी जो नन्हे मुन्ने जो छोटे उस्ताद हैं ना, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद और इन छोटे उस्तादों की हम बात कर रहे हैं आज। और बात जब हम छोटे उस्तादों की करते हैं तो उनके माता पिता से भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा लेकर आता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा केवल परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर ही सफल हो। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी अलग सोच और रुचि के दम पर पहचान बनाई। कल्पना चावला बचपन से ही आकाश और अंतरिक्ष के सपने देखती थी। उनके सपनों को परिवार और शिक्षकों का प्रोत्साहन मिला और वही बच्ची आगे चलकर अंतरिक्ष तक पहुंची। इसलिए बच्चों के सपनों को सुनना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना बहुत जरूरी है।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

फिल्म रॉकस्टार से ये गीत आपने सुना मोहित चौहान और साथियों की आवाज में, और कमाल का गीत था। कमाल की वो फिल्म थी, कहीं ना कहीं वो फिल्म भी जो हमारी जिज्ञासा होती है, हमारा जो टैलेंट है उसको लेकर हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कितनी चुनौतियां, कितनी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को पार करके जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिंदगी जैसे कमाल की लगने लगती है। तो ये तो बात रही जिंदगी की उस आपाधापी की, उस संघर्ष की, जो हम सभी लोगों को जीवन में कभी ना कभी देखना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे उस्तादों की, और बचपन से ही कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन जाए तो फिर धीरे धीरे चीज़ें सरल होने लगती हैं। छोटे उस्तादों के लिए पहली और सबसे बड़ी स्किल है जिज्ञासा और सीखने की आदत। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन बचपन से ही सवाल पूछते थे और प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी कोशिश जारी रखी और कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। इसलिए अगर कोई प्रयोग पहली बार में सफल ना हो तो निराश नहीं होना चाहिए। गलती भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और जब हम धीरे धीरे गलतियां कम कर देते हैं ना, तो फिर हम जो चाहते हैं बनना, जो पाना चाहते हैं, उसकी तरफ जल्दी बढ़ने लगते हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, आशा जिंदगी में एक सकारात्मकता लेकर आती है। और ये देखना, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिन हो, लेकिन जब हम ये हौसला रखते हैं, ये आशा अपने मन में रखते हैं कि हाँ ठीक है, हम धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुँचते जाते हैं। तो ये आशा होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
4: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी

आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: किया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम है छोटे उस्ताद। मैं हूँ आपके साथ राजेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दोस्तों, हम आज के इस छोटे उस्ताद में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने छोटे उस्तादों को भविष्य के लिए तैयार करें। तो कुछ ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होती है हमें ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देती हैं, और अगर वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जिज्ञासा और सीखने की आदत के बारे में हमने बात की, और एक और ऐसी ही खास स्किल है रचनात्मक सोच, यानी कि क्रिएटिविटी। माता पिता बच्चों को केवल सही उत्तर याद करने के लिए नहीं, बल्कि नए सवाल सोचने के लिए भी प्रेरित करें। आज की दुनिया में ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम अपने आसपास देखें, वो लोग जो समस्याओं का समाधान खोजते हैं। सत्य नरेला ने भी सीखने वाली सोच और नई तकनीक को अपनाने की संस्कृति को महत्व दिया। बच्चों में भी यही आदत विकसित करनी होगी कि वो हर चीज को नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। सवाल मन में आते हैं तो सवाल पूछें और सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। बच्चों को अगर अपने स्तर पर जवाब नहीं मिल पा रहा है तो पेरेंट्स भी उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करें। उस बच्चे की मानसिकता को समझें और जानें कि हमारे छोटे उस्तादों को किस तरह से उसका उत्तर मिलेगा। और आजकल तो उत्तर ढूंढने के तरीके भी बहुत सारे हो गए हैं। जब हम कोशिश करते हैं तो हर चीज़ का उत्तर हमें आसानी से मिलने लगा है।

दोस्तों कहते हैं कि जितने भी हम अपने आसपास देखें बदलाव होते हैं ना, जो हर तरह के बदलाव, उनको जितनी जल्दी हम समझ लें, जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में उतार लें, उतना ही हमारा आने वाला कल जो है वो सुलझा हुआ हो जाता है। अब देखिए

बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं। आज की दुनिया डिजिटल है, इसलिए हमें तकनीक का सही इस्तेमाल जरूर सीखना होगा, क्योंकि हम आज नहीं सीखेंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है सीख लेंगे, लेकिन आने वाले कल में ना फिर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, और फिर हमें लगेगा कि तभी सीख लिया होता तो अच्छा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी चीज़ें भविष्य में हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी, और अब बन भी चुकी हैं, बन भी रही हैं। लेकिन तकनीक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। भारत के ही कई स्कूली बच्चे आज छोटे छोटे ऐप बना रहे हैं, रोबोट तैयार कर रहे हैं और विज्ञान के नए प्रयोग कर रहे हैं। हमें भी मोबाइल और इंटरनेट को सीखने का साथी बनाना चाहिए, न कि सिर्फ समय बिताने का जरिया। और जब हम तकनीक के साथ कदम ताल मिलाकर चलते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम जो आज कठिन लगते हैं हमें कि कैसे जाए, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर बैठ के आराम से कुछ क्लिक्स में ही वो काम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारा हेजिटेशन होता है कुछ नया सीखने से पहले, जो हमारे अंदर होता है ना कि ज़रूरत भी है इसकी कि नहीं है, क्या करेंगे सीख के, ये चीज़ों को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। इनको जब हम साइड में कर देंगे और अपने अंदर हर नई चीज़ को सीखने की एक आदत विकसित कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

जी हाँ, ये यूं ही गाते चले जाएं और आप लगातार एफएम रेनबो पर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम सुनते चले जाएं। तो अब समय है कि आपको बता दे कि अगले कुछ घंटों में आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे कुछ ही देर बाद 3 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, और इसमें आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। इसमें एक्सपर्ट हैं आज के हमारे प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे इस प्रोग्राम में। और 4 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों के सही जवाब देकर आप बन पाएंगे रेनबो जीनियस। तो कुछ सवाल तो बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए, बस इंतज़ार है 4 बजने का, और उस प्रोग्राम में एक बार फिर मैं और आप होंगे एक दूसरे के साथ। और 5 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, जिसमें शहर की तमाम हलचलों, तमाम गतिविधियों और क्या खास है, क्या खास चल रहा है और क्या आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है आपके लिए खास, वो सब आपको बताएंगे खुर्शीद आलम। और उसके बाद 6 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगे हमारे साथी प्रणव सक्सेना। तो अगले कुछ घंटों में प्रोग्राम जो आप सुनने वाले हैं वो तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अपने ये जो छोटे उस्तादों की हम बात कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें जब हम नहीं सिखाते हैं तो बच्चे उस वक्त ऐसा लगता है कि उनको वो हमें ऐसा जता रहे हैं कि उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बच्चे भी जो है उस बात को बाद में गौर करते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए। बस ज़रूरत है हमें बच्चे को समझने की, और इन छोटे उस्तादों को अगर नाराज़ हैं तो थोड़ा सा मनाने की भी ज़रूरत होती है। और प्यार से जब हम मनाते हैं ना तो ये बच्चे जो है नाराज़ लगते हैं जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद। मैं हूँ आपके साथ राजेश। और दोस्तों, घड़ी की सुई की तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो घड़ी की सुई ये कह रही है कि 2:53 लगभग हो चुके हैं और ये समय है कि आपसे कुछ और बातें करें और एक और गीत आप तक पहुंचाए। और बात हम आज छोटे उस्ताद में कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इन छोटे उस्तादों को फ्यूचर रेडी करें, कैसे भविष्य के लिए तैयार करें, क्या वो चीज़ें हैं जिन पर हमें खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पर हमने बात की लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं जिन पर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। और वो बात है कि बच्चों को जो संवाद कौशल है और भावनात्मक समझ है वो भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकें, दूसरों को समझ सकें और असफलता से बिल्कुल भी घबराए नहीं। खेल की दुनिया में भी हम देखते हैं कि बड़े खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अपने धैर्य से, अनुशासन से और सकारात्मक सोच से सफल होते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को तुलना के दबाव से दूर रहकर आत्मविश्वास उनका लगातार बढ़ाएं। तो छोटे उस्तादों, याद रखिए, भविष्य उन बच्चों का होगा जो हर दिन कुछ नया सीखेंगे, सवाल पूछेंगे और अपनी कल्पना को उड़ान देंगे। और माता पिता, आपका भरोसा और

प्रोत्साहन बच्चों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। नंबर अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है अच्छा इंसान बनना, नई चीजें सीखना और चुनौतियों का सामना करना। तो इसी बात के साथ आप राजेश को दीजिए अनुमति, चलते चलते ये गीत आपके लिए। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम इस प्रोग्राम में रोज रोज नए नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। भारतीय आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जिक्र किया जाता है। जी हाँ, दिनचर्या अर्थात दैनिक जीवन की स्वस्थ आदतें हैं, खान पान है, और ऋतुचर्या यानी कि मौसम के अनुसार अपने जीवन शैली और खान पान में आवश्यक परिवर्तन। साथियों, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को संतुलित रखे तो वो न केवल कई बीमारियों से बच सकता है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, मानते हैं, है ना। तो आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए और आपके द्वारा सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी को। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर हैं और आपको आयुर्वेद के विषय में, खान पान के विषय में, दिनचर्या के विषय में, ऋतुचर्या के विषय में पिछले 30 वर्षों का एक लंबा और गहरा अनुभव है। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
4: नमस्कार, नमस्कार।
3: तो साथियों, जो आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। दिनचर्या, ऋतुचर्या, दैनिक और मौसमी जीवन शैली, इस विषय पर आप अभी इसी वक्त हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट, हमारे वैद्य जी इंतजार कर रहे हैं। और तब तक आपकी ओर से कुछ सवाल और मेरे मन में भी कुछ उत्सुकता है, वो भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं और आपके साथ कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं। तो डॉक्टर, ये जो ऋतुचर्या और दिनचर्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका कितना महत्व है आयुर्वेद में?
4: जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिनचर्या और ऋतुचर्या हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए, आपकी रीजनल और सीजनल वेरिएशन के हिसाब से खान पान और रहन सहन इम्पॉर्टेंट होता है हमारा
3: जी।
4: अब हम पहाड़ में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, तो हम समुद्र की जीवन जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जब समुद्र के किनारे रहते हैं तो समुद्र वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, पहाड़ पर रहते हैं तो पहाड़ वाली जिंदगी जीनी पड़ती है।
3: अलग अलग टाइप की,
4: अलग अलग है। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ का भी होता है। तो इसलिए दिनचर्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम रात को कब सोते हैं, कब उठते हैं और क्या क्या करते हैं। आजकल के जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त रूप से आ चुकी है, तो हमारा ना सोने का टाइम है, ना हमारा जागने का टाइम है, ना हमारा खाने का टाइम है, और ये सब चीज़ें हमें बहुत जरूरी

0: होती है, क्योंकि इसके बिना आप जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे बच नहीं सकते।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि भागम भाग की जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी ज्यादा हो गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, और उसी में हमको मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हमें वायर्ड भी नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो इसलिए
1: वो एक प्रकार से हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में और लाइफस्टाइल में ये शामिल हो गया है।
0: बिल्कुल।

0: नमस्कारम।
1: सबसे पहले तो हमारे भारत के विद्वान चिकित्सक प्रजापति जी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद सर।
1: और हमारे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या का, तो मेरा ये पूछना है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए, कौन कौन सा लेना चाहिए, वैसे विस्तार से बताएं। धन्यवाद
0: जी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये नहीं बताया।
1: जी, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी
2: धन्यवाद गौतम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और चूंकि हम सभी जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में अग्नि हमारी कमजोर होती है, तो खान पान में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है तो हम लोग ठंडा पानी, ठंडी बर्फ, कुल्फी और ये सब चीजें खाते रहते हैं, जबकि खाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि खाना जो भी खाना है हमको गर्म गर्म खाना है, फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। और ये सब चीजें नहीं होने से आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस समय ध्यान रखें, लू लपट जगह लगने वाली सिचुएशन है तो उससे अपने आप को प्रिवेंटिव एक्शन ले, क्योंकि हमने देखा है बचपन में कि हमारे दादाजी भी लू लपट में काम करते थे, जाते थे, लेकिन वो अपने आप को लपेटते थे, कपड़ों से ढक के रखते थे, पानी की बोतल रखते थे, पानी की बोतल उस समय होती थी नहीं थी, तो लोग अपना सत्तू रखते थे और सत्तू घोल घोल के पीते रहते थे वो पानी में। तो ये जो कुछ हमारी रेजिम डाइट बताई गई है उस समय के हिसाब से वो बहुत अच्छी है। एक पुदीना, पुदीना का अर्क, पुदीना सत्व, पुदीना हरा, पुदीन हरे के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में आम का पन्ना बहुत पॉपुलर है और अब हम लोगों को नहीं मिलता है, अब हम लोगों को रेडीमेड कंडीशन में पीना पड़ता है। तो वो सब चीजें जो हैं हमारे लिए उस समय कही गई थी और उनको आज हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये देखेंगे आपकी जितनी भी ग्रीष्म ऋतु की चीजें हैं तो उसमें हमें खाने पर बहुत ध्यान रखना है। सुबह उठ के जनरली क्या करते हैं लोग, कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठ के अपने को फ्रेश होना है, आराम से बैठना है, थोड़ा पानी पीना है और पानी गुनगुना पिए सुबह, जिससे पेट साफ हो जाए। साफ होने के बाद थोड़ा टहलें, गर्मी के दिन है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, और हमको वो टहलने से ही बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई लोगों को बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो इसलिए उनको पानी पीना जरूरी है, और पानी पी के टहलते हैं तो वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। साथ में खाने का जब भी रखें आप तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, जितनी भूख है डकार मार के पूरा पानी पी लेना खाना, ये थोड़ा कंट्राइंडिकेशन होता है इसके लिए, तो थोड़ा सा कम खाना खाएं और थोड़ा पानी का जो पीने का है शेड्यूल, जैसे खाना खा के तुरंत हम लोग पानी पीते हैं डेढ़ डेढ़ दो दो गिलास, वो नहीं होना चाहिए। हमको थोड़ा पानी पीना है, अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद फिर पानी पीना है, तो वो हमको मेंटेन करके रखना है। तो हमें नहीं लगता है कि गर्मी में कोई प्रॉब्लम होती है, गर्मी ऋतु हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं गर्मी की छुट्टियों में जाके, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु सबसे अच्छी ऋतु वैसे मानी जाती है रहन सहन के लिए, लेकिन खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
0: प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ पर दो तीन बातें बताई और वो भी गर्मी ऋतु को लेकर के, खान पान को लेकर के, तो मैं गौर कर रहा था कि आपने कहा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और सत्तू का, जो भी पेय पदार्थ है उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया तो आपने ये भी बताया कि आज तकनीकी का युग है और इसमें कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आजकल तो हर गांव, घर, शहर, जगह हर किसी के पास रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि लोग कहीं गर्मी से, मतलब तपती धूप से वापस आ करके तुरंत ही रेफ्रिजरेटर खोल करके ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं, कहां
2: नहीं,
0: तक?
2: ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने भी बचपन में किया है ऐसा,
0: उससे क्या नुकसान होता है?
2: लेकिन तुरंत क्या होता है, जो हम खाए पिए हैं वो और अपच में चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के ऋतु में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। घड़े का पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घड़े का पानी का एक टेम्परेचर होता है, वो उससे ज्यादा ठंडा नहीं होगा। हम लोग तो गांव में कुएं के पानी में पीते थे, कुएं के पानी भी ठंडे होते थे, तो वहां प्रॉब्लम, नेचुरल वाटर जहां आप पियेंगे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा है, फ्रिज से निकाल के तुरंत पानी या कोई भी चीज तुरंत नहीं खानी चाहिए, थोड़ा देर उसको रखना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर तक थोड़ा ले लिया के, जो उसका माइनस डिग्री का टेम्परेचर, उसको थोड़ा ऊपर लाके फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: जी प्रोफेसर साहब, अभी ये तो भी ठंडे चीज की बात है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हम इंडियंस, हम भारतीयों के दिनचर्या में और लगभग सबके, चाय का भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्म चाय, गर्मी में भी गर्म चाय जरूर पीते हैं, ये लाभदायक है, नुकसानदायक है?
2: नहीं, अब ये चीजें

0: लाभदायक तो नहीं होती है, लेकिन हम लोगों की आदत सी पड़ चुकी है, और जब तक चाय न मिले तब तक आंख नहीं खुलती है, तो
1: एनर्जी
0: ऐसी कंडीशन भी हो चुकी है।
1: जी
0: क्यों, आदतें जो पड़ जाती हैं वो आदतें साध्य कंडीशन में चली जाती हैं, तो उसका ये है कि लिमिटेड यूज होना चाहिए।
1: जी
0: हम भी पहले ऐसे ही करते थे, 12-12, 13-13 चाय पी जाते थे, अब नहीं पीते हैं क्योंकि अब पता चल गया धीरे धीरे तो छूट गई।
1: गर्मियों के मौसम में कुछ कम कर देने चाहिए,
0: कम करके रखनी चाहिए, क्वांटिटी घटा लेनी चाहिए, और बार बार चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय मंदाग्नि का एक कारण होती है।
1: जी
0: डाइजेशन को घटा देती है चाय, तो उसलिए चाय की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। आदत छूट सकती हो तो छोड़ दें, उसकी जगह पे अपने जो सिंपल पेय पदार्थ हैं वो पिए, अपना गर्म पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दें, थोड़ा जीरा डाल दें, थोड़ा अजवाइन डाल दें, थोड़ा दालचीनी डाल दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी जी
0: ग्रीन टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको निकालने के काम होती है, तो उबाल के अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के चाय पीने की जगह अगर हम सिंपल ग्रीन टी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो गर्म पानी का प्रयोग करें।
1: जी
0: और चाय की आदत छोड़ें अब हम लोग, पहले तो क्या था, ब्रिटिश ने हमारे लगा दिया है उसको और हम लोग की आदतें खराब कर दी हैं सारी।
1: जी प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार जी, वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने एक और बात बताई, आम के पन्ने की बात की
0: जी।
1: तो यहाँ पर वैसे जो शहर है वहां पर चूल्हे की कमी तो होती है, तो मतलब चूल्हे यानी कि लकड़ी की चूल्हे की बात कर रहा हूं मैं, तो आम का पन्ना किस प्रकार बनाना चाहिए, लकड़ी के चूल्हे में बनाया हुआ ठीक होता है या फिर बॉयल किया हुआ?
0: नहीं, पहले ऐसा था कि पहले ये हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग कंडे में लकड़ी के आग पे उसको भून लिया करते थे। अब तो वो सुविधा नहीं है, सभी के घर में माइक्रोवेव है, लोग भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में उबाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट इतना है कि उसका जो खट्टापन है, उसका जो गुरु आहार है, उसको हमें लघु में कन्वर्ट करना है, तो जब हम उबालते हैं और उसको करते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो किसी भी तरीके से उबाल के या भून के, ये कोई जरूरी नहीं कि लकड़ी पर, अब वो नहीं हो सकता है, जो कंसेप्ट बदल चुके हैं उसको नहीं हम ला सकते हैं,
1: मतलब जैसे सुविधा हो वैसे कर लेना।
0: हाँ, वैसा करना है। लेकिन आज भी देखिए, आप भी झारखंड से हैं, उधर से हम लोगों के यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता है, राजस्थान में
1: जी
0: अपने तरफ बनता है बैगन का भरता और लिट्टी बाटी चोखा बनता है, तो वो लिट्टी बाटी चोखा माइक्रोवेव में जो बनेगा उसका वो टेस्ट नहीं आता है, जो गोबर की कंडों पे या लकड़ी के कोयलों पे जो बनता है उसका जो टेस्ट आता है वो अलग होता है,
1: यानी कि नेचुरल नहीं,
0: नेचुरल तो नेचुरल ही है।
1: जी जी, तो हमारे पास वैसे अब और भी क्वेश्चंस मन में आते हैं, आते रहेंगे, उठते रहेंगे, और हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल पूछूं, उससे पहले अपने जो कुछ श्रोता हैं वो लगातार हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज रहे हैं। हमारे पास ये जो मैसेज आया हुआ ये है, ये कहते हैं कि आई एम सागर, यानी ये सागर हैं और इनकी उम्र है 26 साल की, ये हैं विजयपुरा कर्नाटका से, कहते हैं कि आई हैव टू क्वेश्चंस इन टूडेज बिजी वर्ल्ड दैट व्हाट लाइफस्टाइल वी कैन अडॉप्ट आफ्टर फ्रॉम हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज।
0: थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। नो डाउट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन टूडेज लाइफ वी जनरली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा खान पान इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना खाएं उतना हम पचाएं, दिस इज द वन कॉन्सेप्ट, कि जितना हम खाएं उतना इजीली पच जाए। और उसके लिए करना क्या है, आपको खाने की क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, आपको अपनी नींद के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे आजकल 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, तो इसलिए विटामिन ए ई डी के की कमी आ गई है सभी के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। हमको रात को 10 बजे या 11 बजे जब भी है सो जाएं, 6-7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए एट ए स्टेज। और बच्चे जो थक जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, उनके में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने बचपन लाइफ में देखा है कि दिन भर जब खेलते थे, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, खेल के जब घर पहुंचते तो सीधे सो ही जाते थे, खाने के भी नहीं पूछते थे।
1: तो यानी कि बाहर घूमना और खेलना जरूरी है,
0: फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और उसके लिए सबसे जरूरी है कि सुबह जल्दी उठना
1: जी।
0: तो जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप शाम को समय से सोएंगे, तो 10 से 11 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो सुबह 6 से 7 के बीच में अपने आप नींद खुल जाती है।
1: जी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है।
0: 7 घंटे तो नींद पूरी हो गई तो बॉडी क्या होती है सोते

0: हमें डिटॉक्स करती है। आपको ध्यान नहीं होगा, हमारे बॉडी के जो हार्मोन, हमको लगता है कि सब सो जाते हैं, तो इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, ये सब उस समय एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और वो बॉडी में जो दिन भर के जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको निकालने का, नेचुरल रूप में निकालने का काम करती है। तो हमें ये रेस्ट देना जरूरी है उन ऑर्गन्स को।
1: जी डॉक्टर साहब, ये और इनका ही ये दूसरा प्रश्न है, ये है कि आई डोंट गेट इनफ मोटिवेशन टू डू एक्सरसाइज, व्हाट कैन बी डन?
0: व्हाई? आप जितने भी प्लेयर्स हैं उनको देखिए, वो खेलते हैं, मोटिवेशन तो अपने घर से ही मिलता है जनरली। कि जब हम, अब हम इस एज में, आपकी एज में इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती बेटा, इस एज में आपको लगता है आप लोग यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, लेकिन जैसे ही हम 40 पार करते हैं और हमने अपने बॉडी को एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं रखा, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप घिरने लगती हैं। तो इसलिए हमें बॉडी के हर पार्ट को इस तरह से मोटिवेट, अपने आप को इस तरह से रखना एक्सरसाइज करके, कि हमारा हर अंग, एक एक अंग हमारा थोड़ा एक्टिवेट मोड में रहे। और जिस अंग का कोई काम नहीं होता है, वो अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। घर में खड़े होकर जॉगिंग कर लीजिए, पश्चिमोत्तासन कर लीजिए, और आजकल कुछ नहीं कर सकते तो एक सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप सूर्य नमस्कार की जो 12 मुद्राएं हैं, उसमें सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज आ जाती है। और ये बहुत ऑप्शन है कि अगर उगते हुए सूरज के सामने हमने किया, तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज का भी इम्पोर्टेंट मिलता है, हमें विटामिन डी भी मिल जाती है, तो हमको सब कुछ मिल जाता है।
1: कोशिश करें कि खुले में करें,
0: खुले में करें
1: जी,
0: थोड़ा सा इस जहाँ सूर्य की रोशनी हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वहां पे अपने को करना चाहिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आप हमसे जुड़े और हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, उनकी क्या समस्या है पूछ लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, बताएं आपका नाम, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं।
2: मैं राजेंद्र बोल रहा सर, नॉर्थ दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरी एज 75 है ये सर, जीभ में दरार सी पड़ जाती है जो मिर्च वगैरह नहीं खाई जाती है, और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों में अगर सूजन आ रही है और जीभ में दबार पड़ रही है, तो थोड़ा सा अपने को ब्लड के पैरामीटर्स टेस्ट करने पड़ेंगे। वैसे तो सिंपल है कि जनरली अगर आपको चमेली की पत्ती मिल जाए कहीं से, तो 2-3 चमेली की पत्ती चबा के देख लीजिए, अगर जीभ की दरार ठीक हो जाती तो भी डाइजेशन से रिलेटेड मैटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैरों में भी स्वेलिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिम्टम्स आते हैं हमारे इस एज में। तो इसलिए आप प्लीज़ कंसल्ट करें किसी न किसी डॉक्टर को, और दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं।
1: जी तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट कराइए, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। और इस एज में इस प्रकार की समस्या डॉक्टर साहब आ जाती है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी उम्र भी 75 साल की है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, और बस आगे बढ़ते जाना है। जो भी जो नियम है, जो दिनचर्या है, उसे पूरी करते रहना है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: इस छोटे से मनोरंजन के बाद यानी कि गाने के बाद में एक बार फिर से हम लौट कर आ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, और आपको एक लंबा अनुभव है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर के पद पर हैं और आपको 30 वर्षों का एक लंबा अनुभव है, और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपने जो श्रोता हैं उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। वैसे हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे कॉल्स हैं, लेकिन पहले यानी कि मैसेज हैं और कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपके?
2: पहले तो एंकर सर और डॉक्टर को नमस्कार।
1: जी राजेंद्र जी, आपको भी नमस्कार।
2: हाँ जी, मेरे सवाल है और एक है, जरा उससे दूर से बड़ी मेहरबानी होगी
1: जी।
2: हाँ, पहला सवाल तो मेरा ये था कि मेरे को ना जो है पित्त प्रवृत्ति है, पित्त।
1: जी जी, पित्त की। जी
2: हाँ जी, और व्हाइट मेरी स्किन और श्वसन एलर्जी भी है, तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और डॉक्टर साहब ने हम खाना चाहिए गर्म, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ? पहला सवाल मेरा ये
1: जी।
2: दूसरा कि पुदीने के फायदे विस्तार समझाए,
1: इससे
2: क्या फायदे होते हैं विस्तार से। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो है ये, जैसे अभी आपने कहा कि ये कई लोग होते हैं कि आपने कहा 6-7 घंटे सोना चाहिए, पर कई लोग ऐसे होते हैं मतलब 3 घंटे सोते हैं तभी उनकी पूरी वादे से मोदी साहब ही है, 3 घंटे सोते हैं पूरी पूरी हिंदुस्तानी सीएम साहब जो है, तो इसकी क्या वजह होती है, इसके हमें क्या करना है नींद इम्प्रूव करने के लिए?
1: जी राजेंद्र जी, एक एक करके सवालों का जवाब देंगे जी।
3: थैंक यू राजन जी, बहुत बढ़िया का क्वेश्चन किया। आपकी अगर पित्र प्रकृति है तो आपको ध्यान रखना है, हमने ये खाना गरम गरम खाने की बात की है, तो खाना ठंडा करके नहीं खाने के लिए पित्र प्रकृति वालों को लिए भी बोला गया है। आपको सुकोष्ण वाटर लेना है, सुकोष्ण जल लेना है पीने के लिए। सुकोष्ण का मतलब होता है जिस ऋतु में है जैसा है उसके हिसाब से लेना है। आप अगर ग्रीष्म ऋतु में हैं तो ये नहीं है कि आपको एकदम ठंडा पानी पीना है, तो उसको एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर पीजिए। और पित्त प्रकृति वालों में पित्त की दुष्टि अगर होती है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज खाने पीने में तो खान पान बहुत अच्छे से पाचन हो जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी गुनगुना पानी पियेंगे तो आपको पाचन बढ़ जाएगा, आपका खान पान की जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उससे आप परेशान न हों। और यह है कि फ्रेश बना हुआ खाना खाना है, मेरा कहने का ऑब्जेक्ट ये था गरम गरम खाने का मतलब कि आपको फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। आजकल क्या होता है कि लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं फिर उसका जब जरूरत होती है तो निकाल के खा लेते हैं। ये फ्रोजन फूड का कंसेप्ट चल चुका है आजकल, आपने देखा नहीं होगा, हम तो देख रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं और सभी जगह फ्रोजन फ्रूट्स सप्लाई हो रहे हैं, वो जाते हैं यहाँ से और उसके बाद वो डीप फ्रिज में रखे रहते हैं, जैसे ऑर्डर होता है उनको निकाल के तुरंत गर्म करके खिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है जो अपने फ्रेश गबने हुए खाने की क्वालिटी है। इसलिए कोशिश करें कि जब खाना बन रहा हो बनने के आधे घंटे के अंदर ही उसको कंज्यूम करें, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, खाने के साथ ये ध्यान रखना है, हमने बार बार कहा कि पेट भर के डकार मार के नहीं खाना है, हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भूख है जितना पेट है उसका 1/2 खाना है, 1/3 खाली रखना है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो जिससे कि डाइजेशन सही होगा और ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और आपने बोला कि सन एनर्जी है, सोलर सोलर

0: से प्रॉब्लम हो रही है उनको,
1: जी
0: तो पितृ प्रधान सब आपका है चूंकि, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन ही रखना है और पित्त शामक योगों का प्रयोग करना है। आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, आपको प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि या ऐसी चीज़ें देंगे, साथ में महामंजिष्ठा जी क्वाथ देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा ये था, आपने पुदीने के बारे में पूछा था। पुदीने का आपको, पुदीने की कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है, पुदीने का ठंडी चीज़ें आपको लेनी है। पुदीना अर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पुदीना सत्व बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो इस तरह के जब कभी इंडाइजेशन की कंडीशन होती है तब वहाँ पे वो हमको दोनों तरह से फ़ायदा देता है। आपने देखा होगा कि जब हमारा हेडेक होने लगता है तो हम बाम लगाते हैं, तो बाम क्या करता है, बाम को दर्द को तो निकालता नहीं है, बाम आपके ब्रेन के सेंसेस को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके आपको नींद आ जाती है और वो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो पुदीना के भी वही काम है। इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो उतने होते हैं उसमें, वो तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को जाके, जिससे कि हमको वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आपने नींद की बात की, मोदी जी का एग्जाम्पल दिया आपने, मोदी जी जैसे कितने लोग हैं इस दुनिया में, बहुत कम लोग हैं। ऐसे हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी होते थे उनकी भी यही कंडीशन है, वो 10 बजे सोते हैं और 1 बजे उठ जाते हैं, दिनचर्या उनकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये आदत डालने की बात है। मोदी जी को आप आज देख रहे हैं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, और उनकी वो आदतें शुरू से हैं, रात को 10 बजे सो जाना, अभी तो सो नहीं पाते हैं वो, अभी तो उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वो। 4 बजे उठ के सारे अपनी एक्सरसाइज करना, योग का इतना प्रचार प्रसार, हमारे ब्रांड एम्बेसडर योग के लिए कौन है, मोदी जी है
1: जी।
0: मोदी जी खुद करते हैं उन चीज़ों को, और खुद करके उन्होंने प्रूव किया है कि ये ऐसा हो सकता है। तो खान पान, उनका खाना आपने देखा है कितना है, उनके खाने में 2 कौर होते हैं, पानी पीते हैं और वो सब ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, अडॉप्टेबिलिटी होती है, साध्यता होती है। ये हमारे साधु संन्यासी, हमारे ऋषि मुनि ये सब किया करते थे, और उनकी इसलिए लाइफ 100-100 साल तक रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इन चीज़ों को हम अगर प्रैक्टिस में डालते हैं और अपने लिए साध्य कर लेते हैं तो इन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आजकल 6 घंटे की नींद कंपलसरी है, क्योंकि हम इतने सारे फालतू के काम करते हैं, फालतू का खाते हैं, खान पान बदल गया है पूरा, इतने प्रिजर्वेटिव वाले मटेरियल खा रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए तो हमको बॉडी को रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, हम 3 घंटे और 4 घंटे सो के भी काम करते हैं, हम लोग को करना ही पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। सो आप इन बातों का ध्यान रखें प्लीज। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, थैंक यू वेरी मच।
1: हम एक व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, और ये व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से हैं। इनका कहना है कि क्या विंटर में दही खाना चाहिए, और दूध से पेट में गैस हो जाती है, क्या करें।
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन सरोज जी। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों से कभी कभी सुना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाया जाता है, लेकिन हम उल्टी परंपरा में चलते हैं। शरद ऋतु में दही का इंडिकेशन है, शरद ऋतु में दही खाना चाहिए। क्यों, हमें जो बैक्टीरिया वायरस माइक्रोबैक्टीरियम चाहिए होते हैं वो उस समय दही में सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ कहने के विधान किया गया है।
1: हम उल्टा चल रहे हैं
0: और हम लोग उल्टा चलते हैं, सोचते हैं कि गर्मी में दही खा लेते हैं तो आराम है, दही में गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ये हमारे क्लासिकल लिटरेचर यही बोलता है, और खाना भी है। तो अब आप देखिए कि हम लोग जो है दही लस्सी पीने वाले काम, लस्सी पीने का काम कब करते हैं, सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में,
1: वो भी दिन में, दोपहर
0: और
1: वो भी
0: दिन में दोपहर कहीं भी जाते हैं, गर्मी लगती है, चलो लस्सी पी लेते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये क्या है कि उसमें जो बेसिलस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए वो सब चीजें हमारे लिए, लेकिन क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम दही कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिन लोगों को संधिवात है, आम बात है, आम से जुड़ी बीमारियां हैं, उनको दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही क्या, उनको किसी भी खट्टी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम है, अरे टमाटर है, नींबू है, दही है। अब बहुत सारे लोग, हम लोग कहते हैं कि हम लोग दही रोटी खा खा के, दही पराठे खा खा के तो बड़े हुए हैं और अपने अभी दही छूटा हुआ है इस समय। तो इसलिए प्रिकॉशन लेके हमको खाना है। अब आप चले जाइए गुजरात में, तो वहां पे बिना छाछ के तो खाना होता ही नहीं है, लेकिन वो छाछ कैसे बनती है आपको ये देखनी पड़ेगी। वहाँ एक पार्ट

0: छाछ एक पात दही और उसमें चार भाग गर्म पानी मिला के उसको बनाते हैं,
1: तरीका अलग है,
0: वो अलग अलग है। तो वो चीज वो पानी नहीं पीते फिर वो लोग, फिर वो छाछ पीते हैं और वो छाछ फिर वो वहाँ डाइजेशन में हेल्प करती है, उसमें नमक काला मिर्च और ये जीरा डाल के बनाते हैं वो लोग। तो ये चीजें क्या होती हैं कि रीजनल और सीजनल वेरिएशन, बार बार हम कह रहे हैं रीजनल और सीजनल वेरिएशन।
1: जी
0: दही अगर आप पहाड़ में बैठ के खाएंगे शरद ऋतु में तो गला पकड़ लेगा, तो खाना कैसे है वो पे गरम गरम रोटी में हमको हिंगुआस्टक डाल के खाना है तो वो खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं
1: जी। और इनका एक और प्रश्न था कि दूध, जी
0: जी दूध से बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है आजकल, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डेयरी मिल्क है, आप कभी जाएं अपने घर में अगर अपनी गाय है अपनी भैंस है तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन डेयरी मिल्क जितने भी है वहाँ पे कुछ भी करिए आप, पाश्चराइजेशन करना पड़ता है, उनको प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अगर डेयरी का मिल्क है तो पीने में आप ध्यान रखिए, अगर अपने घर की गाय है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है दूध को अगेन डाइल्यूट करना है हमको, पानी थोड़ा मिला के डाइल्यूट करिए बहुत। आपने अगर भैंस का दूध लिया तो गाढ़ा होता है, देखते हैं आप, गाय का दूध होता है तो पतला होता है, तो गाय के दूध में प्रॉब्लम नहीं आती, भैंस के दूध में प्रॉब्लम आती है।
1: तो ये जो दूध है इसे कब पीना चाहिए, दिन में पीना चाहिए या रात में पीना चाहिए या कब पीना चाहिए?
0: हम लोग के यहाँ देखिए बच्चों को तो हम ये कहते हैं लगातार, क्योंकि वहाँ कैल्शियम की जरूरत होती है तो हम उनको दूध सुबह शाम दोनों टाइम पिलाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जो रहा करते थे, जो हम लोगों ने बचपन में शुरू किया है, तो सुबह दूध के साथ रोटी खाते थे और रात को खाना खाने के बाद दूध जरूर पीते थे
1: जी।
0: लेकिन वो दूध बार बार कह रहे हैं कि अपना होता था और हम उसको कोई भी ऐसी चीजें नहीं खिलाते थे जो चीजें नुकसान करने वाली हो,
1: यानी कि दूध जो है कभी भी पिया जा सकता है।
0: हाँ, पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: कब्ज होने की संभावना नहीं रहती है?
0: नहीं, दूध तो कब्ज को निकालता है, संभावना नहीं रहती है। रात को जनरली हम लोग दूध जब पीते हैं तो थोड़ा सा हल्दी और गुड़ डाल के पीते हैं
1: जी,
0: बिना वैसे दूध नहीं पीते हैं हम लोग, और पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा मिलता है, तो सबको सूट नहीं करता है, क्योंकि आजकल सबसे दिक्कत ये होगी मिल्क प्रोटीन से बहुत से लोगों की एलर्जी हो रही है
1: जी जी।
0: तो बहुत से लोगों जिनको गैस वैस बनती है उनको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है बात वो
1: जी। और अब हम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और हमारे श्रोता मित्र, आइए उनसे बात करते हैं, उनके सवाल सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत अच्छी कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही है पीछे से।
2: थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, गांव कुकमिया डिस्ट्रिक्ट करनाल है
0: जी।
2: सर हमारा अल्ट्रासाउंड में मेरा और मेरे छोटे भाई का फैटी लिवर आया था, छोटे भाई का फैटी लिवर ग्रेड 1 है और मेरा ग्रेड 2 है फैटी लिवर में। हम दिमाग की दवाइयां खाते हैं काफी सालों से, यानी मैं तो 24 साल से खा रहा हूँ और वो 17-18 साल से खा रहे जी। तो अगर आपके पास आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आ जाए तो ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम ही, और आयुष्मान कार्ड भी हमारे पास, क्या फ्री में दवाइयाँ भी मिलेंगी सर?
0: बिल्कुल भी नहीं, फैटी लीवर का इलाज ही केवल हमारे पास आयुर्वेद में है और कहीं है ही नहीं आपके पास। आपके खान पान को कंट्रोल करना ही इम्पोर्टेंट है, और परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप अगर सबका टेस्ट कराएंगे तो 99% लोगों के फैटी लीवर मिलेंगे क्योंकि हमने जो खाना शुरू किया है खान पान, वो हरियाणा के हैं आपने तो खान पान अच्छा ही होगा आपका, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की जरूरत है और रेस्ट जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी जो नहीं खानी है आपको, वो ऑलरेडी उन्होंने बताई होंगी डॉक्टर ने, और नहीं तो
2: कुछ नहीं बताया जी।
0: तो आप आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आके आप दिखा जाइए, क्योंकि यहाँ क्या है ना, केवल ऐसे सजेशन देना ठीक नहीं है, आपको देख के ही आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
2: ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, धन्यवाद।
0: ओके
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा हमसे जुड़े। और डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि ये लंघन क्या है, लंघन क्या होता है? डॉक्टर साहब
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, लगता है कि आयुर्वेद से रिलेटेड है ये सब लोग
1: जी,
0: क्योंकि ये लंघन वर्ड ही संस्कृत का है। देखिए अनिल, डॉक्टर अनिल कुमार
1: कालड़ा जी,
0: गुरुग्राम से पूछ रहे हैं
1: जी।
0: तो लंघन, आप डॉक्टर हैं, अगर आयुर्वेद के हैं तो आपको पता होगा लंघन क्या है। लंघन का मतलब केवल भूखा रखना नहीं है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, लंघन का मतलब है लघु आहार खाना है हमको,
1: कम आहार लेना
0: है, जिससे कि जो डाइजेशन है वो ठीक रहे। ज्यादा खाने से, अब व्रत वाले व्रत जिस दिन होता है हम लोगों का हिंदू धर्म में, व्रत जनरली इसलिए किया गया था कि हमारा खान पान कंट्रोल रहे उस दिन, और बहुत सारे व्रत किए जाते हैं, लेकिन आजकल तो हम व्रत वाले दिन ज़्यादा खाते हैं बजाय कम खाने के, क्योंकि उस समय अच्छी अच्छी डिशेज बनती हैं तो वो पेट भर के खा लेते हैं।
1: जी
0: तो लंघन का मतलब ये है कि अपने आप को भूखा रखना है। पहले वो आपने बुखार जैसे आता है तो मेनली उसकी पहली चिकित्सा लंघन चिकित्सा है
1: जी। और
0: मतलब कुछ नहीं खाना है, गर्म गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है जिससे जो भी चीजें अंदर हैं वो डाइजेस्ट हो जाए
1: जी। तो अब ये जो आया है मेरे पास, यानी कि हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज है, और ये है राजेश कुमार चौहान जी, कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है डॉक्टर साहब, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और इनकी बातों से तो लगता है कि ये भी मीडिया पर्सन है, और इन्होंने लिखा भी है कि जैसे कुछ लोग कभी दिन की शिफ्ट में काम करते हैं तो कभी रात की, और हमारे मीडिया के दोस्त भी, तो इनकी दिनचर्या तो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाती है, तो सोने के घंटे भी कम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिनचर्या, जो आप पत्रकार हैं, हमारे खुद के घर में पत्रकार हैं, और हम देखते हैं उनको रात को 12 बजे उनका पेपर फाइनलाइजेशन होता है, और वो 12:30 बजे खाते हैं, 2 बजे सोते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे उठते हैं। तो वो ध्यान रखना है अपने को। जो पत्रकार बंधु हैं उनका काम ज़्यादा रहता है, उसमें मीडिया से हम देखते हैं कि कई सारे कंडीशन आती हैं। कोशिश करें आप कि जितना काम है उसको ख़त्म करने के बाद जहां आपको नैप लेने का मौका मिले, 20 से 30 मिनट का सोने का नैप जो बीच में रहता है, और जब हम थक जाते हैं तो कहीं भी बैठ के सो जाते हैं, हमने ये देखा है
1: जी।
0: तो उस तरह के एक्टिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि जैसे ही आपको मिले मौका आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें। रेस्ट लेना फ्री, मेंटल फिजिकल सारा रेस्ट, तो जनरली सोने में यही होता है, तो उस समय आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर चेयर पे बैठ के चेयर योगा कर सकते हैं, आप अपने आप को काम एंड कूल कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पायरेटरी जो अपने प्राणायाम की विधियां हैं उनको कर सकते हैं, तो उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा।
1: यानी कि नींद लेना, रेस्ट करना, रिलैक्स करना
0: जरूरी,
1: बहुत जरूरी है। और ये एक और व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, और ये है अनमोल गुप्ता जी सरिता विहार से, और इनकी उम्र है 37 साल। कहते हैं कि मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, क्या ये सही है?
0: 37 साल की उम्र है, आप काम की वजह से साइकिल चलाते हैं या एक्सरसाइज की वजह से चलाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे।
1: जी जी,
0: अगर आप साइकिल रेसर हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है और अच्छी बात है। और साइकिल चलाना, आजकल के एक्सरसाइज में साइकिल बाइसिकल चलाना एक नया इनोवेटिव आया है कि बहुत सारी एक्सरसाइज उसके द्वारा हो जाती हैं, लेकिन इतना लंबा 50
1: लगातार
0: चलाना थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा उसको अगर कम हो सकता है तो कम करें, और आपकी आदत बन चुकी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं, बचपन में हम लोगों ने 15-15 किलोमीटर साइकिलें चलाई हैं। हम लोग गांव में हम लोग जाते थे तो मामा जी लोग हम लोग को बैठा के 50-50 किलोमीटर साइकिल चला के ले जाते थे, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था।
1: जी जी,
0: तो उस कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करिए, और अगर साइकिलिंग के लिए कर रहे हैं तो खान पान का ध्यान रखिए।
1: यानी कि रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं तब तो
0: ठीक है।
1: डॉक्टर साहब, एक हमारे पास एक मैसेज है, और इन्होंने लिखा है कि आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम ओमान।
0: यस,
1: क्या कहना चाहेंगे?
0: गुड, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओमान हमारे MOU पार्टनर हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और हम बहुत जल्दी वहाँ आयुष शेयर आ रही है।
1: क्या बात,
0: आपको
1: है?
0: बहुत ये अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं कि गुजरात से ही उसमें जा रहे हैं आयुष शेयर पे, तो आपको वहाँ भी सुविधाएं मिल जाएंगी।
1: चलिए, और अच्छी तरह से आप जुड़ सकेंगे जी। एक फोन कॉल सुन लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: सर, मैं दृष्टिबाधित इनकी ब्लाइंड व्यक्ति राम मिलन बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी, क्या पूछना चाहिए?
3: तो आपके साथ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे दौरा और मिर्गी किसी को होता है, उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा।
0: नहीं, उसको तो आपको हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा
3: सर। आपके नहीं, लेकिन आप कुछ सुझाव कुछ सलाह तो दे बता सकते हैं सर? क्योंकि बहुत इलाज कराया सर, उसको कुछ हिसाब किताब बना नहीं, अभी भी उसको हो जाता है। मेरे एक भांजा है।
0: क्या उम्र, क्या उम्र है?
3: तो सर उसको वही उम्र सर होगी, मान लीजिए वही 25 के आसपास।
0: हाँ, तो आप इसमें जितने भी ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो दवाइयां ही चलती हैं मैक्सिमम टाइम, तो इसमें होगा क्या है, उनको हमें मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको योगा प्रैक्टिसेस करानी पड़ेंगी, जिससे कि वो कंसंट्रेशन थोड़ा अपना बढ़ा सकें। चीज़ों को बढ़ाएंगे तो उनको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इनको आयुर्वेद में दिखाएं लाके, इसका इलाज आपको थोड़ा, आपको काफ़ी कुछ इलाज आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा इसका।
3: चलिए ठीक है सर। हाँ,
1: जी जी,
0: आप आके दिखाइए कभी वहाँ पे। बिल्कुल।
3: अच्छा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, और भी अपने श्रोताओं के सवाल हैं, जो मैसेजेस हैं, हम उनको लेते रहेंगे।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम लौट आए हैं और हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया है और ये हैं ऋत्विक जोशी जी। इन्होंने कहां से लिखा ये तो नहीं बताया है। कहते हैं कि मुझे कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। मेरी एज 45 इयर्स है। मैं इसको नेचुरली ठीक कैसे करूं आप बता दीजिए।
3: हाँ ऋत्विक जोशी जी बिल्कुल सही बात है। इस समय ऐसी कंडीशंस आ रही हैं क्योंकि हम पूरे टाइम या तो घरों के अंदर रहते हैं या AC में बैठे रहते हैं, तो हमें विटामिन डी कहाँ से बनेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको धूप में निकलना पड़ेगा, खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूध है दही है जिनसे कैल्शियम मिलता है और उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो लोग अभी खाना भी बंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको आप खाएँ। इसमें प्रवाल है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, इन चीज़ों का, या किसी से कंसल्ट कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको लेके। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास, आप अपने खाने में थोड़ा सा अगर हो सकता है तो गोघृत को रखें, गाय का घी अगर आपको देसी मिल जाता है तो उसको रखें, रोटी के साथ खाएं। और साथ में सूर्योदय के समय नहीं हो सकता है तो कम से कम 8 से 10 के बीच में आप थोड़ा सनलाइट में जाके और सूर्य नमस्कार करें
2: जी,
3: थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम करें, तो आपको सन रेज जरूरी है जिससे कि वो विटामिन डी की कमी पूरी हो सके।
2: तो श्रोता मित्रों, आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और आप हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं। और इस वक्त

0: मेरे पास यानी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक मैसेज आया हुआ है और इनका नाम है अनंग उदय बिस्वाल जी, अब बुलंगीर ओडिशा से इन्होंने मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है तो गर्मी के दिन क्या खाऊं और क्या नहीं, प्लीज बताएं।
1: क्या नाम बताया आपने? बंस
0: अनंगा उदया बिस्वाल जी हैं।
1: उदया बिस्वाल जी, तो जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने खान पान के लिए आपको मना किया होगा कि चीज़ नहीं खानी है, थोड़ा तेल घी कम खाने हैं आपको, ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन बाद आप खा सकेंगे, इस बात को आप गारंटी रखिए, लेकिन अभी मत खाइएगा तुरंत। और खान पान में अपने को कार्बोहाइड्रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको वो सब चीज़ें खानी हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसमें हमारा जो बाइल पिगमेंट का काम था वो ख़त्म हो चुका है, इस समय अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद आप सब कुछ खा सकेंगे। तो थोड़े दिन अभी आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, सिंपल रोटी दाल, और दाल में प्रोटीन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने को अरहर की दाल नहीं खानी है, थोड़ी मूंग की दाल खानी है, इसमें चना मटर नहीं खाना है, गुड़ खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप खाइए तो इसमें अच्छा रहेगा, लेकिन घी तेल जिसमें ज़्यादा हो वो मत खाइएगा, थोड़ा अपने आप को बचा के रखिएगा, नहीं तो फिर पेट में दर्द आपको महसूस होगा और वो दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको मेंटेन करिएगा, क्योंकि हमको खुद को हुआ था इसलिए हमें ज़्यादा एक्सपोजर है इसका,
0: जी
1: और हमारा भी गॉल ब्लैडर निकला हुआ, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज हम सब कुछ खाते हैं क्योंकि इस तरह से मेंटेन किया था, और हमारे लिए अभी मतलब घी तेल सब कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, साल 1.5 साल आपको ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, ये और हमारे पास एक और मैसेज व्हाट्सएप के जरिए, ये हैं समर्थ जी हैं बेंगलोर से, 27 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये कहते हैं आई एम अनेबल टू गेट डीप स्लीप दिस डेज ऑल्सो, आई एम अनेबल टू स्लीप अर्ली, आई फील वेरी स्ट्रेस्ड ड्यू टू माई करियर, आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ इचिंग ऑन माई स्किन, आई हैव कंसल्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट बट इट इज गेटिंग टेम्पररीली क्योर्ड, क्या करना
1: यस,
0: चाहिए?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपके जो स्ट्रेस कंडीशन है इसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है और पित्त बढ़ रहा है, जिस पित्त की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो आपको कैसी भी कंडीशन हो आपको थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करना पड़ेगा, और मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जिसको आपको लगता है कि इसको सुनने से आप सो जाते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा चला के सोइए, और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे, क्योंकि कई कंडीशंस हमने देखी हैं इसमें, और जनरली हम लोग तो इसमें क्या होता है कि काम एंड कूल सिचुएशन देने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को उस सिचुएशन निकाल ले लीजिए, क्योंकि आपकी एज उम्र देख के ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन जॉब्स की प्रॉब्लम्स को वहीं पर छोड़िए और अपने आप को पहले ठीक करिए, देन आपके पास जॉब की वो दिक्कत नहीं होगी, अपने आप को काम एंड कूल करना जरूरी है, और मेडिटेशन करिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए, अपना काम आप करिए, बाकी सब कुछ छोड़िए।
0: जी, और ये हैं प्रकाश जी रोहिणी से, इन्होंने मैसेज भेजा है कि मुझे कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, मेरी उम्र 72 साल की है, 2-3 दिन के बाद बहुत मुश्किल होती है, क्या करूं मैं?
1: आप जरूर कुछ ना कुछ लेते होंगे, अगर कुछ नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, त्रिफला का पाउडर रात को सोने से पहले त्रिफला का पाउडर लें, उससे अगर आराम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको आप रात को भिगो दीजिए और सुबह उसके पानी को पीजिए, तो उसको आपको आधे घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करके देखें आप, आपको कौन सा फायदा करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड कर देगा।
0: डॉक्टर साहब, ये काजल जी हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि गर्मी के मौसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मसूड़ों से खून आने या सूजन की समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और दूसरा प्रश्न उनका यह है कि क्या AIIA में आधुनिक डेंटल प्रोसीजर यानी कि जैसे कि रूट कैनाल स्केलिंग या कैविटी फिलिंग के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा मिश्रण यानी कि इंटीग्रेटिव अप्रोच किया जाता है क्या?
1: ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेशन पे ही काम कर रहा है, और हमारे पास पूरी डेंटल यूनिट वहाँ पे सेपरेट है, हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है और आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी है। इस तरह के अगर कंडीशंस होती हैं तो जनरली गंडूस और कवल का प्रयोग किया जाता है, आप त्रिफला का क्वाथ का गंडूस का कवल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऑल इंडिया में आके दिखा सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छी डेंटल यूनिट है, इतनी अच्छी डेंटल यूनिट आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
0: जी, और देखिए हम क्योंकि जल्दी जल्दी प्रश्न ले रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और ये मैसेज आया है व्हाट्सएप के जरिए, इन्होंने तारीफ की है, कहते हैं कि प्रोग्राम इज वेरी वेरी गुड और थैंक्स टू यू बोथ, क्वेश्चन इज इन आयुर्वेद फॉर बीपी एंड स्ट्रोक हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, व्हाट आर रेमेडीज। ये हैं एसएम

0: जोशी जी पुणे से, 60 साल की इनकी उम्र है।
1: जोशी सर आप बहुत दूर है, पुणे में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं आयुर्वेद के, आप ना हो तो एक बार तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज में दिखा लीजिए, और जो आपने कंडीशंस बताई हैं इन कंडीशंस में यहाँ से हम दवाई नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन को ऐड करिए अपने लाइफस्टाइल में, और उससे सोएंगे अगर आप ठीक से तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, अगर कोई ऑर्गेनिक कारण नहीं होगा तो।
0: जी। और विक्रम सिंह जी दिल्ली से मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, कहते हैं कि सर दिन एक अंजीर खा लेने से क्या बॉडी को सारा विटामिन मिल जाता है क्या?
1: एक अंजीर तो कम है, दो अंजीर खाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। काफी लोग बहुत खा रहे हैं, हमने देखा है लोगों ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश के साथ एक अंजीर खा रहे हैं और काफी उससे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को। तो एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा, उस कॉम्बिनेशन में आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दो अंजीर कम से कम एक दिन में खानी चाहिए।
0: जी उसे रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन हो रहे हैं।
1: जी कोई बात नहीं।
0: ये है आसिफ सैफ जी और ये है मेरठ से, कहते हैं कि हेलो सर मेरा वेट बहुत बढ़ गया है और सर पेट भी बहुत भारी हो गया है, बाहर आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का एक्सरसाइज करना चाहिए?
1: तुरंत आइए आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, दिखाइए अपने आप को, और आपको पंचकर्म थेरेपी की जरूरत है, उससे आपको सबसे अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो बिना उसके फिर ये कहना कुछ भी दवाइयों के साथ ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए थेरेपी करानी पड़ेगी आपको।
0: जी और ये है सुशील कुमार भारती जी बिहार से, लिखते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो जाना किस कारण से हो सकता है, इसका आयुर्वेद में क्या उपाय है, क्या इलाज है?
1: नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, केवल एक कारण नहीं होता है हाथ पैर सुन्न होने का, डायबिटीज एक मेन कारण होता है, अगर डायबिटीज है शुगर बढ़ा हुआ है तो ये उसमें होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें होता है, तो इसलिए आप कंसल्ट करें। बिहार में कहाँ से रहते हैं मैं मालूम नहीं है, पटना में भी कॉलेज है, आप पटना में जाके दिखा सकते हैं, वहाँ पंचकर्म वालों से मिल सकते हैं, आपको उसका सही उपचार मिल जाएगा।
0: जी और चूंकि अब मेरा अपना कुछ प्रश्न है श्रोताओं की ओर से, वो भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या अम्ला यानी कि खट्टापन और लवण यानी कि सॉल्टी और मीठा और कड़वा यानी कि कड़वी जो चीजें हैं और कसीली चीजें, क्या इनका भी ऋतुचर्या में खान पान या दिनचर्या में खान पान अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग समय पे होना चाहिए?
1: बिल्कुल होता है, वैसे जनरली हमारे यहाँ भोजन को षड्रस युक्त कहा गया है कि सारे भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए। तो भोजन करते वक्त आपने देखा होगा अपनी अपनी परंपराएं हैं कि कहीं हम लोग मीठा पहले खाते हैं फिर खाना खाना शुरू करते हैं, कहीं हम लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, तो लवण और अम्ल ये दोनों तो खाने में होते ही है
0: जी।
1: साथ में कटु और तिक्त, क्योंकि आप देखते हैं सारी मिर्चें पड़ते ही हैं उसमें, तो षड्रस युक्त भोजन का ना इंडिकेशन है और 6 के 6 रस हमारे खाने में होने चाहिए
0: जी।
1: तो इसलिए ये कह देना कि हमको ये खाना ही नहीं खाना, ये कंडीशन वाइज डिपेंड करता है, कौन सी डिजीज है, अगर हाइपरटेंशन हो तो हम कहते हैं कि नमक नहीं खाना है, हम कहते हैं डायबिटीज है तो हम कहते हैं मधुर रस नहीं खाना है, तो उस तरीके से ये कंडीशंस आती हैं हमारे पास, तो वहाँ पे केवल हमारा रोक होती है, अदरवाइज आपको कोशिश ये करनी है कि षड रस युक्त भोजन करना है
0: जी,
1: मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु तिक्त कसाय, ये 6 के 6 रस होने चाहिए हमारे भोजन में, तो ही हमारा भोजन सबसे ज्यादा उपयोगी होता है।
0: शाकाहारी मांसाहारी फलाहारी भोजन का उपयोग कई लोग करते हैं, और क्या इसका भी दिनचर्या ऋतु के अनुसार होना चाहिए?
1: नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, अपने हिसाब से कहा जाता है, लेकिन जहाँ पे केवल हमारे पास शाका, अब आजकल की कंडीशन रीजनल और सीजनल की वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट मिल रहा है आजकल, तो वो नहीं हो सकता है, हमको रीजनल और सीजनल आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिस सीजन में जो चीजें मिलती हैं उसको वहां खाना चाहिए, इस सीजन में जो चीजें नहीं मिलती उसको वहां नहीं खाना चाहिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और हमारे श्रोताओं का भी आपने जवाब दिया, मैसेज के जरिए फोन कॉल्स के जरिए बहुत सारी उपयोगी जानकारियां दी, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारियां दी, वक्त निकाला आपने,
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको पुराने गाने अपने पुरानी जिंदगी याद दिला दी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
1: वो है कौन?
2: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को कालासागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन के 4 सैन्य विमान, 7 नौसैनिक पोत और 3 सरकारी पोतों के गश्त लगाने का दावा किया है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में जंगलों की आग लगातार फैलने के कारण 2.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रांची में शुरू और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचेगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस। लेकिन उससे पहले आइए हम सुनते हैं मिलकर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल हैं। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। आस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है।
पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी बना चुके हैं।

0: लेकिन इसके अलावा अपने स्तर पर भी हम कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें। फल, सब्जियां, ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सके उन्हें हरे कूड़ेदान में डालें, और प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन जैसी चीजें नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। घर के अंदर का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत काम आएंगे ये टिप्स। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अपने वाहनों के समय समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और सर्विसिंग भी टाइम पर करवाएं। ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल हो, यानी जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कमरे या घर से बाहर निकलते सभी लाइट और पंखे बंद कर दे। अगर आसपास ही किसी मार्केट या अन्य जगह पर जाना हो तो कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर वॉक करके जाएं। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। छोटी छोटी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचाव, जितना हो उतना ही करंट का इस्तेमाल करना, यूज करने के तुरंत बाद बिजली को बंद करना। परिवार के सभी सदस्य एक बार ही मिलकर खाने से कई लाभ है, जैसे जितना कंजम्पशन है उतना ही खाना बनता है, बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है। अन्य कमरों में लाइट और फैन बंद करें। पानी की बचत करें, वॉश बेसिन में ज्यादा पानी वेस्ट न करिएगा। किचन से सब्जी फल धोने के बाद जो पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें। किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। थोड़ा ही सही, घर पर कुछ ना कुछ जरूर उगाए। हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं, आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाए, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं, और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं। टमाटे, बैंगन, टिंडा, ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। 26 जुलाई दोस्तों, आज की तारीख इतिहास में रखती है एक बहुत ही खास महत्व, क्योंकि आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की अदम्य वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का यह अवसर है। और ये केवल एक विजय का उत्सव नहीं, बल्कि उन अमर वीरों के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उन्हें याद करते हुए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत, जिसका नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दोस्तों, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बिल्कुल आप ही के लिए ये प्रोग्राम है बनेंगे और बन सकते हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल और उन सवालों के सही जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। तो आज आपके लिए जो फोन लाइन्स उपलब्ध हैं उनके बारे में हम बता दें। वैसे तो हमें पहले से ही कई कॉल्स आने लगे हैं, लेकिन अपने उन साथियों के लिए भी बता दें जो इस प्रोग्राम में पहली बार या फिर पहले भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन आज भी उनका मन है कि इस प्रोग्राम में जो हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं उनके आप जवाब दें। तो हमारी फोन लाइन्स हैं दिल्ली का एसटीडी कोड आप जानते हैं 011011, और उसके बाद हमारे दो नंबर्स हैं आज आपके लिए 2342108 और 2342108 2342108 एंड 2342108। तो जब हमने अपने देश के वीर सपूतों को याद किया तो सलाम करते हैं भारत माँ को भी।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस और रेनबो जीनियस में जीनियस बनने के लिए आप हो गए हैं तैयार, क्योंकि इस बात की बात को आप तक बढ़ाने के लिए हमारे पास भी कुछ बातें हैं और वो बातें हैं सवाल के रूप में और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चलते हैं पहले कॉलर की ओर और देखते हैं कि कौन है, कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
1: जी, सभी को मेरा नमस्कार। रजनीश राठी बांडोर महेंद्रगढ़ से कॉल कर रहा हूँ।
0: अरे वाह रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर। और पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई थी, आप हमारे रेनबो
1: जीनियस भी बना था मैं पिछले
0: बार। पहले एकमात्र जीनियस बने थे पिछले हफ्ते आप, तो आज भी आप बिल्कुल डट कर पहला ही कॉल आपने एकदम सही समय पर लगा दिया और सही समय पर आपसे हम जुड़ गए। तो चलिए,
1: कोशिश की जाएगी, वैसे पक्का नहीं है जीनियस ही बना दे।
0: कोशिश इम्पोर्टेंट होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम कई बार हम अपनी कोशिश में सफल नहीं भी हो रहे तो भी हम बहुत कुछ सीख कर जाते हैं।
1: जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, तो रेनबो जीनियस में हम वही कोशिश करते हैं लगातार। तो चलिए रजनीश जी, आपसे पहला सवाल करते हैं आज, क्योंकि हम ऑपरेशन विजय जो है हमारा कारगिल युद्ध का,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: उसके बारे में हम बात करते हैं और हम सभी लोग मना रहे हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो युद्ध चला था, आपको ये बताना है कि किस महीने में शुरू हुआ और किस महीने तक चला, कितने समय तक चला लगभग?
1: जी, ये जून महीने में शुरू हुआ था और जुलाई।
0: पक्का?
1: हाँ जी पक्का, पक्का तो याद नहीं है बाकी इस तरह।
0: अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो कारगिल वार था इसके डेट्स में आप थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शुरू हुआ था, हमने आपसे पूछा था कि किस महीने में शुरू हुआ और किस महीने तक चला, सीधा सवाल है आपसे।
1: 4 जुलाई के आसपास, जुलाई के शुरुआत में शुरू हुआ, 26 जुलाई को खत्म हो गया।
0: रजनीश जी, इस बार आप जो है इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं। ये सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि किस महीने में शुरू हुआ और कब तक चला, तो मई में ये युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध जो था वो मई से लेकर जुलाई तक चला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त, यही होता है कई बार हम कुछ सवालों में तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ सवालों में थोड़ा सा रह जाते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सीखते हैं और सीख कर फिर से आगे बढ़ते हैं। और हम भी आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉलर की ओर और देखते हैं कि वो कौन है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर, अपना परिचय दें।
2: नमस्कार सर, मैं पंकज बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार पंकज जी, कहाँ से जुड़े हैं आप हमसे?
2: सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ से?
2: दिल्ली में मैं सर पटेल चेस GTB नगर।
0: अरे वाह, क्या बात है, वो तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जाम्स की तैयारी करने।
2: यस सर।
0: अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप अभी, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
2: सर हाँ, हम PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी।
0: अरे वाह, तो आपसे सवाल भी काफी आसान लगेंगे आपको, हर सवाल का जवाब देना जब आप PhD की
2: सर सवाल के अगर उत्तर आते हो तो आसान है।
0: ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है वो आसान लगता है
2: ना।
0: तो चलिए सबसे पहले आपसे आसान सवाल ही पूछते हैं। आप ये बताइए कि कारगिल युद्ध की हम बात कर रहे हैं, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अभियान का नाम क्या था?
2: जो ये विजय ऑपरेशन नाम और अभियान का नाम, विक्रम बत्रा जी का एक नारा से मुझे एक दिल मांगे मोर नारा याद है सर, अभियान का नाम ध्यान नहीं है।
0: लेकिन हमने आपसे पूछा है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अभियान का नाम क्या था, बहुत ही मशहूर है और अभी अगर आपने हमें ध्यान से सुना होता, समाचार भी सुना होता आपने और हमारी बातें भी सुनी होती तो हमने भी उसका जिक्र किया था।
2: विजय ऑपरेशन था शायद मेरे ख्याल।
0: ऑपरेशन विजय, बिल्कुल सही, आपने थोड़ा सा इधर उधर तो घूमे लेकिन फिर वापस आप सही जवाब पर आ गए। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?
2: प्रशांत महासागर।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल जल्दी से जवाब दे दिया इसका।
2: थैंक यू सर।
0: तो तीसरा सवाल आपके लिए है कि ये बताइए आप कि काला सोना किसे कहा जाता है, कि व्हाट इज कॉमनली नोन एज ब्लैक?
2: काला सोना कोयले को बोलते हैं क्या? आई थिंक कोयला।
0: आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, पहले ये साफ
2: कीजिए। आई थिंक कोयला।
0: आप कोयला बोल रहे हैं?
2: जी
0: नहीं, सही जवाब है पेट्रोलियम। अच्छा, जो क्रूड ऑयल होता है ना उसका भी कलर काला होता है, ठीक है। और
2: हाँ
0: वो
2: करेक्ट
0: आप
2: करेक्ट
0: जानते ही हैं
2: करेक्ट
0: कैसे तेल
2: करेक्ट
0: की
2: हाँ
0: कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाकी चीजें कैसे होती हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है काला सोना।
2: क्या सर,
0: ठीक है
2: अच्छा लगा सर बट आपके साथ बात
0: जी, हमें भी बहुत
2: करके।
0: अच्छा लगा। और आप इसी तरह से तैयारी करते रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, इसी तरह से जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं अपना ये कार्य, आप आगे बढ़ें और देश को गर्व करने के मौके दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ
2: बहुत
0: बात
2: बहुत
0: करने
2: धन्यवाद, थैंक
0: जी।
2: यू सर।
0: तो दोस्त, हमारे दो कॉलर तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी सवालों का जवाब देने की कोशिश की। आप भी चाहें तो हमारे कुछ सवालों का जवाब देकर बन सकते हैं रेनबो जीनियस। तब तक आप कोशिश करिए और हम आप तक पहुंचाते हैं ये एक गीत।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस और आपको भी मिलेंगी बधाइयां जब आप बनेंगे रेनबो जीनियस। हम चाहते हैं कि आप जीतें और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। जो आप वो बातें तो पहुंचाते ही हैं आप अपने संदेशों के जरिए, साथ ही आज आपसे बात करने का भी मौका है इस प्रोग्राम में। तो हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं और करते हैं उनसे बातें। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो पर, अपना परिचय।
1: नमस्कार सर, राम धारियावाना बात कर रहा हूँ, कुतुबपुर हिसार हरियाणा से।
0: अरे वाह, क्या बात है, हरियाणा से हमारे कई साथी जुड़ रहे हैं लगातार। रामधारी जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताएं, आपने नाम बताया, जगह बताई, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, पुलिस में आप, तब तो थोड़ा आपसे सवाल भी कुछ उसी तरह के पूछने पड़ेंगे। आमतौर पर पुलिस से सवाल पूछने का मौका कम ही मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो चलिए, रेडी हैं आप खेलने के लिए रेनबो जीनियस में सवाल जवाब का ये सिलसिला चलाएं?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, आपसे पहला सवाल हम पूछते हैं और ये सवाल जो है आपसे थोड़ा आसान ही लग रहा है वैसे तो आपके लिए, क्योंकि पुलिस के लिए तो हर चीज ही आसान होती है। आपको ये बताना है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी?
1: वेस्ट बंगाल कलकत्ता शहर में चली।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। और दूसरा सवाल आपके लिए है बिल्कुल तैयार, आपको ये बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है?
1: ये ब्रह्मपुत्र में है, असम।
0: अरे वाह, क्या बात, आप गए हैं कभी उधर?
1: सर पढ़ा है, लेकिन एक वहाँ पर कामाख्या मंदिर है, उसके बारे में मैं मतलब जैसे मेरे को लगता है कि कुछ पढ़ना चाहिए, तो मैंने कामाख्या माता मंदिर के बारे में पढ़ा है और माजुली द्वीप के बारे में भी पढ़ा है, बुक्स नहीं, कभी मौका तो नहीं मिला अभी तक।
0: तो LTC वगैरह लीजिए, जाइए, अच्छा रहेगा।
1: LTC सर शायद ये लास्ट ही रहेगी, अब बंद ही होने वाली है, तो कोशिश करूंगा कभी मैं जाऊं, कामाख्या माता मंदिर देखने की मेरी एक इच्छा है।
0: अच्छा चलिए, दो सवालों का आपने दे दिया है सही जवाब, अब तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे?
1: ये फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनोमर थे सर।
0: आपको एक ही बताना है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे?
1: आप फिजिसिस्ट भी थे, एस्ट्रोनोमर, फिजिसिस्ट थे सर।
0: फिजिक्स से जुड़े हुए थे
1: जी।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपका ये भी सवाल जो था उसका भी आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, तीन सवालों का सही जवाब दे चुके हैं आप रामधारी जी, और आपके लिए बस दो ही सवाल हैं जिनको पार करना है रेनबो जीनियस बनने के लिए। तैयार हैं आप?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए तो ठीक है, आप तैयार हैं तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं अपने सवालों के साथ। अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
1: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को।
0: क्या बात है, आप एकदम पढ़ाई में लगे हुए, लग रहा है कि आप समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं।

0: हर सवालों के आपने सही जवाब दे दिए हैं।
1: जब भी टाइम मिलता है सर, मैं पढ़ लेता हूँ और बाकी ऑल इंडिया रेडियो से जो भी न्यूज़ वगैरह आती है उनको मैं सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने कही। और हमारी भी कोशिश होती है कि अपने अपने अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उनके जरिए हम आप सभी तक तरह तरह की जानकारियाँ पहुँचाएं और लोगों तक जो ये इंफोटेनमेंट लगातार हम पहुँचाते रहते हैं, तो उसको यूं ही जारी रखें। चलिए, आप एक पांचवा सवाल जो आपको रेनबो जीनियस बना देगा, आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
1: ये सर है, पढ़ा है मैंने।
0: पढ़ा है तो बताइए, इसका जवाब बताइए।
1: वो सर वेनेजुएला में है सर, ये एंजल जलप्रपात है।
0: क्या बात है रामधारी जी, आपके लिए तालियां बनती है क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं पांचों सवालों के, और आज के आप बनते हैं हमारे रेनबो जीनियस।
1: थैंक यू सर।
0: तो दोस्तों, हमें पहले रेनबो जीनियस मिल चुके हैं, लेकिन पहले हैं आखिरी नहीं है, क्योंकि आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। और रामधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार पढ़ते लिखते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, और जिस तरह से आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: तो दोस्तों, हमारे साथ रामधारी अवाना जी जुड़े जो कि पुलिस में है, और इन्होंने पांच सवाल हमने इनसे पूछे अलग अलग क्षेत्रों से, और इन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब। और आप भी चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे, ये अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स दो इस वक्त उपलब्ध हैं आपके लिए, 01 जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है वो आप लगाइएगा, उसके बाद नंबर है हमारा 2342108080 और 2342108022, 2342108082।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश और आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं फोन कॉल्स के जरिए। हमने आपको बता ही दिया कि कैसे आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो देखते हैं हमारे और कौन साते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: जी नमस्ते, मेरा नाम आकाश है।
3: आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में और बता दीजिए।
4: मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ।
3: अरे वाह।
4: हाँ जी जी।
3: तो ये भी एक कमाल की बात है कि आमतौर पर ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जिनसे आप सवाल कर पाए, जैसे पुलिस, टीचर। बच्चे कहाँ कर पाते हैं सवाल? बच्चे तो सवाल का जवाब ही पाते हैं आमतौर पर, लेकिन सवाल सीधे करना। खैर, आज आप दूसरी स्थिति में हैं। आज हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप उसको जवाब देंगे, ठीक है आकाश जी? तो तैयार हैं आप खेलने के लिए? रेनबो जूनियर्स में सवाल जवाब का ये सिलसिला चलाएं।
4: हाँ जी, हाँ जी।
3: आपसे पहला सवाल हम पूछ रहे हैं, आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया?
4: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
3: कहाँ पर है ये?
4: ये मुंबई में है।
3: मुंबई बंदरगाह आप कह रहे हैं?
4: हाँ, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट।
3: मुंबई पोर्ट, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और पहले सवाल का आपने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, एक टीचर के लिए कोई भी सवाल पूछते समय हमारे मन में रहता है कि ये तो पक्का इनको आता होगा, तो ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो पूछते हुए भी मेरे मन में ये है, लेकिन सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ज़रूर। तो बताइए ये कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप
4: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।
3: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपने ये भी दे दिया है। और दो सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। तो तीसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? Who was the first recipient of the परमवीर चक्र?
4: मेजर शैतान सिंह। परमवीर चक्र रेसिपिएंट।
3: हाँ, परमवीर चक्र रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र,
4: जिन्होंने कारगिल की वॉर, कारगिल नहीं सॉरी, वो भारत पाकिस्तान वॉर जीती थी।
3: आपका वैसे तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपकी ये कोशिश जो है वो सही जवाब जो है उससे थोड़ा सा दूर रह गई है। आकाश जी, सही जवाब हम आपको बता दें।
4: हाँ जी सर, बता दीजिए।
3: इस सवाल का सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा। हाँ, तो सही जवाब आपको मिल गया आकाश जी। बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेनबो जीनियस में पार्टिसिपेट करने के लिए।
4: धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, आकाश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े और इन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए बिल्कुल सही। कुछ सवालों के जवाब देते देते थोड़ा सा रह गए, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिश करने से हम बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लेते हैं, हमारी कोशिश आगे बढ़ती है। और अगले एक हमारे और कॉलर हैं, आइए देखते हैं कि कौन है वो। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, हैव ए नाइस डे।
3: आपको भी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? रुकिए, केशव जी। आपकी आवाज से ही मैंने पहचान लिया आपको।
5: अरे सर, क्या क्या, मेनी मेनी थैंक्स।
3: कैसे हैं आप?
5: आई एम फाइन सर, ओके, आई एम अच्छे है।
3: अच्छा ही रहना चाहिए। और तैयार हैं आप सवालों का जवाब देने के लिए?
5: क्लियर सर, आई एम गेट रेडी।
3: चलिए ठीक है, तो आपसे पहला सवाल हम करते हैं, आप ये बताइए। अच्छा, आपने मुझे तो पता है आप कहाँ से, लेकिन हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं उनको भी तो बता दीजिए कि आप कहाँ से हमसे जुड़े हैं।
5: क्या सर,
3: आप कहाँ रहते हैं?
5: मैं घर में सर, त्रिपुरा।
3: अच्छा, त्रिपुरा में। अच्छा, घर में रहते हैं और त्रिपुरा में इनका घर है। चलिए सबसे पहला सवाल आपसे,
5: अगरतला।
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगरतला में है। तो सबसे पहला सवाल आपसे हम आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन?
5: सर, व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट सेमी,
3: व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन?
5: शताब्दी एक्सप्रेस।
3: आप ट्रेन में कम बैठ रहे हैं ऐसा लग रहा है केशव जी हमें।
5: और वंदे भारत एक्सप्रेस।
3: आपने आप दो ऑप्शंस आपने दिए हैं, आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन चुनना होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप?
5: वंदे भारत। वंदे
3: भारत, चलिए ठीक है, आपने कोशिश की और आपने दूसरी बार में सही कोशिश की, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है बिल्कुल सही जवाब है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन है। और पहले सवाल का जवाब आपका ठीक हो गया है, तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड?
5: 1945, 24 अक्टूबर।
3: अरे वाह, बिल्कुल एकदम सही जवाब आपने दिया है और दो सवालों के जवाब आपने आज तो सही दे दिए हैं, और बस तीन सवाल दूर हैं आप हमारे रेनबो जीनियस बनने से। केशव जी, अगला सवाल आपके लिए, आप ये बताइए कि रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड? ब्लड का आपसे हमने पूछा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड?
5: इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा,
3: अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा लग रहा है केशव जी आज आप हमारे रेनबो जीनियस बनने ही वाले हैं, दो सवाल दूर हैं आप बस। तो चलिए अगला सवाल आपसे और पूछ लेते हैं, और अगला सवाल आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि दांडी मार्च किस साल शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड
5: 12 मार्च 1930।
3: अरे वाह, क्या बात है, एकदम एग्जैक्ट डेट आपने बताई।
5: इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल इवेंट फॉर इंडियन, स्ट्रगलिंग लाइफ फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और हम सभी लोगों को अपने आजादी के उस संघर्ष पर, आजादी की लड़ाई पर गर्व है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब चार सवालों के आपने जवाब सही दे दिए कुछ, अब ये बताइए केशव जी कुछ तैयारी करके आए आप इस बार? पिछली बार से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज इस बार आप। हेलो
5: हेलो सर,
3: केशव जी, केशव जी मैं सिर्फ बस ये सवाल आपको रेनबो जीनियस बनाने के लिए नहीं है, ये मेरी अपनी जिज्ञासा थी कि क्या आपने इस बार कुछ अलग से तैयारी की है जो सभी सवालों के जवाब एकदम सही दे रहे हैं?
5: आई हैव रेड मेनी बुक्स सर, बिकॉज आई एम ए ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर, दैट्स व्हाई आई हैव टू रेड मेनी बुक्स एंड आई हैव टू पार्टिसिपेट इन मेनी क्विज कॉम्पिटिशन, सो दैट्स व्हाई सर, दो आई एम above 60 years old sir, still today I am very I want to remain update.
3: क्या बात है सर, बहुत अच्छा।
5: Around the world, what is happening in our country? So I want to remain always alert. Come on.
3: ये बहुत बहुत अच्छी बात कही है, लगातार अपने आप को एनरिच करते जाना, जानकारियां जुटाना और उसमें लगातार अपने को लगाए रखना और नई नई चीजों के बारे में जानना, ये जो आपका उत्साह है वो बहुत ही शानदार है। चलिए लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं और ये सवाल आपको बनाएगा रेनबो सीरियस, तैयार हैं आप? आपको ये बताना है कि हॉकी में प्रत्येक टीम के मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन द फील्ड फॉर ईच टीम इन हॉकी एट वन टाइम?
5: सर, इट्स जस्ट फुटबॉल सेम एज 11 प्लेयर्स।
3: अरे वाह।

0: बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है केशव जी। आज फिर से हमें एक और हमारे रेनबो जीनियस मिले हैं और आज
1: मेनी
0: हैं
1: मेनी
0: केशव
1: थैंक्स
0: जी।
1: सर, मेनी मेनी थैंक्स यू, मेनी मेनी थैंक्स। यू आर रियली एनकरेजिंग मनी, दैट इज कॉल्ड यू आर एनकरेजिंग प्रेजेंटेशन। योर वॉइस वेरी वेरी एनकरेजिंग
0: थैंक
1: एंड आई
0: यू,
1: एम वेरी इंस्पायर्ड यू हियरिंग यू सर, मेनी मेनी
0: थैंक यू,
1: थैंक्स।
0: थैंक यू सो मच केशव जी। और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपका उत्साह आपकी आवाज में झलका, और हमें उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, विदेशों से
1: वेरी
0: भी सुन रहे हैं,
1: वेरी
0: उनके लिए बहुत ही
1: नाइस
0: कमाल
1: डे
0: का
1: सर।
0: होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमें मिल गए हमारे दो रेनबो जीनियस, आज तो कमाल ही हो गया है। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, रेनबो जीनियस बनने का आपको मौका मिल रहा है और आप बन रहे हैं और सवालों के सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए अब एक अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, और उस गीत के बाद देखते हैं कि और कौन है जो रेनबो जीनियस बनने की कोशिश में हम तक पहुंच रहे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश और आप मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आपके साथ जो बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही, साथ ही साथ आप सवालों के सही जवाब भी दे रहे हैं। अब तक हमें आज के इस प्रोग्राम में 2 रेनबो जीनियस मिल चुके हैं और दोनों ही हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनके हमारे रेनबो जीनियस बन सकते हैं। और चलते हैं, आप देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं जो रेनबो जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं हो पाए इनसे बात, ऐसा लग रहा है कि फ़ोन कट गया, लेकिन ये हैं। हेलो
7: हेलो
6: हेलो
7: जी, नमस्कार सर।
6: जी नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो पर। आप सीधे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दें।
7: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
6: अच्छा, हरियाणा से उमेश जी। उमेश जी, ये आज हरियाणा के हमारे 2 साथी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनके मित्र तो नहीं है?
7: बिल्कुल उनके मित्र हैं।
6: अरे वाह, क्या बात, लग ही रहा था मुझे कि सारे मित्र एक साथ होंगे और उन्होंने कहा चल भाई ईव तना कर लिया, मेरा नंबर है ना?
7: नहीं, एक साथ तो नहीं है, बहुत दूर दूर सुन रहे हैं, लगभग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है सबकी।
6: अच्छा चलिए ठीक है, दूरियां दिलों की होती हैं, रास्ते तो घंटे में लग जाते हैं। और
7: नहीं घंटों में भी नहीं सर, आप हम रेनबो सुन रहे हैं, सेकंडों में चल रहे हैं।
6: क्या बात है, आप तो बहुत सुपर फास्ट हैं, आप तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है आप सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए आपसे सवालों का जवाब हम मांगते हैं। तैयार हैं आप?
7: कोशिश करते हैं।
6: जो लोग बोलते हैं ना फिर वो कुछ तगड़ी ही कोशिश कर देते हैं। तो चलिए आपसे पहला सवाल हम पूछते हैं, आप ये बताइए कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है?
7: विटामिन के।
6: बिल्कुल सही जवाब, आपने पहले सवाल का जवाब एकदम सही दे दिया है। अब दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि भारत में GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? When was the goods and services tax implemented in India?
7: 2017।
6: बिल्कुल, और इत्तेफाक से वो भी जुलाई का ही महीना था।
7: जी
6: बिल्कुल, तो आपके 2 सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं बिल्कुल सही। और तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और तीसरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? Which was the India's first indigenous सुपर कंप्यूटर?
7: परम।
6: बिल्कुल सही जवाब, आगे भी कुछ उसका पूरा नाम बताना चाहेंगे कि परम से आप परम संतुष्ट हैं?
7: आपका काम चल रहा है तो परम से ही चला लीजिए सर।
6: ये बात ठीक है, चलिए ठीक है, 3 सवालों के आपने जवाब दे दिए हैं बिल्कुल सही। और अब 3 सवालों के बाद अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ने का समय आ गया है और अब आपसे सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि सन 1857 का जो हमारा आजादी का जो संघर्ष हो रहा था, 1857 का विद्रोह, उसमें जो प्रमुख केंद्र कानपुर में किसके लिए खासतौर पर जाना जाता है, कानपुर में कौन थे?
7: चाचा टोपे और नाना साहब।
6: मैंने दोनों पर कुछ नहीं बोला है, अब आपको 2 नाम आपने बोले हैं, आपने अपने आप ही अपने ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं, आपको सिर्फ एक नाम बताना है।
7: सर दोनों ही थे वैसे तो, पर आप सस्पेंस में डाल रहे हैं तो मैं नाना साहब के साथ जाना चाहूंगा।
6: चलिए नाना साहब बिल्कुल सही जवाब, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो कितने हो गए आपके सही जवाब, गिने आपने?

0: आप गिनते रहिए सर।
1: चार हो गए हैं आपके, और एक सवाल का अगर आप जवाब और सही दे देते हैं तो आप आज के हमारे रेनबो जीनियस बन सकते हैं। तो आपसे ये जो सवाल हम पूछने वाले हैं, वैसे अच्छा इतना तो आपसे बातें हो गई हैं, अब समय में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अगले जो कॉलर हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए, फिर सवाल हम पूछते हैं आपसे।
0: जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ अभी।
1: क्या बात है, एक और हमारे साथी रामदारी जी, वो भी हरियाणा पुलिस से मिले, आप
0: जी
1: भी हमें
0: बिल्कुल,
1: वही
0: वो
1: से।
0: हमारे अजीज दोस्त हैं
1: अच्छा, चलिए ये
0: जी।
1: तो बढ़िया होता। आप ऐसा तो नहीं है ना कि आवाज़ बदलकर रामदारी जी ही बात कर रहे
0: नहीं सर नहीं,
1: हैं?
0: आप नंबर निकलवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं।
1: चलिए नंबर तो हम नहीं निकलवाएंगे, लेकिन हाँ एक सवाल और निकालेंगे जो आपको रेनबो जीनियस बना सकता है। आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड।
0: 1935
1: राष्ट्रीकरण की बात कर रहे हैं हम, स्थापना पे चले गए आप।
0: 1949
1: अब आपने दो ऑप्शंस थे आपके पास, आप पक्का श्योर हैं आप इस आंसर के लिए?
0: हाँ श्योर हूँ सर, जब
1: 1949।
0: 1935 से मना कर दिया तो 1949 ही होगा।
1: अच्छा चलिए ठीक है, आपका ये भी जवाब जो है बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि आपने एक तरफ तुक्का लगाया लेकिन उससे हमें तो लगा था कि शायद आप कुछ और वर्ष ले जाएंगे इधर उधर, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप भी बनते हैं आज के हमारे रेनबो जीनियस, क्या बात है, हरियाणा पुलिस कमाल कर रहे हो, छा गया तो सही।
0: जी धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्त और इस प्रोग्राम का
0: एक
1: हिस्सा
0: एक
1: बनने के
0: लिसनर
1: लिए।
0: रोल लीजिएगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे।
1: समय को देखते हुए ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चलते
0: नहीं ले
1: चलते
0: सकते हैं आप कर सकते हैं,
1: कैसे कर सकते हैं,
0: अभी 3 मिनट बाकी हैं
1: 3 मिनट बाकी है, लेकिन दोस्त अब
0: जी।
1: हमारे जो अगले प्रेजेंटर है वो स्टूडियो में आ चुके हैं और उनके लिए मुझे ये सीट जो है उनको एक आध मिनट पहले तो देनी चाहिए ना, ताकि वो बैठ जाएं।
0: चलिए ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगे।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से खेला आपने, आपको
0: जी
1: भी भविष्य के
0: धन्यवाद,
1: लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद।
1: तो दोस्तों रेनबो जीनियस में आज का सफर बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, जानकारियां बढ़ाते रहिए, क्योंकि किसी दिन आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। रखिए अपना ख्याल, चलते चलते ये गीत आप सभी के लिए, क्योंकि आप लगातार सुनते हैं FM रेनबो, तो लगातार यूं ही सुनते रहिए और जो इन्फोटेनमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं उसका लुत्फ उठाते रहिए। नमस्कार, राजेश को दीजिए अनुमति, जय हिंद।

रेनबो पर वक्त है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अतिरिक्त क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर अनाहत सिंह को बधाई दी। अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षित स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रांची में शुरू और हरारे में तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। जैसा आप आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया 102.6 एफएम पर, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है सिटी लाइट्स। और साहब कहते हैं कि जिंदगी में ट्रैफिक की जिंदगी जो है हमारी ट्रैफिक की तरह होती है और कभी रुकती है और कभी दौड़ती चली जाती है, लेकिन जब आप सही लेन में होते हैं तो मंजिल खुद ब खुद पास आ जाती है। बहरहाल अब शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे इस प्रोग्राम में। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ साहब, एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं मेरे यानी खुर्शीद के साथ। और आपको बता दूं कि सिटी लाइट्स प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। और दिल्ली एनसीआर में वैसे जगह जगह बारिश भी हो रही है यार, मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है, लेकिन सड़क पर ज़रा सी लापरवाही कहीं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत भी बन सकती है। इसलिए अगर आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं या दोस्तों के साथ वीकेंड एन्जॉय करने के लिए निकले हैं, तो स्पीड नहीं बल्कि सेफ्टी को अपना साथी बनाइए, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल से दूरी ज़रा थोड़ी सी दूर रखें, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त हमारा जो ध्यान है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सामने होना चाहिए, तभी हम सेफ रह पाएंगे और घर जो है वो सुरक्षित पहुंच पाएंगे। इसलिए ड्राइव कीजिए, एंजॉय कीजिए वेदर को, लेकिन सेफ्टी के साथ।

वैसे दिल्ली में इस वीकेंड फिटनेस का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी के द्वारका स्थित यशो भूमि यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी हाई रॉक्स दिल्ली 2026 का आयोजन जो है वो किया जा रहा था और इस प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन था। वैसे 24 से 26 तक ये चल रही थी और इसमें भारत के साथ साथ कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा भी ले रहे थे। हाईरॉक्स की अगर हम बात करें तो ये एक अनोखी फिटनेस रेस है जिसमें प्रतियोगियों को 8 किलोमीटर दौड़ के साथ 8 अलग अलग फिटनेस चुनौतियों को पूरा करना होता है। इस का उद्देश्य भी यही था कि लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए उन्हें ज़िंदगी में प्रेरित करना। अगर आप फिटनेस और स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो ये आयोजन आपके लिए था। बहरहाल आज इसका आखिरी दिन था और अगर हम फिट रहेंगे ना तो वाकई ज़िंदगी जो है वो गुलजार खुद ब खुद हो जाएगी।

0: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हां साहब, FM रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 FM पर। प्रोग्राम है सिटी लाइट। अब स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर लगातार बुखार, खांसी, गले में दर्द या सांस लेने तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें आपको, तो उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह भी लें। वैसे बरसात के मौसम में संक्रमण का खतरा जो है वो तो बढ़ ही जाता है, इसलिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी सावधानी बरतें, क्योंकि हाथों की नियमित सफाई जो है वो आप लगातार करते रहें और खूब पानी पिएं और जो भोजन है यानी खाना जो है उसे संतुलित लें, और छोटी सी सतर्कता जो है ना वो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए थोड़ा सा अगर इस मौसम में आप सतर्क रहें, क्योंकि जो मौसम होता है ना बारिश का, इसमें बहुत जल्दी हमें संक्रमण या कहें कि कुछ छोटी मोटी बीमारी जो है वो हो जाती है। इससे बचने का इलाज यही है कि थोड़ा सा हम सावधानी बरत लें तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लेंगे, अपने खुद को अच्छा कर लेंगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा हम कर लेंगे। वैसे ये अगला गीत आपके लिए आ रहा है, बड़ा प्यारा सा गीत है, सुनते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और साहब अब आपको बता दें कि दिल्ली NCR की अगर सड़कों पर आप घूम रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए क्योंकि NH 48 पर गुरुग्राम की ओर और NH 9 पर गाजियाबाद की तरफ और इसके अलावा ITU से इंडिया गेट और संसद मार्ग के पास ट्रैफिक सामान्य से धीमा है और बारिश की वजह से कुछ जगहों पर रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है और इसलिए थोड़ा सा जो आप अगर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लेकर चलें, अतिरिक्त टाइम निकालें और सुरक्षित दूरी जो है वो आप गाड़ियों के बीच में बनाए रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन अगर करते रहेंगे ना तो आपका जो सफ़र है वो और ज़्यादा सुहाना हो जाएगा।

दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम किसी इम्तिहान से कम नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आने वाले समय में गाजियाबाद के लोगों का सफर जो है वो आसान होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि गाजियाबाद में घंटाघर से भटिया मोड़ तक 4 लेन एलिवेटेड रोड की योजना पर जो है काम आगे बढ़ रहा है। इसके बनने से GT रोड पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने की बिल्कुल उम्मीद है और रोज़ाना हज़ारों यात्रियों का जो सफ़र है वो और ज़्यादा सुगम हो जाएगा, जिससे वक्त और आपका जो ईंधन है दोनों की बचत हो जाएगी। वैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सफ़र होगा आपका छोटा और जो मुस्कान है वो बड़ी हो जाएगी।

वैसे जिंदगी भी इस शहर की सड़कों की तरह हो गई है, कहीं तेज रफ्तार है, कहीं थोड़ा ठहराव है, और कहीं बारिश की फुहारें तो कहीं उम्मीदों की धूप भी है। वैसे हर दिन अपने साथ कुछ नई कहानियां लेकर आता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और हमारा काम है कि उन कहानियों को आप तक पहुंचाना। वैसे दिल्ली एनसीआर की जो हलचल है, वो अच्छी खबरें हो या फिर मौसम का मिजाज हो, ट्रैफिक की जानकारी हो, सब कुछ लेकर आते हैं हम इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। और अब कुछ धड़कने की मुझे आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है?

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जहाँ साहब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। वैसे दिल्ली की पहचान सिर्फ चौड़ी सड़कें, ऐतिहासिक इमारतें और चटपटे खाने से नहीं है, बल्कि इस शहर की एक और खूबसूरत पहचान है। वो पहचान है इसकी कला, संस्कृति और इसका रंगमंच। अगर आपकी शाम, या कहें कि अगर आप अपनी शाम कुछ अलग अंदाज में बिताने का मन रखते हैं, तो अगली जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो आदमी के लिए है, क्योंकि राजधानी के मंडी हाउस इलाके में आज शाम कला और संस्कृति का रंग जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि त्रिवेणी कला संगम में चल रही है आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें देश के कई कलाकारों की पेंटिंग और कलाकृतियां जो है वो दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा मंडी हाउस के आसपास अलग अलग ऑडिटोरियम्स में थिएटर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हैं। अगर आप रोज़मर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सा अलग, कुछ क्रिएटिव और सुकून भरे पल जो बिताना चाहते हैं, तो फिर मंडी हाउस की तरफ आ जाइए ना, क्योंकि यहाँ ये जो मंडी हाउस

से यहाँ पर शाम जो है वो कुछ अलग ही अंदाज में होती है। वैसे कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीर किसी आर्ट गैलरी की दीवार पर नहीं होती, बल्कि उसे देखने वाले की आंखों में होती है। और अगर आज शाम वक्त मिले तो दिल्ली की संस्कृति को ज़रूर महसूस कीजिए। सेटेलाइट्स पर आगे भी कुछ ऐसी बातें बताता रहूँगा। सुनते रहिए FM Rainbow।

बारिश नहीं हो रही। सच्चाई यही है कि कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। अभी मैं दोपहर के वक्त अपने स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में लक्ष्मी नगर साइड में इसराइली की तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही स्टूडियो पहुंचा यहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ था। इसलिए कहीं बारिश है कहीं नहीं है। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो बारिश जो है सिर्फ मौसम नहीं बदलती है, अगर हम चाहें तो आने वाले कल की तस्वीर भी बदल सकती है। एक बूंद की कीमत समझना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। वैसे मानसून के इस दौर में लोगों में जो वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने की अपील जो की जा रही है, और विशेषज्ञों का कहना कि अगर हर घर और हर संस्था बारिश के पानी को सहेजने की दिशा में कदम बढ़ाए तो आने वाले भविष्य में पानी की कमी जैसी समस्याओं का काफ़ी हद तक इस पर काम किया जा सकता है। वैसे ये छोटी सी पहल पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए एक बड़ा योगदान साबित हो सकती है। इसलिए बारिश की हर बूंद सिर्फ आज की राहत नहीं है बल्कि आने वाले कल की अमानत भी है। इसलिए पानी को ज़रूर बचाएं, क्योंकि पानी बचाएं और प्रकृति का जो साथ है उसे निभाते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए निभाएं। इसलिए पानी की अहमियत हमें ज़रूर जाननी है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, उसका भी ख्याल रखना है। और अगर हम घर पे भी इस्तेमाल करते हैं पानी का तो उसको ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी बहाना हमें नहीं है, ख्याल रखें।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने।
1: जी साहब, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट, क्योंकि कभी कभी गलत ट्रैक जो है वो भी चल जाता है। खैर, प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद, और मौसम की बात कर रहे थे हम, और मौसम

संभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के में अगले कुछ दिनों तक बादलों की जो आवाजाही है वो बनी रहेगी और बीच बीच में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं लोगों को उमस से राहत देंगी। हालांकि बाहर निकलते समय छाता और रेनकोट जरूर निकाल कर रखिएगा, क्योंकि मौसम का मजा लेना है और मौसम की नज़ाकत को भी समझना है। एक छोटी सी तैयारी जो है वो पूरे दिन को हमें बेहतर बना देती है। बाहर निकलने से पहले ये सारी चीज़ें इंतज़ाम तो करना ही है, लेकिन ट्रैफिक नियम का भी पालन करना है, उसका बेहद बेहद ख्याल रखना है आपको, क्योंकि आपका हमेशा कोई ना कोई इंतज़ार करता है और आपको प्यार करने वाले भी बहुत हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: और साहब आज के सिटी लाइट में बस इतना ही, और दिल्ली एनसीआर की हलचल, मौसम की बातें, ट्रैफिक अपडेट, बहुत सारी खबरें मैंने आपको इस प्रोग्राम में दी। लेकिन याद रखिए, शहर चाहे कितना भी तेज क्यों ना दौड़ जाए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए और उनका ख्याल रखिए। अपना तो आप रखते ही हैं, उनका ज़रूर रखिए ख्याल जो आपका ख्याल रखते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त, बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से संवाद। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने आज कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की

प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व है। उन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर अनहद सिंह को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला कैच द रेन अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बना। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मामले में 5 लोग गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मी निलंबित। चीन में तूफान नोल के कारण गांसु प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 10 लोगों की मौत। पाकिस्तान में वर्षा संबंधी दुर्घटनाओं में और 11 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 97 हुई। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच हरारे में जारी। और मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, संडे की इस खूबसूरत शाम में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं प्रणव और अगले एक घंटे तक आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना शो मैसेज मसाला मिक्स। संडे यानी हफ्ते का वो दिन जो पता ही नहीं कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। और कोई आज देर तक सोया होगा, किसी के घर में आज कुछ स्पेशल बना होगा, कोई परिवार के साथ बाहर घूम कर आया होगा, तो कोई बस पूरे दिन यही सोचता रहा होगा कि आज तो आराम ही आराम करना है। लेकिन देखते ही देखते शाम आ गई और अब अगले हफ्ते की आहट भी सुनाई देने लगी है। वैसे हर रविवार अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ कर तो जाता है, और कोई मुस्कुराहट छोड़ कर जाता है, या फिर कोई याद, या कोई एक छोटी सी खुशी, या फिर कोई ऐसा पल जिसे हम चाहते हैं कि थोड़ा और रुक जाए। बस आज की हमारी बातचीत भी ऐसी ही एक छोटी सी बात के इर्द गिर्द घूमेगी। एक ऐसी बात जिससे यकीन मानिए कि हम में से हर कोई जुड़ा हुआ है, हर कोई जुड़ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपका मन भी करेगा कि हमें एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए और अपने मन की बात कही जाए, आपके दिल में क्या है ये हमसे शेयर किया जाए। लेकिन वो बात है क्या ये अभी नहीं बताऊंगा, पहले सुनते हैं एक शानदार सा गाना और उसके बाद वापस आऊंगा लेकर शो मैसेज मसाला मिक्स।

एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं प्रणव। तिरंगे की खातिर जो हंसकर लहू बहा गए, वतन की राह में अमर इतिहास रचा गए। सलाम है उन वीरों को जिनसे रोशन है भारत, जो कारगिल की चोटियों पर विजय ध्वज लहरा गए। कारगिल विजय दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। भाई, हम लोग कभी प्रश्न अपना क्वेश्चन आज का टॉपिक भी डिस्कस नहीं कर पाते, और उससे पहले हमारे लिसनर्स अपनी हाजिरी लगा देते हैं। बस मेरा दिल गदगद हो जाता है क्योंकि हमारे साथ और भी लिसनर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से भी आ चुके हैं, हमारे साथ विजेंद्र गहलोत अंकोला महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हैं बिहार से जुड़ चुके हैं शिवम कुमार पटना बिहार से, और हमारे साथ हैं मोहम्मद इम्तियाज जहार कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली। तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज के मैसेज मसाला मिक्स में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, एक हर इंसान के लिए संडे का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे थे संडे की, है ना। तो किसी के लिए संडे का मतलब है देर तक सोना, और किसी के लिए परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, और किसी के लिए दोस्तों से मिलना, तो किसी के लिए बस बिना किसी जल्दी के एक कप गर्मा गर्म चाय। वैसे इसीलिए मैं आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, बल्कि आपको एक लाइन पूरी करनी है। क्या लाइन पूरी करनी है? कि भाई, संडे तब पूरा लगता है जब बस आगे की लाइन आपको खुद जोड़नी है। जैसे संडे तब पूरा लगता है जब शाम की चाय के साथ पकौड़े मिल जाएं, या फिर संडे तब पूरा लगता है जब दोपहर की नींद कोई ख़राब ना करे, या फिर संडे तब पूरा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंस ले, या फिर संडे तब पूरा लगता है जब रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुनने को मिल जाए। तो देर किस बात की, जल्दी से इसी लाइन को अपने अंदाज में पूरा करिए, जिसके बिना आपका संडे पूरा नहीं होता। अपना जवाब भेजिए, व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है 9868107070। इस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज टाइप करिए और फटाफट से भेज दीजिए। हम लगातार प्ले करते हैं आपके पसंदीदा गाने। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं प्रणव, रेनबो 102.6 पर।

0: कहीं मत जाइएगा, मैं बना रहूंगा आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स में प्रणव 102.6 पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
7: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
6: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
8: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
9: ठीक है,
8: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
7: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
6: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
10: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
6: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
7: व्हाट्सएप

0: कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे FM रेनबो मेरे यानी प्रणव के साथ। शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। तो मैसेज मसाला मिक्स में हमारे पास एक मैसेज आया है देहरादून से आलोक पंवार और मैंने लिखते हैं कि कारगिल के वीर शहीदों को शत शत नमन, जय हिंद जय भारत। और साथ में लिखते हैं कि संडे का मतलब है फंडे। बिल्कुल सही कहा आपने कि संडे का मतलब है फंडे, स्पेशली क्योंकि सबके लिए वीकेंड दो दिन का नहीं होता, कुछ लोगों के लिए वीकेंड एक दिन का भी होता है। और एक दिन का जब वीकेंड होता है तो हम उसमें अपनी पूरी जिंदगी जी लेना चाहते हैं और पूरा का पूरा फन, पूरा मज़ा हम उसी दिन लेना चाहते हैं। कुछ लोग आराम करके, कुछ अपने मन की चीज़ें खा पी कर, कुछ परिवार के साथ समय बिता कर। तो आपके लिए संडे का मतलब अगर फंडे है तो बिल्कुल इसको फंडे बनाए रखिए और मज़े करते रहिए। अगला मैसेज है जोया का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखती हैं, संडे पूरा लगता है जब सारे ऐश पूरी हो जाए। भाई ऐश की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, आपकी ऐश की डेफिनेशन क्या है? सोना, खाना पीना या फिर दोस्तों से मिलना, ज़रा ये भी बताइए। अगला मैसेज है गुड इवनिंग प्रणव सर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि सर हमारे लिए तो हर दिन सेम ही होता है, बस कभी कभी रेडियो पर अपनी पसंद के सॉन्ग सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बस यही है, कुछ खास नहीं होता संडे हमारा। आई एम अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से इन्होंने मैसेज भेजा है। बहुत बढ़िया, अगर आप रेनबो पर हमारे साथ बनी रहती हैं तो आपको पता है कि आपका दिन तो बेहतरीन जाता ही होगा क्योंकि रेनबो आपके लिए लेकर आता है चुनिंदा सॉन्ग्स और फुल एंटरटेनमेंट। अगला मैसेज है हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, मैसेज ही हमारे पास आया है। इन्होंने लिखा है कि कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मेरा संडे पूरा लगता है जब मेरे बच्चे रविवार को छुट्टी पर साथ होते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। वाह क्या बात है, आप बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं संडे को, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए समय निकालते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं ना तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई बच्चों को कोई समर कैंप ज्वाइन करा दिया जाए या बच्चे फिर से स्कूल जाना शुरू कर दें, क्योंकि घर में धमा चौकड़ी मचा कर रखते हैं और बच्चों को स्कूल भेजकर पेरेंट्स को थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना भी ज़रूरी है, संडे ऐसे एंजॉय करते रहिए। अभी वापस आते हैं।

अरे भाई हीर सैड है, लेकिन आप लोग सैड नहीं है क्योंकि आप लोग हैं मेरे साथ और शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां हम करते हैं ढेर सारी मस्ती मैसेज के थ्रू, लगातार बने रहते हैं टच में। तो अगला मैसेज हमारे पास आया है सरफराज आलम का, मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से लिखते हैं कि भाई संडे तब पूरा लगता है कि जब सुबह की पहली चाय के साथ रेडियो की मधुर आवाज़ कानों में घुल जाए, मन में नए विचार जन्म लें, कुछ शेर और कविताएं कागज़ पर उतर आएं, परिवार के साथ सुकून के पल मिलें, बेटी की मुस्कान दिल को खुश कर दे और दिन के अंत में एक ये एहसास हो कि आज सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिल और रूह दोनों को भी सुकून मिला। मेरे लिए ऐसा संडे ही सचमुच पूरा संडे होता है। भाई आपने अपने शब्दों में ना सबके दिल की बात कह दी, बड़े खूबसूरत शब्दों में आपने अपनी बात कही कि ऐसा संडे किसको नहीं चाहिए होता है। भाई अपने अपनों का साथ हो, हम साथ में बैठकर हंसें, मुस्कुराएं, खाएं, पिएं, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, क्योंकि बाकी दिन सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे पढ़ाई में और हम अपने काम में, और जो गृहिणियाँ होती हैं वो भी घर के कामों में बिजी रहती हैं, और जो हाउसवाइफ्स नहीं होती हैं, जो बाहर कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी तो संडे और भी ज़्यादा बिजी जाता है क्योंकि बच्चे भी संभालने होते हैं, घर परिवार संभालना होता है और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन संडे होता है जो हम सब के लिए फंडे होता है। पंकज अमरावती महाराज से मैसेज करते हैं, गुड इवनिंग, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, ओके। मेरा संडे जब पूरा लगता है जब मनपसंद इंसान से मुलाकात हो और कहीं घूमने जाने का मौका मिले, तब संडे पूरा हुआ ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। जब तक अपने अपनों से, अपने चाहते लोगों से मुलाकात ना हो जाए, तब तक छुट्टी का क्या ही मज़ा है। उनके साथ बैठी

ये अपने दिल की बातें कीजिए, इसी में तो फन है। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले बेड़ावन से लिखते हैं। बेड़ावन गांव से, संडे मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं है। मैं रोज पोहे जलेबी बनाकर ग्राहकों को खिलाता हूँ, उनका संडे बन जाता है, मेरा मन खुश हो जाता है। भाई क्या बात है, खुद खा पी कर तो सभी को खुशी मिलती है, लेकिन आपको दूसरों को खिलाने पिलाने में मज़ा आता है। भाई आप पोहा जलेबी खिलाते हैं, ऐसे ही दूसरों की सुबह स्वादिष्ट बनाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला मैसेज है सत्यजीत सरकार का, वेस्ट बंगाल से। ये लिखते हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे हिसाब से संडे मतलब रिलैक्स मूड, नो टेंशन, नो टारगेट, नो प्रेशर, बस रिलैक्स एंड रिलैक्स। क्या बात है जी, ऐसा लगता है कि आप कॉरपोरेट में कहीं काम करते हैं। टारगेट, भाई ऑफिस में तो सभी को टारगेट मिलते हैं, वैसे तो स्कूल लाइफ में भी आजकल टारगेट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के पास होते हैं, थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर से जब भी निजात मिले तब ले लेनी चाहिए और इन्जॉय कर लेना चाहिए।

0: तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो भाई। ऐसा तो सच में है ना, आप सब लोग मेरे सखा ही तो, और हम साथ में मस्ती कर रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूँ प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर, और मैसेजेस लगातार आ रहे हैं बहुत शानदार, क्योंकि आज का टॉपिक भी है कुछ मज़ेदार। टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने आपको एक लाइन पूरी करने के लिए कहा था कि भाई मेरा संडे तब पूरा होता है जब, आगे आपको बताना है। तो अगला मैसेज हमारे पास आया है रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से, लिखते हैं कि मेरा संडे तब पूरा होता है जब मैं दूरदर्शन पर रंगोली देख लेता हूँ और एफएम रेनबो पर मधुर गाने सुन लेता हूँ। भाई बहुत अच्छा प्लान है, आप गाने सुनकर अपना संडे मज़ेदार बनाते हैं। म्यूज़िक हमेशा हमारे साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक हमारा मूड कैसा भी हो, म्यूज़िक हमें हमेशा ताकत देता है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, लिखते हैं प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज़ हो। संडे स्पेशल हो जाता है जब दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिलता है और घूमने को जाते हैं। भाई सही बात है, अगर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय निकाल लिया जाए, क्योंकि मिलते मिलाते रहना चाहिए। आपको पता नहीं, ज़िंदगी तो बहुत तेज़ी से गुजर जाती है और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितने दिनों से, कितने महीनों से, या कितने सालों से अपने खास दोस्तों से मिले नहीं। और अगर आप हर संडे को ऐसा कर पाते हैं तो बहुत खूब, यूं ही दोस्तों का साथ निभाते रहिए, लाइफ के मज़े उड़ाते रहिए। और अगला मैसेज हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से, लिखते हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और हमारा संडे तब पूरा होता है जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है। बिजी रहो इजी रहो, भाई क्या बात है, क्या फंडा है आपका संडे मनाने का, बिजी रहो और इजी रहो। भाई आप इजीली अपने घर की सफाई करते रहे, घर आपका चमचमाता रहेगा और आप लोग एक दूसरे को खुश रखेंगे और साफ सफाई रखेंगे, तो वैसी अच्छी बात है कि बीमारियां कम फैलती हैं, साफ सफाई रखनी चाहिए। अगला मैसेज है मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, लिखते हैं कि वैसे तो वीकली ऑफ मंडे को होता है, मगर मंडे या संडे तब पूरा होता है जब शाम के वक्त अपने खुद के किचन में जाकर अपने सभी का मनपसंद खाना मैं खुद बनाता हूँ, जो दिन के खाने से ही शुरू हो जाता है और सभी घर के लोग खुश हो जाते हैं। भाई क्या बात है कि आपके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना सब तक पहुंच जाता है और सब खुश हो जाते हैं, सबका संडे भी खुशगवार हो जाता है। तो ऐसी खुशियां आप लुटाते रहिए और प्यार बरसाते रहिए, संडे तो खुद ब खुद हसीन हो जाएगा। राधे राधे सर जी, लिखते हैं कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत याद आती है, नमन है इंडियन आर्मी को मेरा। ईश्वर चंद प्रजापति जी का मैसेज आया है, हम सभी का नमन है इंडियन आर्मी को आज कारगिल विजय दिवस पर। बने रहिए मेरे साथ, लौटूंगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूं प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर। मैसेजेस आपके आ रहे हैं शानदार आज के टॉपिक पर, जिसमें आप बता रहे हैं कि आपके लिए संडे का मतलब क्या होता है। अगला मैसेज हमारे पास आया निम्बाराम गोदारा बिरलोक नागौर राजस्थान से। लिखते हैं कि हमारा संडे अच्छी तरह से गुजर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है और फसलें बच गई हैं, लहरा रही हैं। भाई क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वो लहराती बाजरे की फसल, बारिश और उसमें घूमना कितना रोमांटिक है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अरे भाई कोशिश कीजिए शब्दों में बयां करने की, शायद आप शायर बन जाएं। अगला मैसेज हमारे पास है फारूक अली खान, फैजी फरहान, फराज, फरहीन, फरहान और फारिया ताहिरा का। हम भी आपको सुन रहे हैं, गुन्नौर यूपी से लिखते हैं। भाई सुन तो रहे हैं, तो फिर ज़रा आप ये भी बताइए कि आपके लिए संडे का मतलब क्या है।

मोनिशा इद्रिस उत्तर प्रदेश बिलासपुर से लिखती है, संडे को फैमिली के साथ बैठकर बात करते हैं, चाय पीते हैं और कुछ खाना हो तो लगता है संडे है। भाई क्या बात है, फैमिली के साथ बैठकर जब आप समय बिताते हैं ना तब महसूस होता है, क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे साथ एंजॉय करने के लिए, तब वाकई में लगने लगता है, तब आपको कैलेंडर या घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि आज संडे है तभी तो सब साथ में बैठे हैं। अगला मैसेज हमारे पास सुखलाल बाला फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल से, गुड इवनिंग लिखते हैं लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि इनके लिए संडे का मतलब क्या है। अगला मैसेज हमारे पास है भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं कि हाउ आर यू ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट फॉर मी संडे इज कम्प्लीट वेन आई नॉट ओनली गेट अ गुड रेस्ट बट ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले माई पियानो एंड सिंग सॉन्ग्स, दीज आर माई फेवरेट हॉबीज एंड दीज थिंग्स कीप मी फुली चार्ज्ड। भाई क्या बात है भुवनेश, अगर आप खुद को बिजी रखते हैं संडे को और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी हमें ऐसा फील कराती है कि जैसे हमने ध्यान किया हो। तो वो सुकून जो मिलता है, जो ध्यान से जो सुकून मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। हफ्ते भर की थकान के बाद अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो इट्स अमेजिंग, इसको जारी रखिए। मैसेज है भारत माता की जय, सरहदों पर वीर सैनिक दुश्मनों के सिर कुचलते जाएंगे, मेरे प्यारे तिरंगे हर तरफ लहराएंगे, हर तरफ लहराएंगे। प्रेमचंद प्रेमी का मैसेज है ये, और लिखते हैं कि टॉपिक पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना संडे विशेष रहता है, क्योंकि मैं दुकानदार आदमी हूँ, समय नहीं मिल पाता, लेकिन संडे में हमारी प्यारी पोती लावण्य और भार्गवी शर्मा को यदि पूरा एक घंटा कहीं घुमाने ना ले जाऊँ तो अपना संडे अधूरा लगता है। उनके साथ एक घंटा घूमकर उन्हें चॉकलेट आदि दिला लाता हूँ तब मेरा संडे बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, पोते पोती को दादा दादी का प्यार मिल जाए तो इससे अच्छी तो परिवार के लिए और कोई बात हो नहीं सकती। उस दौरान पेरेंट्स को भी सुकून मिल जाता है कि चलो ठीक है, बच्चे घूम रहे हैं, खुश हैं, सुरक्षित हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये संडे मनाने का तरीका आपका मुझे भी बहुत पसंद आया। अगला मैसेज है हमारे पास राजेश कुमार का, और आशा जी ओके नो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, अच्छा लिखा है, इन्होंने लिखा है राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से। इन्होंने मैसेज किया है कि घर के छोटे छोटे काम जो पूरे हफ्ते नहीं कर सकते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स का नाम रविवार है। भाई आपके लिए रविवार का नाम बिल्कुल सही है, जो पूरे हफ्ते काम नहीं हो पाते और थोड़ा बहुत आपने काम निपटा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, यही रविवार है। बहुत ही सिंपल तरीका है रविवार मनाने का। अगला मैसेज है हमारे पास, नमस्कार मैं एकदम अच्छा हूँ, मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आ रहे हैं प्रोग्राम में, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज़रा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका संडे कब तक पूरा नहीं होता। भाई आपने नाम बहुत सारे लिखे हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये सभी लोग ज़रा मुझे बताएं कि उनका संडे कब तक पूरा नहीं होता है। और मेरा तो भाई तब तक नहीं होता कि जब तक मैं आप लोगों को बेहतरीन म्यूजिक ना सुना दूं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ये है आका

जो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात चल रही थी। हम बात कर रहे थे कि संडे आपका कब तक पूरा नहीं होता है। मैं हूँ प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर। और आप सबके जो मैसेजेस की भरमार आज यहाँ पर आई है ना, उसमें मज़ा आ गया। मुझे भी सबके संडे प्रोग्राम्स पता लग गए और कुछ आइडियाज़ मिल गए कि मुझे अपना संडे कैसे बिताना चाहिए। मनीष गौर लिखते हैं जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से कि सर मुझे तो संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, तो मेरा सिलाई का कामकाज है और मैं तो छुट्टी के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ पर मुझे छुट्टी मिलती ही नहीं। गाने मेरी पसंद के बज रहे हैं। चलिए, आपके लिए कुछ तो अच्छी बात है, संडे को आपकी पसंद के गाने बज रहे हैं, इन्जॉय करते रहिए। अगला मैसेज है, मैं तो

संडे की शाम पत्नी और बच्चों के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर हम लोग कर लेते हैं, ताकि पत्नी को खाना बनाने से छुट्टी हो जाती है और बच्चों को घूमने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया। रवि जोशी मेरठ से ये मैसेज करते हैं। बहुत ही शानदार आप लोगों ने जो साथ दिया, जो मैसेज मसाला मिक्स को बेहतर बनाने की कोशिश की, उसमें मज़ा ही आ गया। और जिनके मैसेजेस आज प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, उनके मैसेज मैं पढ़ूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले हैं। और आप सबके सजेशन के हिसाब से मैं भी कुछ ऐसा ही किया करूंगा कि मेरा संडे थोड़ा प्रोडक्टिव बने, थोड़ा मज़ेदार बने, है ना। और प्रोडक्टिव नॉट इन द सेंस कि जैसे हम अपने ऑफिस में प्रोडक्टिव बनाते हैं, प्रोडक्टिव अपने परिवार के लिए बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ समय बिताते हैं, राइट। तो ऐसे ही बने रहिए रेनबो के साथ और सुनते रहिए अपने पसंदीदा गाने, क्योंकि शालू स्टूडियो में आ चुकी है वेस्टर्न म्यूजिक लेकर। बाय, टेक केयर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: And now, a little break. This, of course, continues to be the live wire.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:33 और 10 सेकेंड। मैं हूं प्रणव आपके साथ म्यूजिक मस्ती लेकर।

0: याद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।

0: शोधकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
4: वेल, तस्वीर हो गया हूं, तस्वीर देखकर हैरान है दिल यार की तकदीर देखकर। वेल, तकदीर बनाने के लिए आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पिक अपलोड करते होंगे और लाइक्स कमेंट्स ये किसे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि व्यक्ति को टैलेंटेड होना चाहिए। स्मार्ट तो आपका फोन भी है, लेकिन वो स्मार्टफोन कहीं किसी और को ओवर स्मार्ट तो नहीं बना रहा? क्या कोई और तो नहीं है जो आपके लाइफ में दखल दे रहा है? वेल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, आपकी खिदमत में हाजिर है द आकाशवाणी पॉडकास्ट। और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहूंगा कि बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। प्रेजिडेंट ऑफ साइबर लॉज नेट एंड एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पेशलाइज्ड इन फील्ड ऑफ साइबर लॉ, साइबर क्राइम लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आज आकाशवाणी के पॉडकास्ट प्रोग्राम पर आकर।
4: देखिए, शुरुआत जो है लाइटर नोट पर ही हम करेंगे। अभी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और शो शुरू होने से पहले ना हम खाने पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इन्विटेशन होते हैं, इन्विटेशन कार्ड की तरह आते हैं और आप उसके थ्रू भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये 4 डिजिट का जो OTP है वो किस तरीके से आपके अकाउंट नंबर्स को फेरबदल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपसे, कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट?
5: देखिए, आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं कि रोज नए पैंतरे, नए तरीके, नए मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करें ताकि लोगों को टारगेट कर सकें, शिकार बना सकें। और अब वो उनके लिए तो और खुशखबरी हो गई है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लोग नए नए प्रकार के प्रकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को टारगेट करना है, और लोग चाहे कुछ भी हो जाएं, कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर डरे होते हैं। इनफैक्ट COVID-19 ने सदैव के लिए हमारे जीवन में 2 चीजों का छाप छोड़ दिया, एक है डर और दूसरा है पैनिक। कोविड के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं, और इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। पहले डराते हैं, हमारा विश्वास लेते हैं और फिर हमें विवश करते हैं कि हम पैसे दें। तो डिजिटल अरेस्ट उसी का एक नया स्वरूप है, साइबर क्राइम का एक नया अवतार है। देखिए, साइबर क्राइम का एक अगर आप यात्रा देखें तो हर बदलते दौर के साथ साइबर क्राइम ने अपनी शक्ल को, अपनी मैनिफेस्टेशन को बदला है। आज का जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है वो साइबर अरेस्ट है या डिजिटल अरेस्ट है। उसका कारण बहुत क्लियर है, आज लोगों को अगर आप विश्वास में ले लेते हैं तो भारत में एक प्रॉब्लम है, हम लोग विश्वासी हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिना सोचे समझे कि भाई आज तो हैलुसिनेशन का जमाना है, आज चारों ओर डीप फेक है, गलत इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स रूमर्स हैं, और अगर हम अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो संभावित तौर पर हम फंसेंगे। साइबर क्रिमिनल्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें डिजिटल अरेस्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ कोई है ही नहीं।
4: अच्छा,
5: कानून कहता है कि साहब अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, तो आपके घर आएगी, आपके दफ्तर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, सर्च वारंट देगी, अरेस्ट वारंट देगी, अरेस्ट करेगी। लेकिन हुआ क्या कि 2023 में भारत ने अपने 3 क्रिमिनल लॉज को बदला, जिनमें भारतीय न्याय संहिता आ गई और BNSS आ गए, तो उसके तहत साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया नैरेटिव प्रारंभ किया 2024 में कि साहब इंडिया ने तो अब नए साइबर क्राइम्स और साइबर रिलेटेड लॉज बनाए हैं, तो अब ये लॉ कहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और लोग इस पर विश्वास करने लग गए, और यही रीज़न है कि लोग कहीं ना कहीं साइबर अरेस्ट की या डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते जाएं। अभी 3 महीने पहले मेरे पास केस आया है, दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में एक 76 साल की महिला रहती हैं और अकेली रहती हैं, 5 उनके नौकर हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं, और उन्हें फ़ोन आता है कि साहब आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। वो कहती है भाई मैंने तो इतना सब सुन लिया है और दिल्ली पुलिस के इतने संदेश सुन लिए हैं, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, मैं आपको नहीं मानती। वो कहते हैं अच्छी बात, फिर कहते हैं कि साहब आप इस फार्म हाउस में रहते हैं? वो कहती हैं हाँ। कहते हैं हमने आपके चारों फार्म हाउस के ओर अपने शार्प शूटर्स लगा रखे हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको भून डालेंगे। जब उन्हें
4: लोकेशन बताते हैं,
5: लोकेशन बताते हैं ये आपका फार्म हाउस है, और बताते हैं कि साहब हमने फार्म हाउस के आसपास अपने शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे शार्प शूटर्स आपको भून देंगे। जब उन्हें लगता है कि मेरी जान ही जाने वाली है, तब वो कहते हैं भैया जो पैसे लेना लो। पहले शुरुआत में 15,000 UPI के थ्रू पेमेंट होती है, फिर वो कहते हैं बैंक से पेमेंट करो, फिर उन्हें पता है कि आपके इतनी FD है, तो करीबन 3 दिन में वो 3,74,00,000 रुपए दे चुकी होती हैं। जब उन्हें लगता है कि मेरे पास अब पैसे रहे नहीं, तब वो कहती हैं हमने मुझे मारना मार दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुलिस के पास चली, तब वो आके रिपोर्ट करती हैं। तो आज जब इतने बड़े लेवल पर इतने एजुकेटेड लोग भी आज डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, तो हम सबको सावधान होना पड़ेगा क्योंकि हम कल शिकार हो सकते हैं।
4: देखिए आपने डर की बात कही थी
5: जी,
4: लेकिन डर आना स्वाभाविक भी है, बिकॉज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना कि ये मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो आवाज़ बदल के भी आपके सगे संबंधी की आवाज़ में आपसे बात कर सकते हैं, और वो पैनिक होना किसी का भी स्वाभाविक है, बिकॉज आपका घर में आपका कोई बेटा हो, कोई पिता हो, और जब उसकी आवाज़ में कॉल आएगी तो लोग कैसे नहीं डरेंगे।
5: यही तो प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हमारे परिवारजन सेफ नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। अगली बार कोई कॉल आए, हम सबको अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट।

ने कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी डर हो, कोई भी शक शुबा हो, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं पहले अपने परिवारजन को कॉल करूंगा या करूंगी कि भाई तुम ठीक तो हो, मुझे मैसेज आया है। अगर उनसे बात हो गई और वो खतरे में है तब मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन अधिकांश लोग जो अपने ब्रह्मास्त्र की जो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं करते तो उस भंवर

0: टारगेट करेंगे। तीसरा, मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने परिवारजनों को कॉल करूंगी, मैं संतुष्ट हूं, सब बढ़िया ठीक ठाक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और उस नंबर को ब्लॉक करूंगी। और साथ ही साथ अब अगली बार ये भी एक प्रण लूंगी कि भाई अब ऐसा कोई कॉल होगा तो मैंने पहले दो सेकंड के बाद कॉल को रखना ही नहीं है। कॉल को डिस्कनेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई लोग बुरे मानते हैं, मानने दें। मेरा बुनियादी जो मेरी जिम्मेवारी है वो मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपने परिवारजन को प्रोटेक्ट करना है।
1: देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल सर हम बात कर रहे हैं अभी बैठकर, कोई किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी खरीदना है, फोन लेना हो, टी शर्ट लेनी हो, अगर आपका फोन दूर भी रखा हुआ है थोड़ी देर के बाद आपको वो सारी चीजें दिखाने लगेगा, मतलब आपका डेटा इस तरीके से भी सेफ नहीं है। और बहुत बड़े बड़े को फाउंडर्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो जब बैठते हैं काम करने के लिए, चाहे वीडियो कैमरा ऑन हो ना हो, वो टेपिंग करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, पहले के ज़माने में आप ताला लगा कर रखते थे अपने घरों में, लेकिन आज चाबी सामने वाले को खुद आप दे रहे हैं, अलाओ अलाओ एंड अलाओ।
0: समस्या ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा फोन हमारा जीवन संगनी है, कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। कभी उम्मीद करिए 15-20-30 साल पहले जब ये फोन नहीं हुआ करते थे, क्या जीवन नहीं चला करता था? जीवन जब भी अच्छा चला करता था और संतुष्ट रूप से चला करता था। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है कि फोन सिक्योर है, फोन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मुझे लगता है कि फोन से ज्यादा अनसिक्योर डिवाइस आज की तारीख में नहीं है। दूसरा, हम फोन को साधु संत क्यों मानते हैं? ये फोन जो है केवल फोन नहीं है, खासतौर पर स्मार्टफोन, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुनता है, आपकी इजाजत के बगैर ये आपकी बातें, आपके डेटा को बाहर भेजता है, उस डेटा का विश्लेषण कर कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको टारगेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे कल सुबह बॉम्बे जाना है, बस ये बात करूंगा, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, साहब बॉम्बे की चीप चीयर टिकट यहाँ है, बॉम्बे के अच्छे होटल यहाँ पर है। ये तब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली सुन रहा है। तो अगर आप अपनी निजता का संरक्षण करना चाहते हैं तो मेरा सबने निवेदन है कि दो फोन रखने का प्रयास करें, एक नॉर्मल फोन और एक फीचर फोन। जो बिल्कुल 1500-2000 वाला फोन होता है वो सिर्फ फोन का काम करता है, वो लिसनिंग डिवाइस नहीं होती, वो फोन जो है आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है।
1: देखिए डिजिटल हो चुके हैं हम, और ये होता है कि आप लॉ लेकर आए इंडिया में या फिर जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडर 15 हैं तो आप अलाउ नहीं है सोशल मीडिया पर आने के लिए, लेकिन इंडिया में ये डेटा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर वो दिखाना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है जानबूझकर और लोगों को। तो इसके लिए कोई लॉ है?
0: आज की तारीख में भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित करके इम्प्लीमेंट किया है कि साहब बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं मिलेगा, खासतौर पर जब वो 15 साल के ना हो। हमारे यहाँ कानून कहता है कि साहब जब तक आप 18 के नहीं हुए तब आपको बच्चा माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानून भारतवर्ष में नहीं है जो बच्चों को बार करता है, बैन करता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्सेस ना करें। इनफैक्ट ये बैन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज तो हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्रों में डिवाइसेस देने शुरू हो गई। कुछ साल पहले हमारे एक परिचित के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, और वो बच्ची जब 2 महीने की थी तो उसके माँ बाप ने उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? एक आईपैड मिनी कनेक्टेड टू द इंटरनेट।
1: ओके।
0: अब जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में पहला शब्द नहीं बोला उसने आपने उसको आईपैड दे दिया। जब वो बच्ची 6 महीने की हुई वो आईपैड को प्ले करने के लिए के संदर्भ में अपने पेरेंट्स से ज्यादा आगे निकल चुकी थी। और जब इस तरह की हम चीजें कर रहे हैं वो दूसरी बात है कि बच्ची का नेगेटिव इतना इम्पैक्ट हुआ उसकी माइंड पर कि उसने पहला शब्द जो उसे 6-7-8 महीने में बोलना था वो उसने 19वें महीने में बोला।
1: स्पीच डिले
0: हो गई। बट द फैक्ट इज कि हम तो आज बिजी है ना, हम कहते हैं भाई बच्चों को चुप कराने के लिए फोन दे दो, फोन देखता रहेगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है। मुझे लगता है इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कोई काम हम कर ही नहीं सकते। अगर आपने अपने भविष्य में अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है तो उसे अनावश्यक तरीके से इंटरनेट के एक्सपोजर से बचाना है। ठीक है, इंटरनेट जरूरी है, लेकिन बच्चों को बताना भी तो जरूरी है कि सोशल मीडिया केवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्सी पिक्चर नहीं है। सोशल मीडिया पर हर प्रकार के पीडोफील्स मौजूद हैं, साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, उनको आजीवन के लिए उनको आघात करा सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को एम्पावर करना जरूरी है, लेकिन कानून के माध्यम से नहीं, क्योंकि कानून का तो उल्लंघन रोज होगा, बेटर यह है कि माँ बाप की जिम्मेवारी है बच्चों को दोस्त होने के तौर पर बताएं कि साहब ये खतरे हैं, आप बच के रहिए। क्यों? क्योंकि अगर

0: फंस गए तो हो सकता है आपका आने वाला जीवन एक सदैव प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट हो जाएगा।
1: देखिए कहा जाता है कि देखिए गलतियों की माफी हो सकती है, गलत फहमियों की नहीं। अगर आप गलत फहमी का शिकार हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फील्ड में धुरंधर हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलतियां उनसे हो जाती है, डिजिटल अरेस्ट वो हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है, अब उनका पहला रिएक्शन क्या रहना चाहिए? चलो रिएक्शन तो हमें पता है क्या होना चाहिए, लेकिन पहला मूव क्या होना चाहिए?
0: पहला मूव आपका होना चाहिए कि साहब हो गई गलती, हो गई, जहां से जागूं वहीं से सवेरा समझूं। तो इसलिए तुरंत शोर मचाना है, चुप नहीं बैठना है। कहां शोर मचाना है? आपने इसको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। आपके पास तुरंत सरकार ने दो विशिष्ट विकल्प दे रखे हैं। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और तुरंत कॉल कर लीजिए, क्योंकि तुरंत कॉल करने पर अगर आपका कॉल लग गया और वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में देखेंगे, अगर पैसा है जहां पर भी बैंकिंग चैनल में, उसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देंगे तो हो सकता है 1-1.5 महीने में पैसा वापस आ जाएगा। तो तुरंत आपने कॉल करना है। सेकंड, आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर, यहां पर जाकर रिपोर्ट करिए और बताइए गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट बता लीजिए जितनी जल्दी। पहले हम कहा करते थे साहब गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है, आज के तारीख में हम कहते हैं कि साहब आपका गोल्डन आवर पहले 7 मिनट है। अच्छा। अगर आपने पहले 7 मिनट में इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने आपका पैसा ब्लॉक कर दिया, तब आपका पैसा बच जाएगा।
1: ये अगर आप मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकता,
0: कोई नहीं छीन सकता, और अगर आपने 7 मिनट वेस्ट कर दिए तो पैसा सदैव चले जाने वाला है, और एक बार पैसा बैंक अकाउंट से चला गया तो वापस लगभग कभी भी आने वाला नहीं है।
1: बिल्कुल, पैसा तो ऐसी चीज है, जो चला गया तो चला गया। अब देखिए 90% क्या कहूंगा कि 99% केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है, जामतारा कह लीजिए या अदर वेब सीरीज, के जो आपके साथ फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है ना, अगर दिल्ली में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, कहीं गांव देहात में बैठकर पूरी प्लानिंग के तहत आपके साथ ये सारी चीजें जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे पकड़ा जाएगा, किस तरीके से रिकवर किया जाएगा?
0: देखिए ऐसे को चुनौती ये है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बंदा कहीं पर भी बैठा हुआ किसी और कंप्यूटर सिस्टम में, किसी और शहर में, किसी और राष्ट्र में जाकर टारगेट कर सकता है और पैसे से आपको वंचित करा सकता है। तो अभी प्रॉब्लम यह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ नहीं है, ना ही कोई साइबर लॉ ट्रीटी मौजूद है, लेकिन आप क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के कानून आप पर लागू हैं। भारत का अपना विशिष्ट साइबर लॉ है, जिसे हम बोलते हैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000। इस कानून का संशोधन हमने 2008 में भी कर रखा है, और अब तो भारतीय सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सारे नए साइबर क्राइम्स के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम ज्यूरिसडिक्शन की है, बट हम अकेले नहीं है, सारी दुनिया की भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी हमें तो काम करना है, हमें साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट करना है। वो टारगेट तब करेंगे जब हम उन्हें पहचान पाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पर कार्रवाई कर पाएंगे। आज की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून नहीं है, दूसरा डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स नहीं है। आपका नॉर्मल साइबर क्राइम वाला मैटर भी नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, तो अगर आपके साइबर क्राइम वाले मैटर को फैसला आने में 7-8 साल लग जाएंगे, तो लोगों का जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की आवश्यकता है, डेडिकेटेड साइबर मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है हर इलाके में, ताकि हर प्रकार का साइबर मैटर केवल उनके पास जाए, उन्हें तुरंत पावर्स दी जाए कि तुरंत पैसा आप ब्लॉक कर सके। देखिए आज जब मेरे यहां से पैसा जाता है तो मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि साहब मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, बंदा पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए मुझे उससे लेना देना नहीं, आप उसे जेल भेजे ना जेल भेजे मुझे उससे भी लेना देना नहीं, मेरा पैसा मुझे दे दें। तो मुझे लगता है आज के सिस्टम में एक खामी है, अगर हम ऐसे प्रावधान ला सकें जहां पर लोगों के पैसे को वापस दिलवा सकें जल्दी तौर पर, वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा एक इंपॉर्टेंट विकल्प होगा। दूसरा है कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेवारियों को और परिभाषित करें, वो ये ना कहें साहब मुझे तो कुछ नहीं पता, भाई आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ है, आप बैंक हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ, आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता, और आप कस्टमर को कैसे विवश कर सकते हैं, भाई आप साबित दिखाओ, करके दिखाओ भाई मेरे यहाँ मिसयूज हुआ है, मैं विक्टिम बन गया हूँ, अब तो तुरंत आप मेरी बात मानिए, पैसा पैसा जो ब्लॉक करिए। लेकिन आजकल बैंक्स भी जो है आपकी बात नहीं सुनते।
1: कई केसेस में ऐसा हुआ है कि आप एक व्यक्ति थे, उनके अकाउंट में कहीं से 5-10 हज़ार रुपए आए, अब वो इसकी कंप्लेन करने के लिए जागरूक नागरिक की तरह बैंक में गए और बताने के लिए कि देखिए मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। जब वो बैंक में खड़े हुए थे तभी उनके अकाउंट से और भी पैसे उड़ने शुरू हो गए और फिर वो इंस्टेंट एक्शन आप ले नहीं पाते, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है।
0: मुझे लगता है अब हमें समझना होगा कि साइबर क्राइम जिंदगी का डेली का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है
1: जी,
0: तो इसलिए घबराना नहीं है। मैं मानता हूं आज केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में पैनिक नहीं करना, जब पता लग जाए शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है और जितनी जल्दी रिपोर्ट करना है। लोग क्या कहेंगे इस थॉट प्रोसेस को भूल जाइए, आज अधिकांश लोग हैं साइबर क्राइम के शिकार बनते जा रहे हैं। तो जितनी आप जल्दी एक्शन लेंगे, प्रेफरेबली पहले 7 मिनटों में एक्शन लेंगे, तो संभावित तौर पर आपका पैसा बचने की पूरी उम्मीद है। जितना आपने डिले कर दिया उतना समय आपने साइबर क्रिमिनल को दे दिया। मुझे लगता है मैसेज जो है ना दाना बहुत जरूरी है, तो लोगों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दिशा में।
1: देखिए मास्टरमाइंड हो गए हैं आजकल हर कोई मास्टरमाइंड वाली जो अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल कल ही ना मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और मेरे जो फोन में था वो कॉन्टेक्ट एड ऑन था भी नहीं, मतलब उसके बाद मुझे आता है मैसेज कि ये रहा चालान और हम दोनों का चालान हो गया, वो एपीके फाइल थी। आपके सामने कोई ऐसा केस आया?
0: आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने
1: आए, जानना चाहेंगे बिल्कुल।
0: और बहुत सारे केसेस को मैंने डील किया है। ऑफ लेट एक ट्रेंड आया है जिसे बोलते हैं व्हाट्सएप वेडिंग कार्ड फ्रॉड। आजकल लोग शादियों के कार्ड तो भेजते नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अब आप अंधाधुंध होकर उस फाइल को खोल देते हैं, द मोमेंट आप खोलेंगे उसके अंदर एपीआई फाइल होती है, ऑटोमेटिकली वो एक मलिशियस कोड आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फोन पर रिलीज कर देती है। और वो इस तरीके से होता है कि आपका सारा डेटा उठा लेते हैं, उठा के बाहर भेज देते हैं और आपके पूरे फोन को ब्लॉक कर देते हैं। तो पता लगा आपका कॉन्टैक्ट्स भी गए,
1: आपका फोन कर भी
0: कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज इस जल्दी में मत रहिए कि साहब ये इसके वेडिंग कार्ड आया है। किसी भी वेडिंग कार्ड को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ना खोलिए, हो सकता है उसके अंदर मलिशियस कोड हो सकता है। दूसरी बात, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं कि आपने सिर्फ एक लिंक को क्लिक किया,
1: ठीक है,
0: लेजिटिमेट लिंक है, क्लिक करते ही आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया। यहां तक कि फोन का जो कैमरा है और फोन का जो माइक है वो उन्होंने हाईजैक कर लिया और पता लगा आपको कुछ भी नहीं लगा
1: और वो जो बातें हो रही हैं वो भी उन्हें सुनाई दे रही
0: हैं, कॉन्स्टेंटली चारों ओर सुनाई दे रही हैं। मेरे पास एक बहुत अजीब केस आया, ये एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल का केस है, 11वीं क्लास का बच्चा है,
1: ठीक है।
0: उसको टीचर ने एक दिन झाड़ दिया कि उसका होमवर्क सही नहीं था, तो उसने कहा चलो मैं सबक सिखाता हूँ। वो जाता है नेहरू प्लेस, वहां से कोई डिवाइस कोई प्रोग्राम लेकर आता है। अगली बार जब टीचर आती है और टीचर की एक खास बात थी कि आके अपना पर्स जो है टेबल पर रखती है और फिर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें लिखने शुरू करती है, तो टीचर ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें लिख रही है, ये लड़का जाता है और टीचर के फोन पर एक छोटी सी कुछ चीज़ डाल के आ जाता है,
1: ओके
0: और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। 15 दिन बाद एक 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज होती है, उसने क्या किया, एक छोटी सी डिवाइस उस टीचर के पर्स में डाल दी जो 2400 घंटे सिर्फ जो चीज बोली जा रही थी उसको सुन रहा था और वो डिवाइस ये इंफॉर्मेशन वापस बाहर भेज रहा था। तो इमेजिन करिए, आप अपना पर्स अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाते हैं, बेडरूम में भी ले जाते हैं, तो जितनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टीचर ने किसी जिसके साथ
1: कर, चाहे आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हो,
0: ना कर रहे, आपको पता ही नहीं है, पता लगा आपके फोन आपके जो पर्स के अंदर ये डिवाइस बैठा हुआ है, आपको पता नहीं, 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है और फिर उसका दुरुपयोग करके उस इंटरनेट पर डाला जा रहा है और उसके आधार पर उसको कट पेस्ट किया गया और उसको जानबूझ के एक डीप फेक बनाया गया और फिर ये मैसेज फैलाया गया पूरे पूरे कंप्यूटर इस स्कूल में कि साहब इस टीचर का फला व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है।
1: ओहो, तो देखिए मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो गई।
0: मुझे लगता है कि आज जो है ना आपको गुस्सा कम खाना चाहिए, दूसरा बच्चों को डांटना कम चाहिए,
1: खाने की बहुत सारी चीजें हैं,
0: गुस्सा ना खाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता, किसी ने आपसे पंगा ले लिया, आपके यहाँ कुछ डिवाइस डाल दी। और एक और आजकल जो नया केस आ गया है वो ये है कि साहब आप कहीं खड़े हैं, कोई बंदा आता है, बंदी आती है, मेरा ना फोन गुम हो गया, मुझे दीजिए, मुझे
1: कॉल करने दीजिए। बस तो अमूमन होता है, हर किसी के साथ होता है,
0: और हम लोग दे देते हैं। पता लगता है वो कुछ नहीं, कॉल नहीं करती, वो ये कोड डाल देती है, विद द रिजल्ट आपके सारे कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और सारे आपके मैसेज दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, और उसके माध्यम से वो आपके सारे अकाउंट्स को पूरी तरीके से हैक करके मिस यूज कर लेते हैं।
1: या ये भी होता है, फलाना कंपनी से हैं सर, सर्वे कर रहे हैं, फोर डिजिट, ये फोर डिजिट जो है ये बहुत सारे बड़ी डिजिट को आपके अकाउंट से गायब कर देता है, तो इस चक्कर में ना रहिए।

0: वेल, ये सारे केसेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रिकॉशन। सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो आपको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, डिसअलाउ आप कर नहीं सकते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जरूरत भी हो गई है, उससे
1: देखिए,
0: कैसे बचेंगे?
1: मैं आपको ये तो कह नहीं रहा हूँ कि आप हिमालय चले जाइए और संन्यास ले लीजिए। आपको इसी दुनिया में रहना है और इसी इंटरनेट का साथ काम करना है, लेकिन सतर्कता, सावधानी के साथ आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि आप जो चीज़ सुन, देख या पढ़ रहे हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करिए जब तक कि आप उसकी स्वयं पुष्टि ना कर गए हों। दूसरी, आप किसी भी कॉल को आप फॉर ग्रांटेड, फॉर फेस वैल्यू पर ना ले लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, अपने फोन को कमरे से बाहर रखिए। कमरे से बाहर नहीं रख सकते तो अपने जहां आपकी लोकेशन है वहां से 12 फीट की दूरी पर रखिए ताकि आपकी आवाज, आपकी इंफॉर्मेशन जो है फोन ना उठा सके। चौथी महत्वपूर्ण बात,
0: 12 फीट सर, 1 फीट दूर नहीं रख पाते हैं हम
1: तो 12 फीट की बात कर रहे हैं ताकि भाई वो आपका सिग्नल कनेक्ट ना कर सके। चौथी बात, हम लोग ना आज इंडिया में दो रेवोल्यूशन को देख रहे हैं, ये दोनों ही क्रांतियां चल रही हैं। पहली है भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। आज सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेट पर हो, AI पर हो। कृपया इस भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा ना बनिए, हर चीज हर आदमी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, एक और महत्वपूर्ण जो क्रांति चल रही है उसे बोलता हूं ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। आज भारत में हर आदमी रिकॉर्ड करने की फिराक में है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है पता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद भूल रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग में रख कहां रहा हूं, मैं क्लाउड पर डाल रहा हूं। उस दिन मेरे पास एक केस आया बच्चे का, जिसने 15 अश्लील वीडियो अपने आसपास की परिचित महिलाओं की बनाई और गूगल ड्राइव पर डाल दी, और फिर गूगल ने जाकर पुलिस को बताया कि साहब देखिए अश्लील कंटेंट आया है, उस बच्चे को फिर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये सोचें कि साहब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट अश्लील कंटेंट आप प्रकाशित क्यों करें, सारी दुनिया को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको समझना होगा कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कहता है कि अगर आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर आप स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या प्रमोट करते हैं,
0: अपलोड करते हैं,
1: खुद भी करते हैं, इनफैक्ट लोग समझते हैं भाई मैं तो अपने आप को बिना तस्वीर के, बिना कपड़ों के
0: कूल
1: शूट कर रहा हूं, क्या
0: सोशल मीडिया।
1: भाई आप जब अपनी भी अश्लील तस्वीर खींचते हैं तब भी आप अपना जुर्म करते हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, या पब्लिशिंग या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान नहीं कर सकते। अगर आप एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करेंगे, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी करेंगे, यानी कि एक कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे हो उसकी अश्लील कंटेंट को प्रकाशित करेंगे, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, नॉन बेलेबल है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो प्लीज आप समझ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि आप कानून से अनभिज्ञ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कानून आप पर लागू नहीं होगा। कानून कहता है कि साहब आप कानून के दायरे में रहिए, कोशिश करिए अपने डिवाइसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाएं, लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु ना बनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें, सारी दुनिया के साथ सारी चीजें साझा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप चीजें अडॉप्ट करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें तो काफी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम के फ्रॉड्स या उसके विक्टिम्स होने की दिशा में बच जाएंगे।
0: साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए,
1: मुझे
0: कोई काम करता हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर अपने प्रोडक्ट को रिवील करना चाहता हो आगे आकर।
1: मुझे लगता है कि आज जिंदगी में अगर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई वेक्टर है तो वो साइबर सुरक्षा है। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि साहब मैंने तो डिवाइस में मुझे जो करना कर दूं, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। भाई सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी भी तो है। हमें समझना है कि हम एक बहुत बड़ी चेन की कड़ियां हैं, और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी। और हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने, तो साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, अनसिक्योर साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को, हैबिट्स को बिल्कुल इग्नोर करिए, पासवर्ड शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपना फोन किसी को भी देना बिल्कुल बंद कर

0: दीजिए, किसी और का यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तब आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं जिसमें 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है।
1: तो ऐसे में कई केसेस में हुई है लोगों को?
0: बहुत सारे केसेस में हमने प्रोसिक्यूशन करी है जहां पर मेरा पासवर्ड किसी और व्यक्ति ने इस्तेमाल किया और मैंने शिकायत करी और फिर केस दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई शुरू हुई। भाई सवाल कानून कहता है ना कि पासवर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अगर आपको दे भी दिया तो ये तो मेरे घर की चाबी है ना,
1: शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है मतलब।
0: बिल्कुल नहीं, आपको मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि साहब मेरे घर की चाबी मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करके घुस घर के अंदर घुस जाओ और जो लेना है लेके चले जाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सब भारतवासियों को निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, धारा 21 भारतीय संविधान के तहत।
1: चलिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि नहीं पहुंच पाता है वहां पर कहीं ना कहीं बास जैसी पैनी निगाह पहुंच जाती है काफी सारे लोगों की। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है पवन जी कि आप प्रॉब्लम में, आपको बताया कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए, आप बैंक के पास जा रहे हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा पैसा लौटा दो। और ऐसे में बैंक मैनेजर के साथ आपकी काफी वार्तालाप होती है, काफी बहस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पाते हैं इन चीजों को आप।
0: उसका रीजन ये है कि बैंक मैनेजर के हाथ में कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आपके यहाँ पैसा जाता है आपका पहला विकल्प है आपने 1930 कॉल करना है, ताकि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम में कोई पैसा है तो पुलिस उसको तुरंत फ्रीज कर सके। दूसरा, आपने रिपोर्ट करनी है cybercrime.gov.in। वो जैसे आप रिपोर्ट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप बैंक के साथ शेयर करिए ताकि बैंक उस पर आगे कार्रवाई हो सकता है। आप जाके वहां लड़ेंगे, उन पर विवाद करेंगे, साहब मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, लिखतम के आगे बख्तम की कीमत नहीं होती। तो आपकी लिखत में जब कंप्लेंट होगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो अगर आप लिखत में बैंक को देंगे तो बैंक तुरंत एक्शन करेगा।
1: वो जवाबदेही वाला प्रोसेस होता है ये कितने टाइम का होता है?
0: देखिए,
1: अगर नहीं आता है जवाब तो क्या कर सकते हैं आप?
0: आपको ना कॉन्स्टेंटली पैरवी करनी पड़ेगी। पहली बात, आपने शिकायत करी, उसके हर 2 दिन बाद आपने उस शिकायत का आपने पूछना है कि भाई क्या हुआ,
1: क्या अपडेट है।
0: जैसे आप अगर आप cybercrime.gov.in पर जाएंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको एक SMS आ जाएगा कि फला पुलिस ऑफिसर है, ये इसका नंबर है, ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब आप हर रोज एक धर्म बना लीजिए कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करना है, भाई मेरा क्या हुआ क्या हुआ। वो कहता है ना, पैरवी आपको वहां तक ले जाएगी जहां पर मुकदमा भी नहीं ले जा सकता। जितनी जल्दी आप पैरवी करेंगे, बैंक के साथ पैरवी करेंगे, उतनी जल्दी आप सीरियसनेस अपनी शो कर पाएंगे और उतनी जल्दी हो सकता है आपको रिलीफ भी मिल जाए। आज आप जैसे, हम जैसे लोग ही सबसे वल्नरेबल टारगेट्स हैं। एक बार अगर हम जाग जाएंगे इस चुनौती के प्रति तो फिर एटलीस्ट हम काम करना शुरू कर देंगे। That is 50% of the battle won. लेकिन अगर हम इसी मस्ती में होंगे, साहब मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
1: स्मार्ट और ओवर स्मार्ट होने में थोड़ा सा फर्क है, राइट?
0: ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मुंह की देगा और अक्सर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा।
1: बिल्कुल, देखिए इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति फंस चुका है, उसे पता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, मैं सिर्फ कंप्लेंट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कोई लीगल रेमेडीज?
0: देखिए, अगर आप तुरंत शिकायत करते हैं तो पहली रेमेडी वो है, क्योंकि वो शिकायत के एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है
1: जी।
0: अगर आप तुरंत 1930 पे कॉल करते हैं तो वो तुरंत देख लेते हैं कि आपके बैंकिंग चैनल में कोई पैसा है तो नहीं है, अगर है तो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक कराइए अपना पैसा ताकि अल्टीमेटली 5-6 हफ्ते में पैसा वापस आ जाए।
1: जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है।
0: हाँ, और तीसरी बात, अगर आपको लगता है पुलिस एक्शन नहीं करती तो आप अपने लोकल थाने में, अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें आप दिशा निर्देश दें कि साहब आप मेरा पैसा वापस दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी भैया उस अक्यूज के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अगर आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन मूव करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अदालत डिसाइड करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले चली गई तो जितना पैसा फ्रीज हो गया उसमें पहला अमाउंट आपका जाएगा, आपके अमाउंट खत्म होने के बाद किसी और को दिया जाएगा। तो जागरूकता एटलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लीगल रेमेडीज आपके पास उपलब्ध हैं। ये तमाम सारी घटनाएं जो हैं ऑफेंसेस बन जाती हैं भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में। आवश्यकता है आपको सतर्क, जागरूक और सावधान रहने की।
1: देखिए, किसी व्यक्ति ने आपके साथ डिजिटल अरेस्ट किया और जब वो मुकदमा वहां तक पहुंचा और अगर उसने वो पैसे खर्च कर दिए या उसके अकाउंट में है नहीं, तो इस केस में क्या होता?
0: फिर देखिए, उस व्यक्ति के बरखिलाफ मुकदमा चलता है और अल्टीमेटली उसको सजा मिलती है, और तब तक कानून का वो ये भी अधिकार है कि अगर उसके पास कोई भी एसेट्स हैं तो उन एसेट्स को भी फ्रीज किया जा सकता है और उनको भी सेल करके वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो कानून के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अक्सर लोगों तक पहुंचने का

0: चैलेंज होता है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि साइबर क्राइमल वो कौन सा था जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया, क्योंकि देखने में कुछ और हो सकता है, वास्तविक तौर में कुछ और हो सकता है। और आज की तारीख में तो डिजिटल अरेस्ट में एआई का बहुत ज्यादा दखल अंदाज हो गया है
1: जी।
0: आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति नहीं है, वो एआई द्वारा जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो है। अब डीप फेक वीडियो अगर है तो फिर आप उस साइबर क्रिमिनल तक कहां पहुंचेंगे कि किसने अपलोड किया, कौन था उसका मास्टरमाइंड उसके पीछे। तो चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला कदम होता है उठ के जागना। और हमें जी लगता है कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, तो एटलीस्ट उठ जाइए, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करेंगे तो कानूनी प्रकरण आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला।
1: अब सरल भाषा में पूछना चाहूंगा, जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पहचानने का, या स्कैम आपको ईमेल आ रही है, इन सबको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे सिंपल
0: तरीका, कुछ भी चीज आपको जो बताती है जो टू गुड टू बी ट्रू है तो एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू होता है।
1: कभी
0: लगता है सपनों जैसे, भाई मेरे को खबर आई कि आरबीआई मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है लॉटरी के तौर पे, भाई मुझे 50 लाख क्यों देगा? लेकिन लोग जो है कह जाते हैं कि साहब मैं ही दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे आरबीआई 50 लाख रुपए की लॉटरी दे रहा है। तो पहला इंडिकेशन है कि साहब ये साइबर फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है। तुरंत उस कम्युनिकेशन को डिसरिगार्ड करिए, भूल जाइए कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं। सॉरी, आज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज आप प्रोटेक्टेड होंगे तो कल नया दिन होगा, आप फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां पर आपका मन ठुके कि साहब ये ठीक नहीं है,
1: कुछ घपला है,
0: द मोमेंट ये मन है ना, इस मन का विश्वास जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे को बचाएगा, हमारी गट फीलिंग हमेशा बचाएगी। हमारा दिमाग तो फिर भी बता देगा, ओहो चले यार इतने पैसे मिल रहे हैं, करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है,
1: क्या जाता है।
0: लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध लिया कि साहब भैया मुझे मिलना तो उतना है जितना मेरे माथे पे लिखा हुआ है, तब मैं इन छोटे प्रलोभनों में नहीं पढ़ूंगा। देखिए, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भारतवर्ष में कोई डेडिकेटेड आज की तारीख में लॉ लागू नहीं हो रखा डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमारा डेटा बिकता है नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में, ऑनलाइन मार्केट्स में। और हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा 13 नवंबर 2026 को, लेकिन उससे पहले आपके डेटा की खरीद फरोख्त बहुत चल रही है। मेरे पास तो कुछ क्लाइंट आते हैं जो डेटा मर्चेंट्स हैं, मतलब मैंने कहा भाई ये क्या चीज है,
1: वो कहते हैं मैं भी नया सुन रहा हूँ वर्ड,
0: मैंने कहा क्या होता है डेटा मर्चेंट, वो कहते हैं सर एक नया बिजनेस मॉड्यूल है,
1: ठीक है।
0: हम क्या करते हैं, हम 20 या 25 लोगों को रिक्रूट करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लिए काम करिए, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, आप हमसे सैलरी लीजिए, लेकिन एक भी दिन हमारे दफ्तर मत बताइए, आप जाके दूसरी कंपनियों में जाइए और जाके अपना जॉब लीजिए, आप वहां नौकरियां करिए, वहां से भी पैसे लीजिए, उनका डेटा लीजिए, वो डेटा चुरा के हमें दीजिए, हम वो डेटा की क्लीनिंग करेंगे, उसको सैनिटाइज करके और करके पूरे मार्केट में बेचेंगे। तो ये एक नया प्रकार का मॉडल इंडिया में आ गया है। दूसरा एक नया मॉडल आ गया है, वो है साइबर क्राइम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। साइबर क्राइम आज इतना ज्यादा पनप चुका है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में बन चुका है। यहां तक पहले हम बात करते थे जामतारा की, फिर बात करने लगे हम नू की, भरैच की और अदर इंस्टीट्यूशंस की। आज तो हर गांव में, हर छोटे शहर में आपको साइबर क्राइम के अड्डे मिलते हैं। लोगों को पता है कि भैया पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो है साइबर क्राइम है। और दूसरी बात, भाई भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन तो होती नहीं है। 2003 में मैंने भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन कराई थी, जिसमें मैं वकील था।
1: 2003 में
0: कंप्लेनेंट की तरफ से, आज 23 साल हो चुके हैं। और उस जमाने में भी हमने जज को बोला कि साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप सजा दें, लेकिन जज ने कहा साहब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, चलो उन्हें प्रोबेशन पे 1 साल पे छोड़ देते हैं। वो कन्विक्शन थी, उसके बाद कुछ कन्विक्शन हुई 2008 तक। लेकिन 2008 में हम लोगों ने एक बुनियादी गलती कर ली, हम लोगों ने आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और इन संशोधनों ने 2-3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के बाकी तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बना दिया। यानी कि
1: आज 2-3 वो कौन से,
0: 2-3 जैसे साइबर टेररिज्म हो गया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जैसे एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम आज अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर मैं साइबर क्राइम करता हूं तो मुझे बेल अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। तो होने क्या लगा कि लोग साइबर क्राइम करते, बाहर बेल पर आते, डर कुछ था नहीं, बेल से बाहर आते, अपने बरकरार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिलीट करते और फिर मस्ती से तमाशा देखते, क्योंकि अगर एविडेंस ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो सजा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर ही सजा हो सकती है। तो तभी हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से भारतवर्ष

0: आज तक साइबर क्राइम का एक अकाल आ चुका है कन्विक्शंस को लेकर, तो इसलिए लोगों को लगता है भाई क्या फर्क पड़ता है, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लोग अंधाधुंध होके हुए साइबर क्राइम को अडॉप्ट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि साहब इस भंवर में जो फंस गया वो फंस गया, लेकिन 99.9% लोगों को लगता है भाई हम तो भारी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशियो है वो 0.1% से भी नीचे है। तो जब अगर आप देख लीजिए कि 100 मुकदमे होते हैं और उन 100 मुकदमों में 0.1% केसेस में ही सजाएं होती हैं, वजह सजा होती ही नहीं है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा तो सजा नहीं होगी।
1: तो ऐसे लोगों को काउंटर कैसे किया जाए?
0: तो मुझे लगता है काउंटर करने के लिए आपको एक लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग अवेयर हो जाएं नए उभरते साइबर क्राइम के को लेकर। और आज तो नया प्रॉब्लम है, आज एक नए प्रकार का साइबर क्राइम उत्पन्न हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम, AI क्राइम।
1: उससे तो सब डरे हुए आने वाले समय में, आई गेस।
0: AI तो इतना खतरनाक हो गया है कि आपको कुछ नहीं करना, मुझे आपको तंग करना है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज की 3 सेकंड का सैंपल चाहिए, आपके वीडियो का 5 सेकंड का सैंपल चाहिए बस,
1: और कुछ नहीं चाहिए। हाफ एन आवर का और पूरे घंटे का
0: मैं आपके आपके बरखिलाफ एविडेंस बना सकता हूँ। मेरे पास उस दिन एक क्लाइंट आया, उन्हें कहा साहब मेरी शादी हो रखी है, 10 साल हो चुके हैं, मेरी वाइफ से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तलाक लेना है। तो हमने कहा भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए तो सही।
1: मैंने
0: कहा सर मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ। उसने मुझे एविडेंस दिखाया और वो वाइफ इतनी बदतमीजी तरीके से हस्बैंड को बात कर रही थी, मुझे लगा कि साहब इन दोनों का रहना बिल्कुल संभव नहीं है, तो चलो हम डिवोर्स फाइल करते हैं। मैंने डिवोर्स पिटीशन बना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना वाइफ की, वो जरूर लगाइएगा अदालत में। तो हमने लगाना शुरू किया और साथ साथ सर्टिफिकेशन डालनी शुरू करी। तो जब सर्टिफिकेशन में उससे सवाल पूछे कि भाई क्या कहाँ हुआ, क्या पता लगा, किस डिवाइस से हुआ, अल्टीमेटली उसके मुंह से निकल गया सर मैंने इसे AI से बनाया था। तो आज ये
1: मतलब AI के थ्रू आपने किसी को पूरे तरीके से मतलब बहुत गलत ठहरा दिया।
0: एक पति ने अपनी पत्नी के बरखिलाफ AI के माध्यम से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए और उसको आधार बनाते हुए मुकदमा दाखिल करने की प्रयास किया। वो तो जब मुझे रियलिटी पता लगी हमने कहा साहब हमें माफ करिए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे।
1: खिलाफ कुछ नहीं हो सकता,
0: हो सकता है अगर शिकायत हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर शिकायत होती नहीं, और शिकायत हो भी जाए तो अक्सर FIR नहीं होती। प्रॉब्लम क्या ना कि अधिकांश तौर पर पुलिस आपके केसेस दर्ज नहीं करती, अगर दर्ज करती भी है तो उन केसेस में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम सही तरीके से एकत्रित नहीं कर पाते, एकत्रित भी कर पाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही तरीके से हम अदालत में प्रस्तुत साबित नहीं कर पाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत। तो बुनियादी तौर पर कितना ही बेहतरीन आपका केस क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप साबित ना कर पाए तो सजाएं नहीं होंगी।
1: ये दोनों तरफ से देखिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं AI, ये तो AI है सर।
0: आज की तारीख में तो स्टैंडर्ड डिफेंस आ गया ना, अगर आपने मेरे बरखिलाफ एलिगेशन लगाई आई विल से कि सॉरी ये तो डीप फेक है, मैंने तो बनाया नहीं,
1: मेरा है ही नहीं, अब मेरी आवाज ही नहीं है,
0: मेरी आवाज ही नहीं, आप साबित करते दिखाइए। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि प्रदूषित हो रहा है पूरा वातावरण
1: जी,
0: हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो झूठलाई जा रही है, झूठी इन्फॉर्मेशन भी है, फेक इन्फॉर्मेशन भी है, रूमर्स भी हैं और डीप फेक इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए इस पूरे अंदाज में अदालतों के सामने भी चुनौती है भाई किस प्रकार की एविडेंस या किस प्रकार की जानकारी पर वो विश्वास करेंगे और किस तरह पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लेकर कुछ नए कानून बनाए हैं, नए प्रावधान हैं, लेकिन वो 2023 का लॉ है, आज 2026 ने AI ने आके उलट पुलट कर दिया है। आज AI के द्वारा जर्मित या जेनरेटेड जो एविडेंस है उसको साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, उसके लिए नए कानूनी प्रावधान आने की आवश्यकता है। फॉर्चुनेटली अब खबर आई है
1: ओनली फॉर अपग्रेड करना पड़ेगा
0: जी हाँ, तभी अब खुशखबरी यह है कि अब सरकार की तरफ से खबर आई है कि सरकार अब एक नई डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो मुझे लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा, साइबर क्रिमिनल्स आज की तारीख में पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं और AI आने के साथ साथ 50 कदम तो छोड़िए वो 500 कदम आगे होने वाले हैं।
1: और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप उस व्यक्ति की सहमति भी नहीं ले रहे हैं, आप बहुत सारे एक्टर्स के वीडियो देख सकते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है या उनकी वॉइसेस कहाँ कहाँ पर चल रही है, और फैंस को भी लगता है कि हाँ चलो उन्हीं की आवाज है,
0: यही तो प्रॉब्लम है। तो अगर आप तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो आप अदालत जाएंगे और अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कराएंगे,
1: राइट,
0: लेकिन आम जनता
1: अब हम जैसे लोग क्या करेंगे?
0: कैसे करेंगे? तो यहां पर मुझे लगता है कि नॉर्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, इस नॉर्वेजियन कंट्री ने एक नया लॉ बनाया है कि साहब आप हम अपने कॉपीराइट लॉ में संशोधन करते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पर्सनालिटी राइट्स का, यानी कि आपको

0: अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पर्सनालिटी है, मैं ऐसे बोलता हूं,
1: ये मेरी
0: आवाज ऐसी है, मेरी शक्ल है, ये मेरा इतना अंदाज है, ये इस पे मेरे ऑटोमेटिक राइट्स होने चाहिए,
1: कॉपीराइट होने चाहिए ऑब्वियसली,
0: और मुझे ये ताकि कोई उसका हनन करता है तो मैं उसके बरखिलाफ जा सकूं। मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान अगर भारत में आ जाए तो भारतवासी के हाथों को हम ज्यादा सशक्त कर पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि डीप फेक को लेकर डेडिकेटेड लीगल प्रोविजन आने जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एआई का इतना महत्वपूर्ण दुरुपयोग हो रहा है तो एआई की जवाबदारी भी तो होनी चाहिए, एआई को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, एआई का दुरुपयोग अगर है तो कौन जिम्मेवार है। कंपनियां तो कहती है कि साहब ये ले लीजिए, आपको मैं एआई ब्लैक बॉक्स के तौर पर दे रही हूं, इस्तेमाल करना या ना करिए। अब तो बल्कि फॉरेन कंपनियों ने बहुत बड़ा एक नया तंत्र शुरू किया है
1: जी, क्या है
0: वो? ये है कि वो 399 का तंत्र, वो क्या करते हैं कि आपको अपने पूरे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज एक महीने के लिए 399 रुपए के पैक में दे देते हैं,
1: सिर्फ।
0: अब 399 रुपए में तो आपको दो पिज्जा भी अच्छे नहीं मिलते,
1: नहीं
0: तो
1: मिलते हैं सर।
0: और 399 रुपए में वो आपको पूरे महीने भर के आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, आप डेटा का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को, अपने एल्गोरिदम्स को और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं, और फिर वही इंप्रूव्ड वर्जन आपको दोबारा बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि एआई को अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी एक एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है जो विभिन्न प्रकार के कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है कि साहब इन इन बेसिस पर आप एआई को जिम्मेवार या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन बात यहीं पर ही थम नहीं रही है, अब एजेंटी के एआई आ गया है, यानी कि लोग अब एआई एजेंट्स इस्तेमाल करने लग गए हैं। आप सिर्फ उन्हें एक कमांड दे दीजिए, उसके बाद वो कमांड को पूरी तरीके से खुद डिवाइड करेंगे, सब टास्क को लेंगे और फिर वो उसके ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। उनको जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए, इसके लिए भी अभी हमने एक ग्लोबल एजेंटी की एआई लायबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया है। तो काफी सारा काम करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि साहब हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जो दौड़ता हुआ शेर है उसकी सवारी कर रहे हैं, हम इस शेर से नीचे तो नहीं आ सकते, तो कॉन्स्टेंटली इस शेर की सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ढालना पड़ेगा नए नए समय, नए नए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ साथ, ताकि हम और हमारा डेटा उनका संरक्षण हो सके।
1: बिल्कुल, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रौनक आ जाती है बड़े बुजुर्गों के आ जाने से। अक्सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले, वो आपने काफ़ी सारे मैसेजेस देखे होंगे, और उनके साथ जब डीप फेक कुछ होता है ना तो वो सबसे पहले घबराते हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, लेकिन सर बहुत ही तेज तर्रार तरीके से आपने सारे जवाब दिए हैं। चलिए रैपिड फायर की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है
0: जी।
1: और सबसे पहला सवाल मेरा ये है रैपिड फायर राउंड में, पासवर्ड और पास फ्रेज, विच वन इज सिक्योर्ड?
0: पास फ्रेज, क्योंकि पास फ्रेज ज्यादा बड़ा होता है, पासवर्ड छोटा होता है। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप पास फ्रेज भी बनाना है तो अपनी लोकल भाषा में पास फ्रेज बनाइए,
1: ताकि कोई उसे डिकोड
0: ना कर सके। हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने पास फ्रेज का एक नया अध्याय हमें सिखाया। उसने कहा साहब मैं पास फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने कहा आप बताइए आपका करंट पास फ्रेज क्या है। उसका जवाब था मेरा करंट पास फ्रेज है मैं चलता जा रहा हूँ #@
1: क्या बात,
0: सब अंग्रेजी में, मैं मींस MAIN चलता CHLT है, इतना लंबा आप पास फ्रेज करेंगे ताकि सिस्टम या हैकर जो है आपके पास
1: सोच ही ना सके
0: उसे ब्रेक ही ना कर सके।
1: बिल्कुल, कहां जा रहा है पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड कहीं भी जाए, पास फ्रेज कहीं भी जाए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और VPN, यस और नो, सेफ है VPN?
0: बिल्कुल सेफ है, VPN का इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि आप अपनी लोकेशन की, अपने डेटा का संरक्षण कर सके।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है।
0: दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फेस में फिर भी गड़बड़ की जा सकती है। ये फिंगरप्रिंट दुनिया भर में एकमात्र ऐसा प्रिंट है,
1: ये तो हो सकता है ना बियर्ड आपकी बढ़ जाए, कहीं
0: आपकी बियर्ड बढ़ जाए, आपकी शेप, अब तो क्या ना अडोब से फोटोशॉप से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से फोटोशॉप करना मुश्किल होता है, तो फिंगरप्रिंट कंटिन्यूज टू बी नंबर वन,
1: सेफेस्ट है। वन साइबर सिक्योरिटी हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए, एक ऐसी हैबिट जो साथ हो आपके।
0: मैं आपको एक नहीं दो हैबिट्स बताता हूं।
1: ओके।
0: एक, कंजूस हो जाइए, दूसरा शकी हो जाइए। कंजूसी, अपने डेटा को लेकर, अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए, किसी और के साथ नहीं। और शकी, हर जानकारी को शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक कि स्वयं उसकी पुष्टि आपने ना कर रखी हो, तो शकी हो जाइए और कंजूस हो जाइए, काफी हद तक आप साइबर क्राइम से बच
1: जाएंगे। मतलब थोड़ा सा डेली सोप वाले एक्टर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। वेल सर, मैं आपको शुरुआती दौर में कहना भूल गया, यू आर सो लाइक हैंडसम, एंड यही कहना चाहूंगा, बहुत स्मार्टनेस के साथ सारे जवाब दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज दोहरा रहे, उससे बचना चाहिए।
0: एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं वो अपने स्मार्टफोन को रिलाई करते हुए कर रहे हैं। हमारा स्मार्टफोन, हमारा अपने जब आप फोन स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो ऑनलाइन खींचते हैं और अपलोड करते हैं, तो रिमेम्बर करिए वो नॉर्मल फोटो नहीं है, वो स्मार्ट फोटो है। उसमें आपका लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका मेटा डेटा है, आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन है, वो तमाम सारी चीजें जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भर के चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब मैं यहाँ लोकेशन हूँ, मेरी यहाँ लोकेशन है, आपने आके मुझे अटैक करना कर लीजिए। तो कृपया अपने स्मार्टफोन के द्वारा खींची हुई फोटो तब तक इंटरनेट पर मत डालिए जब तक आप उसे सैनिटाइज ना कर सकें और उसका मेटा डेटा पूरी तरीके से
1: सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
0: सैनिटाइज करने के आज बहुत से टूल्स आ जाते हैं जो आपका जो मेटा डेटा होता है उसमें से निकाल देते हैं, आपकी लोकेशन निकाल देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड।
1: अगर मैं लोकेशन डाल नहीं रहा हूं तो भी लोगों को लोकेशन पता लग जाएगी
0: ऑटोमेटिकली। मैं आपके यहां बैठा हूं, आज आपने मेरे फोन से तस्वीर खींच ली, मैंने अपलोड करी, मेरे स्मार्टफोन वाली तस्वीर में आपका लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, मेटा डेटा आ गया, मेरे मोबाइल फोन का क्या डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, किस प्रकार के फंक्शन है, वो तमाम सारी चीजें आ गई,
1: तुम्हें जाकर
0: बहुत सब आ गई और आपने बिना सोचे समझे उसको ऑनलाइन कर दिया। ये तो वही हालत हुई ना कि हमारे क्लाइंट थे ये डेल्टा वेव के बाद बहुत तंग आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया हम वेकेशन करने चलते हैं, तो कहां चले, मनाली चलते हैं, लेकिन मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा भाई क्या करें, तो लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया ऑनलाइन, तो उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग निर्णय लिया कि हम हर घंटे जहां पे भी होंगे हम एक वीडियो ब्लॉग डालेंगे। तो वो यहां से मूर्थल गए, वहां से वीडियो ब्लॉग डाला, ऊपर रोहतांग पास गए, वहां ब्लॉग डाला। 8 दिन बाद जब वो घर वापस आते हैं गुड़गांव में, तो पाते हैं उनका सारा घर सफा चट्ट हो चुका है, एक भी चीज घर में नहीं थी, क्योंकि चोरों को उन्होंने
1: पता लग गया, आमंत्रित किया है,
0: आमंत्रित किया, उन्होंने बताया कि साहब ये तो वहां पर अभी रोहतांग पास पर है, ये इनके लैटिट्यूड, इनका लॉन्गिट्यूड है, अभी तो आ नहीं सकते।
1: मतलब चोर भी बैठे होंगे, कह रहे होंगे रुक जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी दूर है,
0: अभी 8 दिन है हमारे पास, आराम से चोरी करते हैं, घर से सारी चीज निकाल लेते हैं। तो कोशिश करें ये तमाम सारी चीजें अपनी गर्दन अपने हाथ काट करके साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना दे दीजिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग आप ही के खिलाफ होने वाला है।
1: क्या बात है, इनकॉग्निटो मोड, ये कितना सेफ है?
0: बिल्कुल सेफ नहीं है, इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपको एक
1: झांसा दे रहा है,
0: झांसा अपना अपने मन को बहलाने का एक और तरीका है। रियलिटी इनकॉग्निटो मोड कुछ नहीं होता, आज की साइबर सारे चाहे आपके ब्राउजर्स हो चाहे आपके सर्विसेज हो, इनकॉग्निटो मोडियम के मोड के माध्यम से आपकी तमाम सारी जानकारी फिर भी ले रहे हैं। तो इस दुनिया में जो चीज मौजूद नहीं है उसकी आप उम्मीद ना करें, और इनकॉग्निटो मोड के बेसिस पर वो कुछ गलत काम ना कर दें जो आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकते हैं।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सुरक्षित रखते हैं।
0: बिल्कुल भी नहीं, सबसे बड़ा मिथ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम की चीज पूरी सुरक्षा देते नहीं है, वो तो एक छोटी सी बात बताते हैं कि साहब ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस का एंटीवायरस या वायरस आपके सिस्टम में नहीं है। मुझे लगता है आपको ब्रॉड चीज देखनी है। देखिए अगर मैं सिर्फ पूरे अपने घर में जिसमें 5 दरवाजे हैं एक ही दरवाजे पर ताला लगाऊंगा बाकी 4 खुले रखूंगा तो गलती मेरी है, क्योंकि चोर उन 4 दरवाजों से मेरे घर के अंदर आएंगे। तो कोशिश करें एंटीवायरस के साथ साथ और स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करें, अच्छा फायरवॉल रखें, साथ ही साथ अपनी सेल्फ कंट्रोल करें, अपनी जानकारी शेयर ना करें। हमारे पास एक केस आया जहां पर एक बंदे ने अपने ना सेंसिटिव पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर किया
1: और वो बंदा बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हो गया,
0: तो वो बंदे की मुझे पता ही नहीं हालत क्या थी भाई। जनवरी में शादी हुई और शादी के लिए हनीमून गए आप गोवा, और हस्बैंड वाइफ ने एक पैक्ट किया,
1: आई लव माय हस्बैंड या आई लव माय वाइफ, ना ना
0: उन्होंने पैक्ट किया, पैक्ट ये किया कि साहब हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के मोमेंट्स अपने फोन पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आजीवन फिर देखेंगे और आनंद लेंगे। और उसके 15 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो गई और दोनों के बरखिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंटें शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें जो है उसकी खींच करके
1: दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डालाई
0: और फिर अल्टीमेटली तलाक शुरू हो गया। तो बॉटम लाइन है भाई वो चीज क्यों करनी है जिसके लेके कल को प्रॉब्लम होने वाली है।
1: और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर कि अगर आपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया सबसे पहली बात तो नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल नहीं,
1: लेकिन उसके बाद भी अगर आपका फोन चोरी हो गया तो सारा डेटा रिवील्ड हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: सच्चाई है,
0: बुरी सच्चाई है। और दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि सुरक्षित तौर पर मैं इसको बैकअप ले लेता हूं, तो मेरा बैकअप ऑनलाइन चला गया, तो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला गया। एक तो सर्विस प्रोवाइडर मेरी शिकायत करेगा, दूसरा कल मेरी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो सकती है, तीसरा कल को मैं अपनी जॉब बदलता हूं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जाता हूं, ये चीज मेरे को आड़े आएगी, और चौथा मेरी प्राइवेसी तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाने वाली है। तो ऐसा काम करें क्यों? मुझे लगता है कि वो चीज ना करें जिसका एक इम्पैक्ट आप पर, आपके फ्यूचर पर आ सकता है। और मुझे लगता है अपने पर्सनल मोमेंट

0: उसको तो कभी भी डिवाइस के साथ कभी कैप्चर करना ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी अच्छी इंटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका दुरुपयोग होगा। अगर आपकी गर्दन है तो कोई ना कोई तो उसको दबाएगा, तो अपनी गर्दन किसी के हाथ में दें क्यों, बुनियादी सवाल ही खड़ा होता है।
1: और सही बात यह है कि देखिए, सबसे साफ बात यह है कि पूरी लाइफ फिर लोगों की स्पॉइल हो जाती है।
0: पूरी लाइफ, लोगों की पूरी लाइफ, उनकी मेंटल मेकअप, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाती है। क्योंकि साहब आपने तो कुछ चीज फन में करी और उसका इंपैक्ट आ गया जो आजीवन के तौर पर आ गया। और इमेजिन वो कंटेंट आपके बच्चे देखेंगे, वो कंटेंट आपके परिवार के मित्रगण देखेंगे, तो वो तो आपको एक आजीवन के तौर पर,
1: और वो लाइफ लॉन्ग रहने भी वाला है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, शायद वो सर्वर से डिलीट कराने के लिए आपको फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता।
0: और कभी भी कुछ चीज डिलीट नहीं होती, इस मिथ्या से बाहर निकल जाइए।
1: अच्छा,
0: इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है। एक बार आपने इंटरनेट पर कुछ चीज डाल दी तो वो सदैव के लिए वहां रहने वाली है। और कोई ना कोई आदमी जो उस फिराक में है, उस ढूंढ में है, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके आपको आप क्या पहुंच ही जाएगा और इन्फॉर्मेशन ले ही लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेट को आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, खास तौर पर ये जानकारी तो बिल्कुल ना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भी हाथ में आएगी, चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो या हैकर हो, वो सबसे पहले इस जानकारी को अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर बेच देगा। और फिर एक बार आपका कॉन्टेंट अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर आ गया तो उसमें से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है।
1: बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है। वेल, जाने से पहले सर दो टिप जो आप लोगों को देना चाहें।
0: जाने से पहले केवल दो टिप मैं जो आपको देना चाहूंगा। एक, ये दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। इस दौर में जितना आप अपने डेटा को समेट के रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, अंधाधुंध लोगों को डेटा बांटने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए। मान के चलिए मुझ पर आक्रमण तो होगा ही, तो इसलिए जब आक्रमण हो तो पैनिक नहीं करना,
1: तो शील्ड हो।
0: इंपॉर्टेंट चीज है कितनी जल्दी आप आक्रमण के बाद पुनः नॉर्मलसी पर आ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अच्छे बैकअप्स रखिए, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स रखिए, अपनी अनावश्यक जानकारी इंटरनेट पर डिवाइसेस पर शेयर ना करिए। और अल्टीमेटली आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी सावधानी ही एकमात्र आपका मूल मंत्र है जो आपको बचाने वाला है। समझ लीजिए कि हम सब लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के वॉर फील्ड के केंद्र बिंदु पर आ चुके हैं, हमें चारों ओर से अटैक होने वाला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लीजिए, और वो सुरक्षा कवच है आपकी सावधानी, आपकी सूझबूझ, क्योंकि ये सुरक्षा कवच आपको विभिन्न प्रकार के अटैक्स को रिपेल करने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और शेयरिंग इज केयरिंग, ये सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए अप्लाई होती है, बिकॉज आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस चक्रव्यूह में ना फंसे। वेल, मुझे पता है अब जाने का समय हो गया है, और जब भी मैं जाता हूँ आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन जाएंगे तभी तो फिर से लौट कर आएंगे। एंड आकाशवाणी पॉडकास्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त साइन आउट कर रहा है अलॉन्ग विद डॉक्टर पवन दुग्गल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी।
0: थैंक यू।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: and we shall very definitely put all our doubts to rest. For the moment though, a little break of a very messagey kind.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: A new day has begun, not quite really, but maybe in a few hours it will. 22.53.10, that is 53 minutes past 10 and 13 seconds right on the dot, and the show is going on. We'll take a little break and we'll be right back.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार कल लोकसभा में परीक्षाएं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कारगिल युद्ध के शहीदों को सम्मान करने की एक सुरक्षित समझ तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्प लेने को का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच रात भर जारी संघर्ष में 2 लोगों की मौत और 3 नागरिक घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, कोंकणा, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के रजत पदक हासिल किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर बधाई दी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर 3-0 से श्रृंखला अपने नाम की। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: अपनी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। हर महफिल की पहचान उसकी रोशनी से नहीं होती जनाब, उसमें बैठने वाले लोगों से होती है। और जब बात गजल की हो तो हर सुनने वाला अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आता है। किसी के लिए सुकून का वक्त होता है और किसी के लिए मुस्कुराने की वजह, और किसी के लिए बस इतना सा एहसास

कि आज भी अल्फाज दिल के करीब पहुंच जाते हैं। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए आज इस मुलाकात को जल्दी में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जीते हैं।

हर कुछ देर के लिए रोकती हो। गजलें भी कुछ ऐसी ही होती हैं, हर बार सुनो तो नए अल्फाज नहीं मिलते, लेकिन उन्हीं अल्फाजों का नया मतलब जरूर मिल जाता है। शायद इसीलिए अच्छी महफिल कभी पुरानी नहीं पड़ती, वो हर मुलाकात में अपने आप को एक नया

महफिल की शुरुआत हमेशा गजलों से नहीं होती, कभी कभी एक सुकून भरी सांस भी हो जाती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब इंसान कुछ देर के लिए रुकता है, तब उसे महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती, रास्ते को महसूस करना भी एक नाम है। इसलिए गजलें जल्दी नहीं करती, वो हमें रोक रोक कर भी आती हैं, है ना? यही कहती हैं कि थोड़ी देर अपने साथ बैठ जाओ, ये कप चाय की तरह कुछ लम्हे भी होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, बस इतने कि बस दिल को सुकून मिल जाए। अच्छी बात तो यह है कि सुकून खरीदा नहीं जाता, कभी किसी अपने की आवाज से भी मिल जाता है, है ना? ऐसा होता है, कभी किसी पुरानी धुन से और कभी किसी गजल के साथ एक मिसरे से भी। आज की महफिल भी शायद इसी सुकून का नाम है और इसे बनाना भी है।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा, जिसे हम कहते हैं रंगे महफिल। मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान जुदाई नहीं होता भाई, बल्कि वो दिन होता है जब सामने वाला बदल जाए और आप उसकी पुरानी तस्वीर को ही सच मानते रहें। इंसान बहुत देर तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, उसे लगता है कि शायद कल सब ठीक पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर हर शायद हकीकत नहीं होता और तब गजलें मरहम बनकर लग जाती हैं। नहीं बताइएगा,

हर जख्म दिखाई नहीं देता, कुछ दर्द मुस्कुराहट के पीछे रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, और धीरे धीरे जवाब देता है दिल, काश दर्द का कोई एक चेहरा भी होता, शायद तब लोग समझ पाते कि खामोशी भी कितनी अजीब चीज होती है, बहुत थक जाती है। नहीं बताया कीजिए आप लोग कि सच बात है कि नहीं।

हर दौर में इंसान ने अपने आप को, अपने दिल को समझाने की कोशिश की है, लेकिन दिल की फितरत ऐसी है कुछ के हिसाब से नहीं चलता, एहसास से चलता है। कभी छोटी सी बात पर मुस्करा देता है और कभी एक खामोशी भी इसे बेचैन कर देती है। शायद इसीलिए मिर्ज़ा गालिब ने दिल को सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ी सच्चाई माना है। गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी बहुत कम निकले। हर किसी ने सुना होगा।

शेर बताता है कि इंसान की हसरतें कभी पूरी नहीं होती, दिल हमेशा कुछ और चाहता रहता है और इसी चाहत के सफर में कभी खुशी मिलती है कभी दर्द। आइए अब मिर्ज़ा ग़ालिब के एक और लाजवाब गजल सुनते हैं, और दिल ही जो कि है, दिल ही तो है ना संगो किश्त, सुनिए।

कभी इंसान लोगों से घिरा होता है, फिर भी दिल को अजीब तन्हाई महसूस होती है। बात सिर्फ किसी भी के साथ होने की नहीं होती, बस बात होती है शख्स कोई यहाँ पर है या चला गया है। महफिल अगर चला गया है तो फिर महफिल बहुत अधूरी सी लगती है। मोहब्बत का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ जब तक साथ होता है तो दुनिया छोटी लगती है, और जब फासले आ जाते हैं वही दुनिया बहुत बड़ी नज़र आने लगती है। शायद इसी एहसास को अल्फाजों में पिरोकर शकील बदायूं ने ऐसी गज़ल लिखी जो आज भी हर दौर के सुनने वालों को दिल को छू जाती है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की महफिल हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये गज़लों ने आपके दिल को सुकून कुछ लम्हे दे दिए होंगे। मैं हूं ताहिर, आपके दिल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी इसी वक्त यानी किसी और दिन। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर। ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग तथा निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह ने चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

पेश करेगी। ये विधेयक कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हो गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषि कांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, करते हैं दिल की बात इन द प्रोग्राम सुहानी रात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा

जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के सिवा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में नवनिर्मित कोमूर वैली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियन में छिपा कर रखी गई 5 करोड़ रुपए की कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। आइए सुने कुछ ऐसे नगमे जो भुलाए ना बने।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में नवनिर्मित कोमुर वैली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी हुई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी

राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। ये थे FM मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। आइए सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कमल जी, आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपकी आखिरी कविता मेरे ही जीवन की कहानी है। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या, एक कटी पतंग है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्यवाही के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी हुई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह ने चानबाम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में तथा राजा मुथु पांडी 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। अब तक एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य के साथ कुल 4 पदक जीते हैं। क्रिकेट ने भारत में हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। ये थे FM मुख्य समाचार।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है।

यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कजवानी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेगी। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्यवाही के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में तथा राजा मुथु पांडी 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। अब तक 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 4 पदक जीते। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। ये थे एफएम मुख्य समाचार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।